श्रोताओ नमस्कार। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर विविध भारती का ये जबलपुर केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संबंध 1948 के आषाढ़ मास की 16वीं तिथि तदनुसार

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंध सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। श्री जयशंकर खाड़ी देशों की अपनी 4 राष्ट्र की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। यात्रा के अन्य चरण में कुवैत और ओमान भी शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूता उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी। इन सीटों के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सास के डेलस शहर में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से जारी है। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा कर्नाटक में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती।
0: वंदन वार।

आज का चिंतन। माधव कहते हैं, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके लिए व्याकुल मत हो, और जो तुम्हारे हाथ में है उसे करने में शंका मत रखो। कर्तव्य पथ पर चलने वाला कभी अकेला नहीं चलता, कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि जब नियत शुद्ध हो तो परमात्मा स्वयं सारथी बन जाते हैं। ये था आज का चिंतन। लीजिए अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है झरोखा। आपको सुनवा देते हैं आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही देर में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान। इसका भाग 242 आज प्रसारित होगा। सुबह 6:45 पर और पुनः शाम 6:45 पर आप सुनेंगे संगीत सरिता के अंतर्गत श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। इसका भाग 7 आज प्रसारित होगा। कलाकार बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार, संवादिका ममता सिंह, संपादन सहायक झरना सोलंकी और प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। सुबह 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत और 7:30 पर हम है राही प्यार की। सुबह 8 बजे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात आप सुनेंगे और उसके तुरंत बाद 8:15 पर और पुनः दिन में 2 बजे त्रिवेणी का प्रसारण किया जाएगा। आलेख एवं स्वर सोनाली पाठक का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। नए गानों का कार्यक्रम चित्रलोक आप सुनते हैं सुबह 8:30 पर और रात्रि 8:15 पर। आज के फनकार कार्यक्रम 9:30 पर आज सुबह आप सुनेंगे, जो कि केंद्रित रहेगा अभिनेता दिलीप कुमार पर। प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी। सुबह 10 बजे पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा सेहत नामा। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशालता देवलीकर से ममता सिंह की बातचीत, संपादन रीमा जोशी का, प्रस्तुतकर्ता जुबेर खान। कार्यक्रम रंग तरंग आप सुनते हैं सुबह 11 बजे, 12:05 पर यादों की महफिल और दिन में 1 बजे सुनिएगा सुरीला सफर। सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर बाद 2:30 पर और 3 बजे कार्यक्रम सखी सहेली। शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा सेल्यूलॉइड के सितारे, अभिनेता विपुल देश पांडे से जयंत पात्रिकर की बातचीत, संपादन सहयोग काजल भदरगी का है और प्रस्तुतकर्ता जुबेर खान। शाम 5 बजे छाया गीत, 5:30 पर कार्यक्रम तराने नए पुराने। शाम को आप सुनेंगे 6:30 पर झरोखा। 6:35 पर समय रहेगा संध्या रंजन का। फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला शाम 7 बजे, 7:45 पर सुनिएगा इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस। रात्रि 8 बजे हवा महल के अंतर्गत

झलकी मुंशी इतवारी लाल, लेखन नरेश मिश्रा का, निर्देशक विनोद रस्तोगी, झलकी का नाम मुंशी इतवारी लाल। आठ बजकर 8:45 पर संध्या समाचार संध्या आप सुनेंगे और रात्रि 9 बजे कार्यक्रम आपके लिए। रात 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित रहेगा संगीतकार अनिल विश्वास पर। संगीतकार अनिल विश्वास, प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। कार्यक्रम छाया गीत आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे और 10:30 पर ढलती जाए रात। रात्रि 11 बजे रंग तरंग का पुनः प्रसारण। तो ये था आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा झरोका के अंतर्गत। लीजिए अब प्रस्तुत है रामचरितमानस गान का भाग 242।

सीता के पांव से रक्त बहता देख श्री राम ने धनुष पर सरकंडे का बाण चढ़ा दुष्ट कौवे के पीछे छोड़ दिया। मंत्र से प्रेरित बाण कौवे का पीछा करने लगा। भयभीत हो जयंत अपना असली रूप धारण कर पिता इंद्र की शरण में पहुंचा, पर इंद्र ने रामद्रोही जान उसे शरण नहीं दी। प्राण बचाने के लिए जयंत ब्रह्मलोक शिवलोक आदि में भागते भागते थक गया, किंतु कहीं भी उसे शरण नहीं मिली। जयंत की दशा देख देवर्षि नारद को दया आई और उन्होंने उसे श्री राम की ही शरण जाने को कहा। जयंत को तब तक प्रभु की शक्ति का पूरा आभास मिल चुका था। उनसे उसने अपने प्राणों की भीख मांगी। पार्वती को प्रभु महिमा की कथा सुनाते हुए भगवान शंकर कहते हैं, ऐसे दयालु हैं प्रभु कि प्राणों की भिक्षा मांगते कौवे की आर्तवाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। चित्रकूट में निवास करते हुए कुछ काल बीत जाने पर एक दिन श्रीराम के मन में ये विचार आया कि बहुत लोगों को उनके निवास स्थान की सूचना मिल चुकी है, फलस्वरूप उनके दर्शनों को आने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जाएगी। अतः अपने वन प्रवास को अज्ञात रखने के लिए किसी अन्य स्थान के लिए प्रस्थान करना चाहिए। समय उपयुक्त जान वहां के निवासी मुनिगण आदि से विदा लेकर श्री राम अनुज लक्ष्मण तथा पत्नी सीता को लेकर गहन वन की ओर अग्रसर हुए। राह में ऋषि अत्रि का आश्रम पड़ता था। श्री राम के आगमन का समाचार पाकर ऋषिवर उनकी अगवानी के लिए दौड़ते हुए आए।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। लीजिए सुनिए इस श्रृंखला की सातवीं कड़ी।
1: दोस्तों नमस्कार, पंडित जी एक बार फिर स्वागत है आज की इस कड़ी में आपका। नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी।
1: पंडित जी बताइए कि आपने बहुत सारी फिल्मों में बांसुरी बजाई है, हमारे बहुत सारे श्रोताओं को जानकारी है, कुछ श्रोताओं को जानकारी नहीं है, तो हम ये बता दें कि फिल्म देश परदेश है, फिल्म बेताब है, जिसमें आपकी बांसुरी की सुरीली तान है, जब हम ध्यान से सुनेंगे तो पाएंगे। तो आप बातचीत के दौरान जिक्र कर रहे थे धर्मेंद्र साहब के बारे में, देव साहब के बारे में।
2: जी, सबसे पहले तो धर्म जी बहुत जिंदा दिल इंसान थे और मैं 9 भाषाएं बोलता हूँ, उसमें एक पंजाबी भी है।
1: जी जी।
2: तो मेरे साथ तो पंजाबी में ही बात करते थे।
1: अच्छा, कौन कौन सी 9 भाषाएं आपको? हिंदी,
2: भोजपुरी, बंगाली, गुजराती, मराठी, पंजाबी, राजस्थानी तो, और भी शायद कोई छूट गया, मैं बोलता हूँ। तो मेरे नाल उन्होंने तो पंजाबी गल करते सन मेरे नाल।
1: वाह।
2: तो अपने बेटे को लॉन्च कर रहे थे सनी को बेताब में, तो सनी भी स्टूडियो में आया हुआ था और धर्म जी भी आए थे। एक बड़ा मार्मिक एक दृश्य था फिल्म का। उस फिल्म में सनी देओल का बड़ा प्यारा सा एक डॉग था, कुत्ता, और जो उसमें विलेन थे वो सनी को मारने के लिए उस कुत्ते को गोली मार देते हैं, और सनी उस क्योंकि प्यार उसको बहुत ना
1: गले से लगा के
2: रो रहा है, और उसमें मेरी बांसुरी। और केसी लॉर्ड बहुत बड़े म्यूजिशियन हुए।
1: जी जी।
2: पंचमदा के राइट हैंड एकदम।
1: जी।
2: केसी लॉर्ड ने एकोलाइट लगाया था और मैंने भी दिल चीर के बजाया डी के बांसुरी में।
1: जी।
2: और वो ऐसे कि एक एक स्वर उस कुत्ते के खून बह रहा है और यहाँ बांसुरी में से आंसू निकल रहा है।
1: जी जी। तो वो क्या यहाँ पर हमारे श्रोताओं को आप सुना सकते हैं?
2: वो तो इम्प्रोवाइज था। जब हम लोग बैकग्राउंड म्यूजिक बजाते हैं ना, तो हम लोग जैसे कि राग में इम्प्रोवाइज करके एक एक नोट कर करके वो नहीं करते, हम लोग वो सीन के मूड को देखते हैं।
1: जी।
2: जैसे समझिए कि कुत्ता मर रहा है और पीछे बांसुरी बज रही है,

0: वाह, सचमुच दिल चीर देने वाली तान
1: देने वाला वो सीन था। जब टेक ओके हो गया, बांसुरी के अलावा 40-50 वायलिन एक नोट को होल्ड किए हुए थे और उसके ऊपर बांसुरी बज रही थी, और साथ में वाइब्रोफोन बज रहा था। और केसी लॉर्ड तो पारसी थे
0: जी जी,
1: और उनका छोटा भाई था भजी लॉर्ड, भजी ना बोलते हैं
0: जी,
1: केसी जी गुजर गए, भजी लॉर्ड अभी जीवित है
0: जी।
1: कमाल के लोग, और मैं तो खुद उनका दूसरे कारण से फैन हूँ, क्योंकि रूप तेरा मस्ताना में जो उन्होंने एकॉर्डियन बजाया तो वो सेंसुअलिटी एकॉर्डियन से कैसे
0: निकाला
1: पैदा
0: जाता
1: हो सकती है ये उन्होंने बताया। और मनोहरी दास जैसे सैक्सोफोन प्लेयर
0: जी
1: उस
0: जी
1: पे हावी हो गए, वो ये केसी लॉर्ड कर सकते हैं।
0: जी जी
1: तो धर्म जी इतने शेर दिल थे, ओए पुत्तर कमाल कर दिता यार, तेरा जवाब नहीं। ओ मैनू हंजू हंजू कहते पंजाबी विच, आंसू को हंजू कहते हैं, ते कहते मेरे हंजू आ गए, अखा तो हंजू आ गए। बड़ा बड़ी चंगी बंसरी कहते ने पंजाबी में, कहते बड़ा सुंदर बंसरी बजाया पंचम दा, ओए पंचम ओ कितों लाया ये मुंडे नू, ये लड़के को कहाँ से लाया। तो उस दिन से उसके बाद उन्होंने स्टूडियो बनाया सनी, उस स्टूडियो का नाम ही रखा उन्होंने सनी
0: जी, जी।
1: सनी सुपर साउंड। मैं जब भी जाता था, धर्म जी कभी शूटिंग से आके थोड़ा रिलैक्स होके पांव फैला के बैठते थे, तो मैं उनसे जाके हाथ मिलाता था, क्योंकि मुझे ये शौक था पहलवानी का थोड़ा।
0: अच्छा,
1: तो मुझे मालूम था ये एक्चुअल रेसलर है
0: जी जी,
1: और एक बार दारा सिंह को उठा लिए थे
0: जी जी, और फिल्मों में तो उनकी दहाड़ मशहूर है।
1: हाँ, तो उनके हाथ को जब मैं हाथ मिलाता था
0: जी,
1: तो लगता था कि मैं कुछ 10 हाथ का ताकत और की हाल है बोल के जब हाथ पकड़ते थे तो लगता था हाथ टूट जाएगा मेरा। उस अनुभव के वजह से मैं हाथ मिलाता था
0: जी जी।
1: ये जो पुराने एक्टर लोग थे, यहाँ तक कि राजेश खन्ना भी
0: जी,
1: जब हमें और जीने की चाहत ना होती मैं बजाया मैंने, तो किशोर दा तो रुला दिए उस गाने को गा के, तो काका हम लोग बोलते हैं राजेश खन्ना को
0: जी जी बिल्कुल,
1: तो काका उस वक्त भी जाके किशोर दा का पांव छू लिए। अब बताइए, किशोर दा तो उनसे बहुत बड़े थे
0: जी
1: उम्र में, मगर इंडस्ट्री में पांव छूने का इतना रीत नहीं है, वो शास्त्रीय संगीत में है
0: जी,
1: उधर तो बस हाय हेलो हाय दादा नमस्कार प्रणाम करने का चलन कम है, मगर काका को मैंने अपने आंख से देखा किशोर दा का पांव छूते हुए।
0: गजब
1: कि दादा आज आपने जो गाया, मिलन से भी कठिन जुदाई तुम्हारी, हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते
0: जी, जी।
1: तो दादा ने जिस गाने को भी छुआ उसको अमर कर दिया। और मेरा जो एक्सपीरियंस है, जिस प्रोग्राम मैंने पिछले एपिसोड में बताया कि मैंने कह दिया था कि मैं ऑर्केस्ट्रा पार्टी में बजाता नहीं, मगर बजाने में गया, तो चिंगारी जब गा रहे थे तो ऐसे सुर लगाए कि उसके अंत में एक पीस आता है, देखिए।

0: ये रन मैं भूल ही गया।
1: जी, क्या बात है, बहुत सुंदर।
0: और दादा भी दादा, किशोर कुमार, किशोर कुमार, उनके जैसा व्यक्तित्व। बहुत दिन से इंडस्ट्री सोच रहा है कि उनके ऊपर फिल्म बनाई जाए, मगर उनका रोल करेगा कौन?
1: ऐसा जिंदा दिल इंसान,
0: ऐसा जिंदा
1: जिंदा
0: दिल,
1: दिल,
0: ऐसा कॉमेडियन, ऐसा एक्सेंट्रिक
1: बिल्कुल।
0: और ऐसा अनप्रिडिक्टेबल, जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कभी क्या करेगा। जो डाकिया डाक लाया को साइकिल में बैठ के गाया उन्होंने,
1: हरफन
0: वो
1: मौला, तभी तो उनको कहा
0: उनको
1: जाता था
0: स्टूडियो
1: ना।
0: में साइकिल लाना पड़ा, बोले साइकिल में जाऊंगा तभी, नहीं तो नहीं गाऊंगा।
1: जी, गजब।

0: जी
1: जैसे बड़ा गुरु होता है,
0: बिल्कुल
1: तो वहां भी देव साहब के, मैं बहुत खुश हूं इस बच्चे की बांसुरी सुनकर, जिंदगी। तो वो हर म्यूजिशियन के पास जाके देव साहब तारीफ करते थे। और उसके बाद देश परदेश, राजू, हम लोग राजू भाई कहते हैं राजेश
0: जी
1: रोशन
0: जी जी
1: को, उनका म्यूजिक था देश परदेश में,
0: जी
1: तो वहां भी मुझे पहचान गए। अरे तू कैसा है, क्या हाल है। तो उनके अंदर जो रोमांसिंग विथ लाइफ, उन्होंने जो किताब लिखी है वो सचमुच पढ़ने लायक किताब है,
0: जी
1: रोमांसिंग विथ लाइफ, देवानंद।
0: जी
1: तो देवताओं का आनंद उनके अंदर
0: भीतर,
1: था।
0: तभी तो सदाबहार हीरो कहे जाते हैं ना
1: हाँ,
0: आज भी
1: देव साहब
0: लोग।
1: जैसा
0: हाँ,
1: कोई नहीं होगा।
0: उस फिल्म में आपकी बांसुरी है ना
1: मेरी
0: फिल्म,
1: बांसुरी बैकग्राउंड
0: तो
1: में है,
0: हाँ, तो उसका कुछ टुकड़ा हमारे श्रोताओं को सुनाएंगे,
1: नहीं
0: याद है
1: वो
0: तो?
1: इम्प्रोवाइज था, पूरा
0: अच्छा।
1: पूरा इम्प्रोवाइज। टीना मुनिम को उसमें लॉन्च किया था।
0: जी
1: और हाँ, मुझे याद है उसमें एक सीन में देव साहब रोमांस कर रहे हैं, क्योंकि वो उनका उन्होंने उम्र को तो कभी माना ही नहीं, और इसीलिए उन्होंने ये भी कहा था कि मेरा मरने के बाद कोई फोटो ना खींचे। उनके मरने के बाद का कोई फोटो कहीं नहीं है, लंदन में गुजरे।
0: जी जी
1: हाँ, और चुपचाप
0: चले
1: बोले थे
0: गए।
1: कि मेरा अंत्येष्टि कर देना, चुपचाप, कोई भीड़ भाड़ नहीं चाहिए, भगवान के आदमी थे। तो उसमें बजाना था तो चंचल प्रकृति का बजाना था, जैसे
0: जी
1: हम लोग फिल्म में बजाते हैं तो कैसे होता है कि इतना सा पीस भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
0: बिल्कुल

0: इसको ट्रिल बोलते हैं,
1: जी जी
0: और
1: अच्छा
0: फ्लटरिंग ये है। ये फ्लटरिंग है। और डारा डारा डारा डारा डारा डारा डारा डारा डारा डारा डारा, तो हम लोग का तुकु तुकु तुकु तुकु तुकु तुकु तुकु तुकु तुकु। कल्पेश एक बार जरा तुक तुक सुना दीजिए। तुक तुक में गॉड गिफ्टेड है मेरा शिष्य, एक सेकेंड उसको सुनिए।
1: हाँ जी,
0: क्या क्लैरिटी है, देखिए
1: गजब, अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है।
0: जीते रहो कल्पेश। जैसे वो बोलता है कि मैं भाग्यवान हूं ऐसे गुरु मिले, मैं कहता हूं मैं भाग्यवान हूं कि मुझे ऐसा शिष्य मिला,
1: क्या बात है,
0: जो इतना सुरीला।
1: तो ये चंचल प्रकृति की तान थी बांसुरी की,
0: जी, जो देश परदेश में मैंने बजाया।
1: जी,
0: तो जब ट्रिल बजाया तो बोले कि उनका वही अंदाज, क्या बात है, क्या बात है
1: जी,
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ट्रिल तो बड़ा अच्छा। एक एक शब्द उनको मालूम था कि इसको ट्रिल कहते हैं, कितना म्यूजिक में वो डीप थे।
1: जी जी,
0: आपको तो मालूम ही है रफी साहब ने कितना रिटेक किया था गाइड के गाने के लिए।
1: जी जी,
0: उसमें
1: जी।
0: दुख नहीं आ रहा था।
1: हाँ, फिर वो रोए थे,
0: रोए थे, फिर
1: बैठकर रोने पर फिर वो इमोशन आया था। जी,
0: मैं चाहूंगा कि हमारी ऑडियंस को आज बेताब का ये शब्बीर कुमार का गाना पर्वतों से आज मैं टकरा गया, ये हमारे ऑडियंस को सुना दीजिए।
1: जी।

शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की सातवीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। बांसुरी संगत कल्पेश सांचला की और तबला संगति अजीत पाठक की। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी किरण बंग, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी।

0: और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर हम बस थोड़ी ही देर में हाजिर होंगे।

लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर हम हाजिर हैं। आप सभी का हम स्वागत करते हैं तहे दिल से। आज मैं हूं आपके साथ पूजा नारायणिया। आप सभी विविध भारती सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आपको कार्यक्रम का पहला गीत सुनवाते हैं और आपको बताते हैं कि आज संगीतकार अनिल बिस्वास का जन्मदिन है, तो उन्हीं को याद करते हुए उनके गीत हमने आज इस कार्यक्रम में शामिल किए हैं। पहला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं छोटी छोटी बातें, इस फिल्म से। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ें हैं, शैलेंद्र के बोल, अनिल बिस्वास का संगीत।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत विविध भारती से। अब आपको सुनवाने जा रहे हैं अंगुली माला, इस फिल्म का गीत मीना कपूर और साथियों के स्वर में। भरत व्यास ने इस गीत को लिखा है और धुन बनाई है अनिल बिस्वास ने।

0: से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
3: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत में अगला गीत फिल्म फरीब से आपको सुनवा रहे हैं। मजू सुल्तानपुरी ने इस गीत के बोल लिखे हैं, अनिल बिस्वास ने संगीत से सजाया है और आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

इस छोटी सी अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत में स्वागत है। अब आपको सुनवाते हैं किस्मत फिल्म का गीत। पारुल घोष की आवाज में कवि प्रदीप का लिखा गीत है, संगीत है अनिल बिस्वास का।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
3: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
2: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
4: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
2: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
5: तुम्हारी याद सताती है।
2: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: अब आपको सुनवाते हैं हमदर्द फिल्म का गीत, मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार प्रेम धवन और संगीतकार अनिल विश्वास।

ये आवाज़ थी पारुल घोष की। हमारी बात इस फिल्म का गीत था। पंडित नरेंद्र शर्मा ने इस गीत को लिखा था और अनिल विश्वास का संगीत था।

मुकेश का गाया ये गीत और इसी गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं संपन्न होता है। आज संगीतकार अनिल बिस्वास का जन्मदिन था, उन्हें याद करते हुए हमने आज कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में उन्हीं के संगीतबद्ध किए गीत आपको सुनवाए।

कार्यक्रम हम है राही प्यार की, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ पूजा नारायणिया। एक बार फिर से स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार और आपको सुनवाते हैं इस कार्यक्रम का पहला गीत, दिल दिया दर्द लिया। इस फिल्म से आशा भोसले और रफ़ी मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं। शकील बदायूनी ने लिखा है ये गीत और नौशाद का संगीत।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
2: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से।
4: अनजान ऐप से बचें।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
7: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
6: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
7: सच?
6: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
7: समझ गया।
8: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हम ही रही प्यार की इस कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार के। आइए आपको सुनवाते हैं गंगा जमुना फिल्म का ये गीत, शकील बदायूनी के शब्द, नौशाद का ही संगीत, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों के स्वर।

0: मॉर्निंग
1: छोड़
0: गुड मॉर्निंग
1: छोड़ हाथ में
0: गुड मॉर्निंग 1 2 3 4
1: अरे 1 2 3 4 मैं कहती हूँ
0: 1 2 3 4
1: तुम भी थप्पड़ रखे
0: आवरती
1: डाबरा आया अंग्रेजी बोलने वाला
0: कॉपी यस व्हाट वाटर स्टैंड राइट हैंड बंदूक बैंड टिंग फटे

0: लांग लांग फूटा ये पाइप वाला हुका ये सूटा बूटा बूटा सूटा हुका बुका वेरी वेरी गुड लाइक यू मेरी जान।
1: गोपी फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर महेंद्र कपूर की आवाजों में राजेंद्र कृष्ण के बोल कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मधुमती फिल्म से लता मंगेशकर और मुकेश के स्वरों में। शैलेंद्र के बोल हैं सलील चौधरी का संगीत।

नया दौर इस फिल्म का गीत आपको इस कार्यक्रम के आखिर में सुनवाने जा रहे हैं। आशा भोसले और मोहम्मद रफी के स्वरों में साहिल लुधियानवी की रचना, ओपी नैयर का संगीत।

आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी का गाया ये गीत नया दौर फिल्म से आप सुन रहे थे, और ये था कार्यक्रम हम है राही प्यार की का आखिरी गीत। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में सुबह के 8 बजने वाले हैं। आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। मांगे पूरी नहीं होने पर 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की दी चेतावनी। भारत ने अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण सहित कुल 20 पदक जीते और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की जाएगी। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान भी करेंगे।
1: प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10:30 बजे औपचारिक स्वागत समारोह से होगी। इसके बाद अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के संसद परिसर में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग के महत्व का उल्लेख करेंगे। वे एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, जहां श्री मोदी प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान करने के लिए चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं। इस साझेदारी की स्थापना उनकी 2018 की यात्रा के दौरान हुई थी। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी।
2: India and Indonesia are very close and strategic partners.
3: भारत और इंडोनेशिया बेहद करीबी और रणनीतिक साझेदार हैं। निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंडोनेशिया के आचे से मात्र 160 किलोमीटर दूर है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो की बेहद सफल यात्रा के बाद हमारे संबंध और भी मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा इसे और भी मजबूती देगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर 4 खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। विदेश मंत्री ने शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं दी। डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन में प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। डॉक्टर जयशंकर कुवैत और ओमान भी जाएंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में स्थापित इस मंत्रालय ने सहकारिता तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और प्रतिस्पर्धी बनाया है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता विभाग ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
4: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्शरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
0: मंत्रालय की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि 30 क्षेत्रों में फैली 85 लाख से अधिक सहकारी समितियों और 32 करोड़ सदस्यों को सम्मिलित करने वाला एक एकीकृत डिजिटल डेटाबेस बनाया गया है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स की भूमिका का विस्तार किया है। इससे वे साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से 300 से अधिक सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।
4: आज पूरे देश के पैक्स एक ही बायलॉज के तहत काम कर रहे हैं। मॉडल बायलॉज को स्वीकार कर लिया, 300 गतिविधियों को 55,000 पैक्स के माध्यम से हम सीएससी की सेवाएं दे रहे हैं।

0: आउटलेट किया है और 300 पैक्स गैस के वितरण में लग गए हैं और लगभग 150 पैक्स जल आपूर्ति योजना का मेंटेनेंस का भी काम कर रहे हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर पीओके में बढ़ती राजनीतिक उथल-पुथल के बीच जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने एक औपचारिक घोषणा में कहा कि उनका मौजूदा धरना प्रदर्शन तब तक अनिश्चित काल तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी सभी मांगे पूरी नहीं की जाती। कमेटी ने पीओके के निवासियों और कश्मीरी प्रवासी समुदाय के सदस्यों से 9 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया है। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में अपने छठे स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टील्स फ्रिगेट महेंद्रगिरी F-38 का जलावतरण करेगी। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस स्टील्थ फ्रिगेट को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा आंतरिक रूप से डिजाइन किया गया है। इस जहाज का नाम पूर्वी घाट की भव्य महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। मंत्रालय ने कहा कि यह जहाज लचीलेपन, शक्ति और अटूट संकल्प का प्रतीक है। महेंद्रगिरी जहाज अब एक विशिष्ट विरासत बनने और भारत के समुद्री इतिहास में एक और गौरवशाली अध्याय जोड़ने के लिए तैयार है। यह जहाज आधुनिक संयुक्त डीजल या गैस प्रणोदन प्रणाली से संचालित है। यह इसे समुद्री अभियानों के पूरे स्पेक्ट्रम में असाधारण मजबूती के साथ उच्च गति संचालन करने में सक्षम बनाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी भाग लेंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। यह मंच जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास को समर्पित होगा। कार्यशाला का उद्देश्य देश भर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के कामकाज की समीक्षा करना और उन्हें जीवंत ज्ञान संस्थानों, सांस्कृतिक संसाधन केंद्रों और जनजातीय विकास के लिए नीतिगत सहायता केंद्रों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक कार्यसूची विकसित करना है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: जम्मू कश्मीर सरकार ने जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के लिए निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि CDF योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक विधायक अपने CDF से 20 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध करा सकेगा। ये सहायता गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों और अन्य अधिसूचित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मरीजों को दी जाएंगी। और अब खेल खबरें। थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 20 पदक जीते हैं। महिला वर्ग में भारत 184 अंक के साथ उपविजेता रहा, जबकि पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में भारतीय टीम 152 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात नॉटिंघम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम श्रृंखला में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। और बात फीफा फुटबॉल विश्व कप की। फुटबॉल में बेल्जियम ने सिएटल में चल रहे फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। बेल्जियम अब शुक्रवार को लॉस एंजल्स स्टेडियम में क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना करेगा। इससे पहले स्पेन ने कल रात डलास स्टेडियम में राउंड ऑफ 16 मुकाबले में पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
4: धन्यवाद विशाल। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के महासचिव और सदस्य के इस्तीफे आज के सभी अखबारों की पहली बड़ी खबर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, चंपत राय और अनिल मिश्र को कामकाज से विश्राम, इस्तीफे मंजूर। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, राम ट्रस्ट कृष्ण भरोसे, पूर्व IFS अधिकारी कृष्ण मोहन बनाए गए अंतरिम महासचिव। दैनिक जागरण ने SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र दोषी, चंपत राय का नाम गायब। घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे, भ्रष्टाचारियों से वसूलेंगे पाई पाई, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान अमर उजाला में है। कोलकाता में एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा, घुसपैठियों की पहचान कर वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने हाफिज सईद को बनाया आरोपी। देशबंधु के अनुसार पूरक आरोप पत्र में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्करे तैयबा के सरगना पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और आतंकी साजिश रचने का आरोप। नीट PG परीक्षा के पैटर्न में फेरबदल की खबर हिंदुस्तान में है। 30 अगस्त को कंप्यूटर बेस्ड मोड में आयोजित होगी परीक्षा, अब 200 की जगह 180 सवाल पूछे जाएंगे। बार बार यातायात नियमों के उल्लंघन पर निलंबित होगा ड्राइविंग लाइसेंस। दैनिक जागरण के अनुसार बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय की मोटर वाहन कानून में बदलाव की तैयारी।
1: धन्यवाद सरफिरोजी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: ये है देश का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है त्रिवेणी।

श्रोताओं नमस्कार। आज त्रिवेणी में बातें होंगी नाम पर। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। समय के साथ लोगों के नाम, चेहरे और बाहरी पहचान धुंधली पड़ जाती है। आज जो व्यक्ति प्रसिद्ध है, हो सकता है आने वाली पीढ़ियां उनका नाम भी ना जाने, लेकिन उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्य, उनके विचार और उनकी मधुर वाणी लोगों के मन में लंबे समय तक जीवित रहते हैं। मनुष्य अपने जीवन में नाम, यश और प्रसिद्धि पाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। वो चाहते हैं कि लोग उन्हें पहचाने, उनकी प्रशंसा करें, लेकिन समय की धूल बड़े बड़े नामों को भी ढक देती है। कई ऐसे लोग हुए जिनके नाम भले ही कम लोग जानते हो, लेकिन उनके कार्य आज भी समाज को प्रेरणा देते हैं। सुंदर चेहरा और बाहरी आकर्षण स्थायी नहीं होते। उम्र के साथ चेहरा बदल जाता है, लेकिन व्यक्ति का चरित्र, उसका व्यवहार और उसकी अच्छाई लोगों के हृदय में अमिट छाप छोड़ जाती है। इसलिए हमें अपने व्यक्तित्व को सुंदर बनाने पर अधिक ध्यान देना नहीं चाहिए। केवल बाहरी रूप को संवारने पर हमें ध्यान देना नहीं चाहिए।

जब कोई व्यक्ति बार बार किसी का नाम लेता है, तो वो नाम उसके लिए मात्र एक संबोधन नहीं रह जाता, बल्कि उसकी भावनाओं, स्मृतियों और अनुभूतियों का केंद्र बन जाता है। सांसारिक जीवन में भी किसी प्रिय व्यक्ति का नाम मन में बार बार आना स्वाभाविक है। जब कोई व्यक्ति हमारे हृदय के बहुत निकट होता है, तो उसका नाम हमारी सोच, हमारी बातों और हमारी यादों में बार बार उभरता है। ये प्रेम और आत्मीयता का प्रतीक हो सकता है। हालांकि जीवन का संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक है, ताकि किसी एक व्यक्ति या भावना में इतना ना डूब जाए कि अपने कर्तव्यों और उद्देश्यों को भूल जाए। वास्तव में किसी का नाम जपते रहना उस व्यक्ति के प्रति सम्मान, स्नेह, श्रद्धा या प्रेम का संकेत हो सकता है।

हर माता पिता का सपना होता है कि उनकी संतान जीवन में कुछ ऐसा करे जिससे उनका सर गर्व से ऊंचा हो जाए। जब कोई बच्चा मेहनत, ईमानदारी और लगन के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, तब लोग उसके साथ साथ उसके परिवार की भी प्रशंसा करते हैं। नाम रोशन करना केवल बड़े पद या धन प्राप्त करने से नहीं होता है। एक अच्छा इंसान बनकर, दूसरों की सहायता करके, सत्य और नैतिकता के मार्ग पर चलकर भी व्यक्ति अपने परिवार और समाज का नाम उज्जवल कर सकता है। इतिहास में अनेक महान व्यक्तियों ने अपने कर्मों से अपने माता पिता और देश का नाम रोशन किया है।

0: तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: श्रोताओं, ये है देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती। थोड़ी ही देर में कार्यक्रम चित्रलोक लेकर हम हाजिर होंगे।

0: गुड मॉर्निंग श्रोताओं, लीजिए हम हाजिर हैं कार्यक्रम चित्रलोक लेकर। आप सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करती हूँ मैं, पूजा नारायणिया। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार आप सभी की मंगल कामनाओं के साथ। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम चित्रलोक और सुनवाते हैं पहला गीत फिल्म दिल से। इस फिल्म से ये गीत है लता मंगेशकर, एमजी श्री कुमार की आवाजें, गुलजार के बोल, एआर रहमान का संगीत।
1: जिया चले जा चले, जिया

श्रोताओं, कार्यक्रम सुन रहे हैं आप चित्रलोक विविध भारती से। आज है 1 जुलाई 2026 से 7 जुलाई 2026 वन महोत्सव का सप्ताह का आज अंतिम दिन है, लेकिन प्रकृति की सेवा का संकल्प आज से और भी मजबूत होना चाहिए। आइए हम सभी मिलकर एक पौधा लगाएं, उसकी नियमित देखभाल करें, एक या उससे ज्यादा भी लगा सकते हैं, लगाना ही चाहिए, और अपने परिवार व आसपास के लोगों को भी पेड़ लगाने के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए। पेड़ हमें शुद्ध हवा, ठंडी छाया, फल, औषधियाँ और जीवन देते हैं। इसीलिए अनावश्यक पेड़ों की कटाई को रोकना चाहिए, जल की बचत करना चाहिए, प्लास्टिक का कम उपयोग करना चाहिए और अपने आसपास की हरियाली को सुरक्षित रखने का संकल्प करना चाहिए। लिया आपने ये संकल्प? याद रखिए, आज लगाया गया एक छोटा सा पौधा आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल उपहार बन सकता है। आइए वन महोत्सव सप्ताह के समापन पर प्रकृति संरक्षण को अपनी रोजमर्रा की आदत बनाएं और धरती को और अधिक हरा भरा बनाने में अपना योगदान दें। और अब आपको सुनवाते हैं ये गीत श्रेया घोषाल और उदय मजूमदार की आवाजों में, गुरु फिल्म से, गुलजार के बोल ए आर रहमान का ही संगीत।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
3: नसीब इंसान का।
2: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें।
2: श्रोताओं, अब वक्त है एक छोटी सी अंतराल का।

श्रोताओं, इस अंतराल की बात आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम चित्रलोक में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा नारायणिया। आइए अब आपको सुनवाते हैं बेवफा। इस फिल्म का गीत कुमार सानू, अलका याग्निक और सपना मुखर्जी की आवाजों में, समीर का लिखा गीत, नदीम श्रवण का संगीत।

0: भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
3: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

सुनिधि चौहान और सोनू निगम के युगल स्वरों में अगला गीत। नितिन रायकवार ने इस गीत को लिखा है, संदीप चौटा ने संगीत दिया है, फिल्म का नाम है मस्त।

0: भागती दौड़ती जिंदगी में अपनी सेहत से हर कोई जूझ रहा है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज की समस्या के बारे में लोग आज भी बहुत कम सजग हैं। क्या है पीसीओडी, जानिए गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर से।
1: जो पेशेंट आता है एकदम से, तो उसको लैप्रोस्कोपी IVF या IUI एडवाइस हम लोग नहीं कर सकते, हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे, और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है, जिसे पुराने जमाने में हम क्लोमिफेन देते थे, अभी लेट्रोस देते हैं, लेट्रोजॉल, और मल्टीविटामिन, विटामिन D3, ओमेगा 3, और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस सीएनसी है, B12 हो, ये सब देकर।
0: सुनिए 6 जुलाई सेहतनामा शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुनिए,
3: कहिए,
0: सुनिए एक खुशखबरी,
3: कहिए ना,
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
4: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
5: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
4: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
5: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
6: सखी सहेली।
7: श्रोताओं, कार्यक्रम चित्रलोक में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

श्रोताओं, हम आपको बता दें कि आज सुबह 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित रहेगा अभिनेता दिलीप कुमार पर। प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी हैं। और रात को 9:30 पर आज के फनकार केंद्रित रहेगा संगीतकार अनिल बिस्वास पर। प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। सुनना नहीं भूलिएगा। अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत। ये है जलवा फिल्म से। कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाजें, सुधाकर शर्मा के बोल, संगीत एक बार फिर हिमेश रेशमिया का।

ब्रेक के बाद आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से कार्यक्रम चित्रलोक में स्वागत है। रहना है तेरे दिल में इस फिल्म का गीत सुनिए। सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति के युगल स्वरों में समीर की रचना, हरीश जयराज का संगीत। मुझे कहना

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे रहना है तेरे दिल में फिल्म से। इस गीत के संगीतकार का नाम एक बार फिर से सुन लीजिए, हैरिस जयराज ने इस गीत की धुन बनाई थी। अब आपको सुनवा रहे हैं फिदा फिल्म का गीत। समीर के ही बोल हैं, अनु मलिक का संगीत, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें।

कार्यक्रम चित्रलोक की आखिरी प्रस्तुति फिल्म अंदाज से बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक की आवाजों में समीर के बोल नदीम श्रवण की बनाई तर्ज।

श्रोताओं, आज है अभिनेता दिलीप कुमार की पुण्यतिथि। भारतीय सिनेमा के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार की पुण्यतिथि पर हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी अदाकारी, सादगी और अमर किरदार सदैव भारतीय सिनेमा के इतिहास को रोशन करते रहेंगे। उन्हें हमारा विनम्र नमन। और अब से कुछ ही देर में आज आप कार्यक्रम सुनेंगे आज की फनकार, जो कि केंद्रित रहेगा अभिनेता दिलीप कुमार पर। अभी आप गीत सुन रहे थे चित्रलोक में अंदाज फिल्म का, बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक की आवाजों में। इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न होता है। आज्ञा दीजिए, पूजा नारायणिया को नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था। लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। पेश है अदाकारे आजम दिलीप कुमार।
1: तो फिर आदिल शहनशाह को अपनी हुकूमत में उन तड़पते हुए नाफरमान परवानों को भी सजा देनी चाहिए जो शमा पर निसार हो जाते, फूलों पर मंडलाते हुए उस भंवरे को भी कैद करना चाहिए जो मोहब्बत के मीठे राग गाता है।
0: दिलीप कुमार को अदाकारे आजम यूं ही नहीं कहते। आप सोच रहे होंगे आज के फनकार कार्यक्रम में हम बताएंगे दिलीप कुमार साहब कहां पैदा हुए, किस तरह से एक्टिंग की दुनिया में आए, किस तरह से उन्होंने अपनी शैली बनाई और किस तरह से अपना फिल्मी सफर आगे तय किया। लेकिन नहीं जनाब, ये सब आप जानते हैं और हमें पता है कि आप ये सब बार बार नहीं सुनना चाहते। आज के फनकार कार्यक्रम में आज होंगे दिलीप कुमार के कुछ बेमिसाल नायाब संवाद। कोशिश ये रहेगी कि हम कम से कम गाने इस कार्यक्रम में शामिल करें, यानी इस कार्यक्रम को अदाकारे आजम दिलीप कुमार के संवादों से सजाया गया है। तो सबसे पहले मुगले आजम।
2: महाबली का सामना एक लौंडी के लिए
1: नहीं, उसके लिए जो मेरे अहद में मकरूर मुगलों की आबरू और हिंदुस्तान की मलिका बनेगी।
2: हरगिज़ नहीं, खुद्दार मुगलों की आबरू इतनी हल्की नहीं कि एक नाचीज लौंडी के बराबर तुर जाए। और हमारा हिंदुस्तान कोई तुम्हारा दिल नहीं कि लौंडी जिसकी मलका बने।
1: तो मेरा दिल भी कोई आपका हिंदुस्तान नहीं जिस पर आप हुकूमत करें।
0: दिलीप कुमार ने संवादों की अपनी अदायगी की शैली धीरे धीरे विकसित की है। सन 1950 की तरफ लौटते हैं, एसयू सनी की फिल्म आई बाबुल, जिसके सितारे थे दिलीप कुमार, नरगिस, मुनव्वर सुल्तान वगैरह। सुनिए उस जमाने में दिलीप कुमार कैसे बोला करते थे।
3: अशोक बाबू, माफी मांगने आई हूँ।
4: आप ही ने दिल का माल उठाया था, आप ही ने उसे गिरा भी दिया। पूछ सकता हूँ ऐसा क्यों किया?
3: मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकती।
4: आग लगा सकती हूँ क्या? नहीं बता सकती।
3: मैं वापस जाने के लिए नहीं आई। पिताजी ने मेरी शादी कह सकती है इससे पहले कि आपके और मेरे दरमियान कभी ना हटने वाली दीवार खड़ी हो जाए। चलिए कहीं भाग चले।
4: या आपने कोई नई बात नहीं, आजकल की लड़कियाँ जवानी की ठोकर को मोहब्बत की मंजिल समझ लेती है। मगर मेरे नजदीक मोहब्बत की सही मंजिल माँ बाप के कदम है। वो लड़की जिसे माँ बाप की इज्जत से प्यार नहीं, वो दुनिया में कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती। अब आप चलिए।
0: सन 1950 में दिलीप कुमार फिल्म बाबुल में किस तरह अपने संवादों की अदायगी करते थे, ये हमने आपको सुनवाया। आइए अब 36 साल आगे चलते हैं और सुनते हैं सुभाष घई की फिल्म कर्मा का ये सीन।

ये सब सुनकर कहने का मन करता है, दिलीप साहब वी रियली लव यू। इस गाने को सुनवाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि हम आपको बताएंगे दिलीप कुमार ने सबसे पहले आखिर किस फिल्म में गाया था, किसके संगीत निर्देशन में गाया था और कौन सा गाना गाया था। दिलचस्प बात यह है कि ऋषिकेश मुखर्जी ने सन 1957 में निर्देशन की अपनी यात्रा शुरू की दिलीप कुमार के संग। ये फिल्म थी मुसाफिर। संगीतकार थे सलील चौधरी और इसी फिल्म के लिए दिलीप कुमार ने सबसे पहले एक गाना गाया। ये गाना गाया था उन्होंने लता मंगेशकर के साथ। सुनिए ये दुर्लभ गाना।

0: बरसों बरस तक दिलीप कुमार की पहचान रही वो भूमिकाएं जिन्होंने उन्हें ट्रेजेडी किंग बनाया। दिलीप कुमार उदासी के शहंशाह थे और उन दिनों में भी उनके चाहने वाले कम नहीं थे। आइए ऐसी ही कुछ फिल्मों के संवाद सुने जाएं और इन फिल्मों की सरताज देवदास।
1: और मत पियो देवदास।
2: क्यों?
1: कुछ ही दिन हुए पीना शुरू की है, इतनी ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकूं।
2: कौन कम वक्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूँ कि बस सांस ले सकूं और ऐसी जगह से उठकर जाने की ताकत नहीं है ना, तभी तो यहाँ पड़ा रहता हूँ। बस देखता रहता हूँ तुम्हारे मुंह की तरफ, तो भी मैं बिल्कुल बेहोश नहीं होता, कुछ होश रह ही जाता है। होश से कह दो कभी होश ना आने पाए।
1: यहाँ ऐसे लोग भी आते हैं देवदास, जो शराब को छूते भी नहीं।
2: छूते भी नहीं? मेरे पास बंदूक हो तो मैं उन्हें गोली से उड़ा दूं। वो लोग मुझसे भी बड़े पापी हैं चंद्रमुखी। पहले तो मैं शराब पीना छोड़ूंगा नहीं, और अगर छोड़ दिया तो फिर यहाँ कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा।
0: बात दिलीप कुमार के ऐसे रोल्स की हो रही है जो उदास भूमिकाएं कही जा सकती हैं। सुनिए फिल्म दिल दिया दर्द लिया का ये संवाद। आपको सिर्फ इतना बता दें कि ये फिल्म एमिली ब्रोंटे के मशहूर नॉवेल वुदरिंग हाइट्स पर बनी थी और इसके निर्देशक थे अब्दुल रशीद कारदार। साल 1966।
3: ये औरत की मर्यादा के नाम पर तुम्हारे चरणों में किसी बेगुनाह का दिल किसने रखा है भगवान? क्या तुम इस भेंट को स्वीकार कर सकते हो? क्या तुम इस भेंट को स्वीकार कर सकते हो जिस पर उसी अनाथ के अरमानों का खून लगा हुआ है, जिसने प्यार को अपना धर्म समझा, जिसने दुख और तकलीफों को अपनी परीक्षा की अंगार समझकर अपना सब कुछ चुरा लिया? मैं हूं वो बदबख्त मैं हूं जिसकी आत्मा एक निशाचर की तरह दिन रात इन खंडरों में भटकती, वो इन दीवारों से टकराती है, उसे किसी करवट एक पल चैन नहीं मिलता, और ये मोहब्बत के गुनाहगार सुख की नींद सोते हैं, ये सुख की नींद सोते हैं, दिन रात खुशियों से खेलते हैं और तुम्हारे चरणों में आकर अपनी पवित्रता का ढोंग रचाते हैं। क्या तुम इन पाखंडियों को अपनी शरण में जगा दोगे? क्या तुम इन पाखंडियों को माफ कर दोगे? औरत को तुमने दया और धर्म की देवी बनाकर इस धरती पर भेजा, उसकी सांसों में तुमने शक्ति दी, उसके सीने में तुमने दया और ममता के सागर भर दिए, फिर ये उस औरत का कौन सा मनहूस रूप बनाया है तुमने जिसमें न दया है, न वफा है, न कोई धर्म है, न ममता है? ये कौन है? मैं पूछता हूँ ये कौन है जो इस धरती की लाज बनकर इस जमीन पर आई थी और आज इंसानियत का कलंक बनकर तुम्हारे चरणों में खड़ी हुई है? धिक्कार दो इस विश्वासघातनी को, इसको कह दो कि यहां से चली जाए, धरती के उस कोने में जहां वैशी दरिंदे बसते हैं, जहां इंसानियत खुद अपनी लाश पर प्यार और शराफत के नाम का मातम करती है, इसको कह दो कि वहां चली जाए।
1: शंकर मैं यहां से चली जाऊं, हमेशा के लिए चली जाऊं। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ के कहती हूँ बस करे शंकर।
3: हरगिज नहीं, तुम्हें इस दुनिया से वही मिलेगा रूपा जो तुमने इस दुनिया को दिया है। तुम इसी तरह रोगी, इसी तरह तड़पोगी, रात की तन्हाइयों में अपनी मौत की भीख मांगोगी, लेकिन तुम्हारी आत्मा तुम्हें चैन से मरने नहीं देगी और मैं तुम्हें चैन से कभी जीने नहीं दूंगा। चल जाओ यहां से।
0: साल 1951, फिल्म दीदार का ये संवाद सुनिए। बात दिलीप कुमार के ट्रेजेडी रोलों की हो रही है।
4: गाना खत्म हो गया सरकार।
1: ओ, गाना खत्म हो गया? बड़ा दर्द है तुम्हारे गाने में कविराज।
4: दर्द का दूसरा नाम गाना है सरकार। मैं गाने की शक्ल में अपना दर्द ही गाया करता हूँ। चंपा, चंपा बड़ी सखी माई आई है। डॉक्टर तो एक ही रुपया देकर टरका दिया करता, उसने 2 रुपए दिए भैया को।
5: अरे बल्लम, मैंने तो कुछ 10 रुपए की आवाज सुनी थी।
4: आंखें ठीक हो जाएं तो कान का भी इलाज करवा लेना, ऊंचा सुनने लगे हो भैया आजकल। 10 नहीं 2 कहे थे 2।
0: लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब दिलीप कुमार ने ट्रेजेडी किंग के अपने छापे को निकाल फेंका और एक के बाद एक कई कॉमेडी भूमिकाएं की। लेकिन अगर आपको लग रहा होगा कि अब हम कोई कॉमेडी संवाद सुनाने जा रहे हैं तो आप गलत समझ रहे हैं। अभी जरा दिलीप कुमार का ये रोमांटिक संवाद सुनिए। जरा सुनिए कि दिलीप कुमार मीना कुमारी से अपनी अदाओं के जरिए कितनी रूमानी बातें कह रहे हैं।
6: सदियां बीत गई, हजारों साल गुजर गए।
1: हाँ, इतना बड़ा झूठ।
6: इनसे पूछ लो, ये मेरे गवाह हैं। तुम्हारे बिना एक एक पल सौ सौ साल का लगता है। तुमने अपने आप को ठीक तरह से देखा नहीं ना, यही तो मुश्किल है। भगवान ने कितनी अच्छी तरह तुमको सजाकर इस दुनिया में भेजा है। आंखें जैसे झील में खिले हुए दो कवल, देखती हैं तो आकाश में इंद्रधनुष खिल उठते हैं, और शर्माती हैं तो कलियों का सर झुक जाता है। रूपा, तुम्हारी इन जुल्फों की छाव के सिवा मेरे लिए दुनिया में कोई जगह नहीं है। रूपा,
1: ऐसी बातें करोगे तुम्हें यहाँ से भाग जाऊंगी। शंकर,
6: तुम चले जाओगी तो फिर एक एक पल मेरे लिए सौ सौ साल का हो जाएगा।
1: शंकर,
6: रूपा।
0: दिलीप कुमार की खासियत है अपनी भूमिकाओं में पूरी तरह से डूब जाना और संवादों की ऐसी अदायगी कि लोग अश अश कर उठें।
7: मैंने लोगों का अधिकार छीना। जब लोग भूख से मर रहे थे तो हम उनके हिस्से का अनाज ऊंचे दामों में बेचकर अपने खजाने भर रहे थे। जब शहर में बीमारी फैली तो हमने दवाइयां छुपा ली और उनके दाम बढ़ा दिए। जब हमें मालूम हुआ कि पुलिस हम पर छापा मारने वाली है तो हमने वही दवाइयां गंदे नालों में फेंकवा दी। मगर आदमी की अमानत को आदमी के काम नहीं आने दिया। मुझे अपने बदन से सड़ी हुई लाशों की बू आती है। अपने हर सांस में मुझे दम तोड़ते हुए बच्चों की सिसकियां सुनाई देती हैं। वाणी ठीक कहता था, मैं आदमी नहीं हूं, मैं एक खूनी दरिंदा हूं। जिन दवाइयों से उसकी जान बच सकती थी उनका एक ढेर हमारे गोदाम में बंद था। बानी के पास दाम नहीं थे, वो मर गया।
6: मेरा भाई मर गया।
7: अपने हमदर्द भाई की मोहब्बत का ये बदला दिया मैंने उसे। अपने हाथों से उसका गला घोंट दिया। इन नापाक हाथों पर बानी का मुकद्दस खून लगा हुआ है। ये दाग, ये धब्बे कभी नहीं धुल सकते। मेरे माथे पर लगा हुआ कलंक कभी नहीं मिट सकता, कभी नहीं मिट सकता।
6: हम जैसे जलील कुत्तों के लिए आपके कानून में शायद कोई मुनासिब सजा नहीं होगी। हम इस धरती पर सांस लेने के लायक नहीं है, हम इंसान कहलाने के लायक नहीं है, इंसानों में रहने के लायक नहीं है। हमारे गले घोंट दो और हमें दहकती हुई आगों में जलाओ। हमारी बदबूदार लाशों को शहर की गलियों में फेंकवा दो ताकि वो मजबूर, वो गरीब जिनका हमने अधिकार छीना है, जिनके घरों पर हम तबाही लाए हैं, वो हमारी लाशों पर थूके और अपनी ठोकरों से हमारे गंदे जिस्मों को रौंद डाले।
7: मेरे साथियों के नाम और उनके पते हैं।
6: ये सब के सब मेरी तरह मुजरिम है, ये सब के सब मेरी तरह खूनी है। आराम से जिंदा रहना हर आदमी का अधिकार है, मगर इस तरह दूसरों को लूटना, लोगों की रोटी छीनना, गरीब और मासूम लोगों को व्यापार के नाम पर बर्बाद करना और उनको मार डालना किसी का अधिकार नहीं।
0: अब जरा दिलीप कुमार की कुछ कॉमेडी भूमिकाओं के अंश भी सुनवा लिए जाएं। गोपी फिल्म का ये संवाद।
1: पुलिस वाला कहाँ से आ गया?
8: सुपरिटेंडेंट गुपरिटेंडेंट।
1: क्या?
8: सुपरिटेंडेंट गुपरिटेंडेंट।
1: अरे क्या बकता है?
8: गुड मॉर्निंग।
1: छोड़।
8: गुड मॉर्निंग।
1: छोड़ हाथ।
8: गुड मॉर्निंग। वन टू थ्री फोर।
1: अरे वन टू थ्री फोर वाला हाथ छोड़। मैं कहती हूँ फोर।
8: अरे वन टू थ्री फोर। वन टू थ्री फोर।
1: तुमने थप्पड़ रखे।
8: एंटी फैन सेंटीमेंट।
1: क्या?
8: एंटी फैन सेंटीमेंट।
1: अरे हाथ सेंटीमेंट। आया अंग्रेजी बोलने वाला।
8: एंटी फोर।
1: एंटी फोर।
8: सेंटी फोर।
1: सेंटी फोर।
8: ओके।
1: अरे रे।
0: और ये संवाद फिल्म राम और श्याम से।
9: सॉरी जेंटलमैन, आई एम लेट। बोलिए, क्या सेवा कर सकता हूँ?
10: तुम नहीं जानते आज कागजात पर दस्तखत करने? बमन जी, कागजात पर साइन करवा लीजिए।
11: हाँ जोनी बाबा, तुम तो सच्चे लेजिस्लेटिव चो, तो जल्दी साइन कर दो।
9: थोड़ा देख ले, और देख लो, देख लो, पर जल्दी। हाँ
10: तो क्या तुम इन पर दस्तखत नहीं करोगे?
9: आप बोलोगे कि खाई में कूद जाओ तो मैं कूद जाऊंगा, आप बोलोगे गले में रस्सी लगा के पेड़ से लटक जाओ तो मैं लटक जाऊंगा। इतना ही बुद्धू समझ रखा है आप लोगों ने मुझे, क्यों सर?
11: पर ये लोग तो बटाता था, तुम आते और सिग्नेचर करते है।
12: कौन लोग बटाता था?
11: अरे यही लोग बटाता था।
12: क्या बटाता था?
11: कि तुम आते और साइन करते है कागज पर।
12: हम आता तो है लेकिन साइन नहीं करता है साहब।
11: तो साइन नहीं करने का?
12: आई एम वेरी वेरी टॉरी, वेरी वेरी टॉरी, वेरी वेरी टॉरी।
11: तो बच्चे बता, तुम्हें खेलने वा जाओ,
12: तुम्हें भी खेलने वा जाओ।
11: होता था तो साहब जी का जेंडर बाबू।
0: अपने करियर में दिलीप कुमार का सामना कई नामी और दिग्गज कलाकारों से हुआ, लेकिन दिलीप कुमार उनके सामने हमेशा सशक्त नजर आए। फिल्म मुगले आजम, सामना पृथ्वीराज कपूर से।
13: तुम्हारी तमाम नादानियां नाफरमानियां माफ की जा सकती और हम तुम पर एक बार फिर मेहरबान हो सकते हैं अगर तुम अनारकली वापस कर दो।
14: ताकि आप उसे सजाए मौत दे दें?
13: यकीनन।
14: तो फिर आदिल शहनशाह को अपनी हुकूमत में उन तड़पते हुए नाफरमान परवानों को भी सजा देनी चाहिए जो शमा पर निसार हो जाते, फूलों पर मंडलाते हुए उस भंवरे को भी कैद करना चाहिए जो मोहब्बत के मीठे राग गाता है, नदी के मचलते हुए उस पानी को भी रोक देना चाहिए जो समंदर के आगोश में अपना नाम निशान खो देता है।
13: ये अदालत दीवाने जज्बात में उबलती हुई मोहब्बत की दलीलें सुनना नहीं चाहती, अनारकली चाहती है।
14: और अनारकली को मैं देना नहीं चाहता।
13: तो फिर नस्ल तैमूर के जाहो जलाल की कसम, तुम सजीमुशान तख्त ताज हमेशा के लिए महरूम कर दिए जाओगे।
14: मुझे ये मंजूर है लेकिन वो तख्त मंजूर नहीं जिसके पाए अनारकली के जनाजे पर रखे हूँ, वो ताज जिसकी कलकी में खुद मेरा ही दिल पैवस्त हो मुझे मंजूर नहीं।
13: मालूम हुआ कि तुम अपनी मोहब्बत की आग में मुगलों का ताज पिघलाकर एक रकासा के पैरों की बाजेब बनाना चाहते हो। तुम हिंदुस्तान के मुकद्दस ताख पर एक हसीन लौंडी को नचाना चाहते हो। और तुम
14: और आप इस भरे दरबार में अपनी होने वाली बहू को जलील करना चाहते हैं।
13: खामोश।
14: अगर आज शहनशाह इंसाफ के पर्दे में अपनी शिकस्त का इंतकाम ही लेना चाहता है तो उसे अनारकली नहीं मिलेगी, उसे अपने बेटे की जान लेनी होगी।
13: इंसाफ हमें बेटे से ज्यादा अजीज है। मुल्जिम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, तुमने हमारी रियायत और रहमदिली का नाजायज फायदा उठाया और अनारकली को अदालत के रूबरू हाजिर करने से इनकार किया, लिहाजा मां बदौलत मुजरमा अनारकली की सजा बरकरार रखते हुए अनारकली के बदले तुम्हें सजाए मौत देनी।
14: एक तंग दिल शहनशाह मौत से ज्यादा किसी को दे भी क्या सकता है? जब मुर्रख सलीम के खून से अनारकली और उसकी मोहब्बत की तारीख लिखेगा तो उसमें शहनशाह अकबर की मौत पहले होगी।
0: फिल्म शक्ति, दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन आमने सामने।
15: पुलिस को अपना बयान देने से इनकार क्यों किया तुमने?
16: क्या मेरे बयान देने के बाद आप या आपकी पुलिस मुझे बेकसूर समझेगी?
15: तुम अच्छी तरह जानते हो विजय, तुम्हें बेकसूर समझना या मुजरिम ठहराना ये पुलिस का काम नहीं है, इसका फैसला अदालत में होगा।
16: तो फिर मैं बयान भी अदालत में ही दूंगा।
15: विजय, अगर तुम बेकसूर हो तो पुलिस की मदद करना तुम्हारा फर्ज है।
16: मैं तो हमेशा ही बेकसूर था डैडी, लेकिन मेरी मदद करना तो आपने कभी अपना फर्ज नहीं समझा।
15: ये मत भूलो कि मैं यहाँ एक बाप की हैसियत से नहीं पुलिस ऑफिसर की हैसियत से बात कर रहा हूँ।
16: कौन सी नई बात है? आपने मुझसे हमेशा एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से ही बात की है।
15: देखो विजय, तुमको अगर मुझसे कोई गिला है या कोई शिकायत है, वो गलत है या सही है अपनी जगह है, लेकिन यहाँ इस जगह तुम्हें भूल जाना चाहिए कि तुम मेरे बेटे हो।
0: सुभाष घई की फिल्म सौदागर में एक बार फिर हुआ राजकुमार और दिलीप कुमार का आमना सामना। आपको बता दें, इससे पहले दिलीप कुमार और राजकुमार सन 1959 में फिल्म पैगाम में आमने सामने आ चुके थे। फिल्म सौदागर।
17: हम तुम्हें देखकर हैरान नहीं हुए वीर सिंह?
18: और तन्ने देखकर कोई खास परेशानी हमको भी ना हुई। वही पुराना रंग, वही ढंग, वही मिजाज, वही घमंड।
17: वो तो था और है और हमेशा रहेगा।
18: वो रहे न रहे, पर एक फर्क तो आ गया जरूर राजेश्वर। वो जो तू आसमानों पे उड़ता फिरे था ना, आज तेरे पैर जमीन पर लग।
17: राजेश्वर जमीन पर रहकर भी आसमान में उड़ता है वीर सिंह।
18: समझ गया। हाँ तो दिखा अपनी उड़ान अब, जो खड़ा तू और जो खड़ा मैं, और जरा बीच में पिस्तौल। उठाए पिस्तौल और चला गोली मुझ पर, निकाल ले तो अपने दिल के अरमान। मैं तेरे सामने खड़ा हूँ।
17: हम खैरात नहीं लेते वीर सिंह, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा।
18: बंदूक तेरी, गोली भी तेरी, दिन तारीख भी तेरा, सुबह बोले सुबह, शाम का शाम। आवाज दे तू, वीर सिंह तेरे को सामने खड़ा मिलेगा।
0: सन 1984 में यश चोपड़ा की फिल्म मशाल में दिलीप कुमार ने एक ऐसा सीन किया जिसे सुने या देखें ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी आंखें नम न हो जाएं।
19: सुधा, सुधा, थोड़ी देर और हिम्मत कर जाओ सुधा। नहीं, अभी कुछ करते हैं, अभी कुछ करते हैं सुधा।

0: रोक दो, गाड़ी रोको भाई साहब। ए भाई साहब, मेरी बीवी की हालत बहुत खराब है, उसको उसको अस्पताल पहुंचाना है। भाई साहब वो मर जाएगी, आपके बच्चे जिए, हमारी इतनी मेहनत कर दो, उसको अस्पताल पहुंचा दो भाई साहब। भाई साहब आपके बच्चे जिए, भाई गाड़ी रोको। ए भाई गाड़ी रोक दो, मेरी बीवी को अस्पताल पहुंचा दो भाई साहब। ए भाई साहब, ए भाई साहब।
1: आज के फनकार कार्यक्रम में आज हमने अदाकारे आजम दिलीप कुमार के अभिनय की यात्रा से आपको रूबरू करवाया। आज का ये कार्यक्रम दिलीप कुमार के कुछ बेमिसाल संवादों से सजाया गया था। हमें उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयोग पसंद आया होगा। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी।
2: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा

आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है छिंदवाड़ा जिले की चिट्ठी। आलेख राकेश प्रजापति, वाचन स्वर दीपा सिंह। छिंदवाड़ा और नवगठित पांडुना जिले की आबोहवा में इन दिनों विकास, जागरूकता और सकारात्मक बदलाव की नई बयार बह रही है। खेतों में लहलहाती उम्मीदों से लेकर पर्यटन के नए क्षितिजों तक और युवाओं के भविष्य को संवारने से लेकर आम जनमानस की सुरक्षा तक जिले में बहुत कुछ खास हो रहा है। वर्षा ऋतु के आगमन के साथ ही प्रकृति ने नई चादर ओढ़ ली है। छिंदवाड़ा और पांडुना जिले में वन विभाग द्वारा व्यापक पौधरोपण अभियान का शंखनाद कर दिया गया है। जिले के हरित आवरण को बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से इस वर्ष दोनों जिलों में कुल 22,55,000 पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है। छिंदवाड़ा के मुख्य वन रक्षक कमल अरोरा के अनुसार हाल ही में अतिक्रमण से मुक्त कराई गई वन भूमियों को पुनः हरा भरा करने के लिए 3,69,000 सागौन के रूट शूट चरणबद्ध तरीके से लगाए जाएंगे। मॉनसून की पहली बारिश के साथ शुरू हुआ ये महाअभियान जैव विविधता को समृद्ध करने की दिशा में एक मील का पत्थर है। जुनारदेव के वनग्राम कालीमाती में गायत्री परिवार के तत्वावधान में 1100 पौधे रोपे गए। यहां वन विभाग की भूमि पर पंचमटी, त्रिवेणी और 9 पौधों की नवग्रह वाटिका स्थापित की गई है। वहीं परासिया में एक अभिनव प्रयास किया जा रहा है। वीरान पहाड़ी पर हरियाली लगाने के लिए सीड बॉल, गोबर और

छिटने की गोलियों का उपयोग हो रहा है। बारिश में भीगने के बाद इन गोलियों के भीतर मौजूद बीज आसानी से अंकुरित हो जाएंगे। पर्यावरण प्रेमी राजेंद्र बबुआ यादव ने शनिधाम समिति को ये सीड बॉल भेंट किए हैं, जो कोल इंडिया के पूर्व सीएमओ डॉ. जयश्री राय द्वारा बेंगलुरु से मंगवाए गए थे। अब बात करते हैं माटी से जुड़े हमारे अन्नदाताओं की। कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत परासिया विकासखंड के ग्राम उमरेठ के युवा प्रगतिशील किसान संदीप पवार ने वैज्ञानिक खेती की एक शानदार मिसाल पेश की है। उन्होंने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रिप सिंचाई प्रणाली अपनाकर हरी मिर्च, करेला और शिमला मिर्च का बंपर उत्पादन किया है। उन्होंने 11,50,000 रूपये की लागत लगाकर 24,75,000 रूपये की आय प्राप्त की है। उनका शुद्ध लाभ पूरे अंचल के किसानों के लिए एक नजीर बन गया है। दूसरी ओर मानसून की देरी से खरीफ फसलों की बोनी भले ही थोड़ी प्रभावित हुई है, लेकिन कभी पीला सोना कहे जाने वाले सोयाबीन का रकबा इस वर्ष बढ़कर 9,000 हेक्टेयर प्रस्तावित किया गया है। बारिश और जल संरक्षण की बात करें तो जलगंगा संवर्धन अभियान में छिंदवाड़ा ने एक नया कीर्तिमान रच दिया है। जिले ने अपने निर्धारित लक्ष्य का 132% हासिल करते हुए 64,000 से अधिक कार्य पूरे किए हैं। पांडुना जिले में भी इस अभियान का भव्य समापन जन भागीदारी के साथ हुआ। पांडुना के ग्राम पंचायत भवन तेगांव में जगन्नाथ नेत्रालय द्वारा एक निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 105 मरीजों की जांच की गई और 25 को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चुना गया। अब बात करते हैं पर्यटन की, जो इस क्षेत्र की नई पहचान बन रहा है। तामिया के पातालकोट की वादियां इस बार अगस्त माह में पहली बार 3 दिवसीय सावन महोत्सव के गवाह बनेंगी। पर्यटकों को यहां सावन के विशेष झूले, बैलगाड़ी की सवारी और हस्तशिल्प प्रदर्शनी देखने को मिलेगी। वल्चर पॉइंट, चीड़ पॉइंट और छोटा महादेव में ट्रैकिंग के जरिए रोमांच का तड़का भी लगेगा। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने ग्रामीण पर्यटन के लिए पांडुना के भूमा और जामसावली गाँव का चयन किया है, जहाँ होम स्टे विकसित कर युवाओं को रोजगार मिलेगा। जिले के जामसावले स्थित प्रसिद्ध श्री हनुमान मंदिर हनुमान लोक में इंटेलिजेंस स्पेशल ब्रांच द्वारा सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को लेकर समीक्षा की गई, ताकि श्रद्धालु सुव्यवस्थित दर्शन कर सकें। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और नकुलनाथ की पहल पर 12वीं और स्नातक में 60% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थी अब महानगरों में MCA, BTEC और LLB जैसी उच्च शिक्षा निःशुल्क प्राप्त कर सकेंगे। रोजगार के मोर्चे पर छिंदवाड़ा ITI के एक प्लेसमेंट ड्राइव में 139 प्रशिक्षणार्थियों को, जिनमें 52 पुरुष और 87 महिलाओं को रोजगार के लिए चुना गया है। इसके अलावा युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य के लिए पांडुना के PM कॉलेज ऑफ एक्सलेंस में तनाव प्रबंधन और आत्महत्या की रोकथाम पर एक अहम कार्यशाला आयोजित की गई। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: हम विविध भारती के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। वक्त है प्रादेशिक समाचारों का।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को मिलेगी मजबूती। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, उन्नत खेती और पशुपालन से बढ़ाएंगे किसानों की आमदनी। और मौसम विभाग के अनुसार आज 31 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। इससे भारत और इंडोनेशिया अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए तैयार है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा से समुद्री और आर्थिक संबंध सुदृढ़ होंगे और उभरते क्षेत्रों में सहयोग गहरा होगा। राजदूत ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के संबंध सकारात्मक दिशा में अग्रसर हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा इस प्रवृत्ति को और बल देगी। उन्होंने कहा कि दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग की पहल की घोषणा कर सकते हैं। इनमें रक्षा और समुद्री सुरक्षा, व्यापार और निवेश, खाद्य सुरक्षा और उर्वरक सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिज, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नियमित रूप से चलाई जा रही 800 से अधिक ट्रेनों के अतिरिक्त हैं। कल नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि वे आगामी रथ यात्रा के लिए रेलवे की तैयारियों की समीक्षा करेंगे ताकि सुचारू संचालन और श्रद्धालुओं की निर्बाध यात्रा सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन पर 30,000 यात्रियों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाएगी। श्री वैष्णव ने यह भी बताया कि रेलवे इस साल ओणम उत्सव के दौरान 100 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाएगा।
1: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओणम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
0: सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जुड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: यह प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। इस नेटवर्क के माध्यम से रोगी संपूर्ण चिकित्सा इतिहास के साथ बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों और अन्य सेवाओं से जुड़ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश के सभी मरीजों और सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एक ही डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए पूर्णतः डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: बेकिवाल समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किसानों की आमदनी केवल एक फसल से नहीं बल्कि उन्नत खेती और पशुपालन से बढ़ेगी। इस बात को ध्यान में रखकर सरकार खेती के साथ साथ पशुपालन को विशेष बढ़ावा दे रही है। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कल ग्वालियर में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्नत कृषि पर हुई संभागीय कार्यशाला में मौजूद किसानों से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कार्यशाला में जैविक और प्राकृतिक खेती पर किसानों के अनुभव सुने। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में मध्य प्रदेश दुग्ध उत्पादन में देश में तीसरे स्थान पर है। हम अगले 5 वर्षों में मध्य प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 राज्य बनाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने कल भोपाल में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने दतिया विधानसभा उपचुनाव के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। नामांकन का कार्य शुरू हो चुका है। 13 जुलाई नाम निर्देशन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी। 14 जुलाई को नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। 16 जुलाई को नाम निर्देशन पत्र की वापसी की तारीख है। 30 जुलाई को मतदान और 3 अगस्त को मतगणना होगी। उन्होंने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा है कि आदर्श आचार संहिता का पूरी तरह से पालन करें। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा से कल मध्य प्रदेश संवर्ग 2025 बैच के चयनित भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने पुलिस मुख्यालय में सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर मकवाणा ने कहा कि प्रशिक्षण पूरी तन्मयता से प्राप्त करें ताकि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का उत्कृष्ट क्रियान्वयन कर सकें। उन्होंने नौ चयनित अधिकारियों से कहा कि प्रशासनिक सेवा केवल एक पद नहीं बल्कि जनता की सेवा का दायित्व है। उन्होंने अधिकारियों से ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और जन सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में नए आपराधिक कानून, साइबर सुरक्षा, साइबर फ्रॉड, नारकोटिक्स और नशा मुक्ति जैसे विषय प्रशासनिक अधिकारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा पांचवी और आठवीं की पुनः परीक्षा का परिणाम आज दोपहर 2 बजे घोषित किया जाएगा। विद्यार्थी और अभिभावक राज्य शिक्षा केंद्र के वेब पोर्टल www.rskmp.in पर परिणाम देख सकेंगे। इसके साथ ही इसी पोर्टल पर शिक्षक, संस्था प्रमुख अपनी शाला का विद्यार्थी वार परिणाम भी देख सकेंगे। राज्य शिक्षा केंद्र ने संचालित शासकीय छात्रावासों में रिक्त स्थानों पर प्रवेश के लिए विद्यार्थी अंतिम चरण में 20 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। इस वर्ष से प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन की गई है। इसके लिए विभाग ने एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से विशेष हॉस्टल प्रबंधन प्रणाली विकसित की है। प्रदेश में भारी बारिश का सिस्टम सक्रिय है, जिसके चलते पिछले 6 दिनों से राज्य के अधिकांश जिलों में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज 31 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राज्य में अब तक सामान्य से 1% बारिश कम हुई है, जबकि जून में यह 33% कम थी। अब तक भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में सामान्य से अधिक वर्षा हो रही है। देवास में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बारिश हुई है। जकार्ता में अंडर 23 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के दूसरे दिन आज 50 किलोग्राम भार वर्ग के एशियाई चैंपियन विश्वनाथ सुरेश ने उज्बेकिस्तान के अमीर बेग इस्माइलोव को हराकर भारत का शानदार प्रदर्शन जारी रखा। पुरुष वर्ग के 55 किलोग्राम भार वर्ग में गंगा ने मंगोलिया के अमगाला नबातर बुलगुंग को 5-0 से हराया। वहीं महिलाओं के 51 किलोग्राम भार वर्ग में तनु ने कोरिया की रिंगयोंग किम को 5-0 से पराजित किया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में महारानी लक्ष्मीबाई विद्यालय में कल विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। पन्ना जिले में बीती रात हुई लगातार बारिश के चलते केन, मिनासन और पत्नी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। झाबुआ के शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में एकलव्य योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी हेतु 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रारंभ हो गई है। सतना जिले में पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा लगभग 100 स्ट्रीट डॉग्स का एंटी रेबीज टीकाकरण किया गया। मंडला जिले की घोघरी तहसील में कल आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
4: हम विविध भारती के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। वक्त है पॉप हिट्स का।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

स्वभाव मनुष्य का जीवन तब तक अपूर्ण प्रतीत होता है जब तक वह स्वयं को केवल शरीर मन और सीमित व्यक्तित्व के रूप में देखता है। किंतु भारतीय दर्शन का उद्घोष है कि वास्तविक सत्य सीमाओं में नहीं बल्कि पूर्णत्व में निहित है। यह संपूर्ण सृष्टि उसी एक परम चेतना की अभिव्यक्ति है जो अनेक रूपों में दिखाई देती है पर अपने मूल स्वरूप में एक और अखंड है।

श्रोताओ, व्यवहारिक जीवन में हमें अनेकता दिखाई देती है। प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति अलग प्रतीत होती है, किंतु पारमार्थिक दृष्टि से समस्त अस्तित्व एक ही चेतना का विस्तार है। जैसे एक ही सूर्य असंख्य जल धाराओं में अलग अलग दिखाई देता है, वैसे ही एक परमात्मा अनगिनत जीवों और रूपों में प्रतिबिंबित होता है। भिन्नता केवल नाम, रूप और गुणों की है। मूल सत्ता एक ही है। इसका मर्म समझकर ही जीवन को सही दिशा मिलती है।

श्रोताओं, आध्यात्मिक साधना का उद्देश्य इसी एकत्व का अनुभव करना है जब मनुष्य अहंकार, भेदभाव और सीमित पहचान से ऊपर उठता है, तब उसे अनुभव होता है कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं उसी परम सत्य का स्वरूप हूं। यह बौद्धिक कल्पना नहीं बल्कि आत्मा अनुभूति की सर्वोच्च अवस्था है, जहाँ अलगाव समाप्त हो जाता है और पूर्णता का बोध जागृत होता है। पूर्णत्व का अनुभव ही जीवन का परम लक्ष्य है। इसी अनुभूति से मनुष्य के भीतर करुणा, समता, प्रेम और शांति का उदय होता है। तब वह स्वयं को किसी का अंश नहीं बल्कि उसी अखंड सत्य की पूर्ण अभिव्यक्ति के रूप में पहचानता है। यही आत्मज्ञान है, यही ब्रह्म ज्ञान है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बात हमारी गीत आपके। 11 बजे हैं, वक्त है आपकी पसंद का। सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। पहला गाना सुनिए जूली फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में। सुनना चाह रहे हैं बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित कुमार हैप्पी, गाजीपुर से प्रतीक रोशनी प्रांजल, शेरपुर कला से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति नवनीत राय, सीतामढ़ी से अकरम हुसैन, बेगम इशरत, वसीम आरिम, शमी, ममता रानी शर्मा इनके परिवार के सदस्य, कलेर बिहार से निकहत परवीन, महसूल से हुमरा नाज, हमज़ा, सुमेरा नाज। सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गाना।

हमारी चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा ऋतिक प्रतीक अनिल यहीं से अनिल शर्मा कालका से शुभ चंद्र बजाज बिट्टा साहिल रिंगी से दिनेश वर्मा करुणा वर्मा आप सभी सुनना चाह रहे हैं खुदा गवाह से लता मंगेशकर को।

वीर ज़ारत से सुनी उस्ताद अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन को सुनना चाह रहे हैं। किशनपुर से आलम दिलकश शबाना, रिजवान इमरान, चांदनी नाज, अमलेश्वर महादेव घाट से डूमन ठाकुर, सुमन तारणी यहीं से, रियांश ज्योति, कंवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना आदित्य, अदिति शिवानी, मीनू राज।

द बर्निंग ट्रेन से सुनिए मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और साथियों को। सुनना चाह रहे हैं गांधी चौक पंजाब से हरदेव, मीका बलविंदर, मीता विरक, भाटापारा छत्तीसगढ़ से गन्नू लाल रजक, के आर साहू, अश्विनी गणेश विश्वकर्मा, दत्तरैगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार, झावेंद्र कुमार।

नुसरत फ़तेह अली खां और साथियों को सुनिए फिल्म धड़कन से। सुनना चाह रहे हैं सिंहपुर बाड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना, प्राची नेमा, रिंगनी से दिनेश कुमार, करुणा देवी, लेवी से गुलाब दास मानिकपुरी, लक्ष्मणपुर से विश्वनाथ साहू।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म बाजीगर से ये गीत, फरमाइश आप सबकी थी। इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन, तानिया। चिरमिरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, राम सरहुदर, ऋषभ सिंह। बिलासपुर से नारायण प्रसाद लहरे, कालिंद्री, दिनेश प्रसाद। मिसदा शिव नारायण, बिलासपुर से पूनी राम कश्यप, खगेश्वर कश्यप। महामाया रोड अंबिकापुर से अब्दुल वहीद खान, सलमा बेगम खान। कार्यक्रम के अंत में सुनिए क्रांति फिल्म से लता मंगेशकर, नितिन मुकेश को। शब्दकार हैं संतोष आनंद। फिल्म क्रांति। सुनना चाह रहे गौरी नगर इंदौर से आनंद कुमार, रेखा, पारस तपस्या। बर्गी नगर जबलपुर से रविंद्र गद्रे, सुभाष गद्रे, दिगंबर, शिवम, सृष्टि इनके परिवार के सदस्य। अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली। अमरावती से नसीम बेगम, आयशा खान। प्रेम नगर से राजेश तिवारी इनके परिवार के सदस्य। विजयनगर से डॉक्टर अपूर्वा तिवारी और इनकी बहुत सारी सखियां। गंगानगर से आर्यन, अवि इनके परिवार के सदस्य।

हैं सुनने वालों को बतलाना चाहेंगे। यादों की महफिल 12:05 पर, सुरीला सफ़र 1:00, फिल्म संगीत 2:00, सदाबहार 9:30, सखी सहेली 3:00। पिटारा खुलेगा 4:00, छायागीत 5:00, तराने नए पुराने 5:30, संध्या रंजन 6:35 पर, संगीत सरिता 6:45 पर, जयमाला होगा 7:00, इंद्रधनुष 7:45 पर, हवा महल रात 8:00, चित्रलोक 8:15, आपके लिए 9:00 आज के फनकार सुनेगा 9:30, ढलती जाए रात 10:30। ये थे आज के आकर्षण।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियंतो के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियंतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा आदान प्रदान, आपदा प्रबंधन सहयोग और औद्योगिक सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं।
1: आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। दो करीबी मैरिटाइम देश होने के नाते हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ये साझेदारी विकास, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और शिक्षा सहित कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। भविष्य के द्विपक्षीय संबंधों पर उन्होंने कहा कि भारत इंडोनेशिया साझेदारी में एक नया स्वर्णिम अध्याय आज से शुरू होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हस्ताक्षरित समझौते से भारत की उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती दवाएं इंडोनेशिया के लोगों के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि भारत इंडोनेशिया के डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की क्षमता निर्माण में योगदान देगा। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंगतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत की जनता को समर्पित किया और इसे भारत तथा इंडोनेशिया के बीच स्थायी ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों का प्रतीक बताया। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के निमंत्रण पर हो रही है। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया।

0: है कि केरलम के कोच्चि में कल से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीत विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर चार खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूते उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से अपने बाजार खोले जाने के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। इन देशों में ब्रिटेन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य देश शामिल हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र में 0.4% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 307 अंक बढ़कर 78,592 पर, जबकि निफ्टी भी लगभग 83 अंक बढ़कर 24,514 पर पहुंच गया। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम का मुकाबला स्पेन से होगा। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के कन्या मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। कार्यक्रम का पहला गाना है वारिस फिल्म से तलत महमूद और सुरैया की आवाजें, कमर जलालाबादी के बोल और संगीत अनिल बिस्वास का। आज संगीतकार अनिल बिस्वास को याद करते हुए उनके संगीतबद्ध किए हुए गाने इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे।

अंतराल के बाद हम उपस्थित हैं कार्यक्रम के बाकी गानों को लेकर। संगीतकार अनिल बिस्वास को याद करते हुए उनके संगीतबद्ध किए हुए गाने हम सुन रहे हैं आज यादों की महफिल इस कार्यक्रम में। अगला गाना मन्ना डे की आवाज़, नरेंद्र शर्मा का लिखा हुआ गाना, फिल्म वर्षा ऋतु।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

राही फिल्म का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में, प्रेम धवन के बोल। अब आपको सुनवाते हैं परदेसी फिल्म का गाना, मीना कपूर और साथियों का गाया हुआ। संगीत है अनिल बिस्वास का।

Ay, qué.

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: मुकेश की आवाज में अब आपको सुनवाते हैं पहली नजर, इस फिल्म का गाना। डॉक्टर सफदर आह का लिखा हुआ गाना, संगीत है अनिल बिस्वास का।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में प्रेम धवन का लिखा हुआ गाना, फिल्म का नाम लाजवाब।

यादों की महफिल कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में लाडली फिल्म का गाना। गीत के बोल बेहजाद लखनवी।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अमीर बाई कर्नाटकी और अरुण कुमार की आवाजों में कवि प्रदीप का लिखा हुआ गाना फिल्म किस्मत।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

यादों की महफिल इस कार्यक्रम में आइए अब सुना जाए तलत महमूद की आवाज़ में जासूस फिल्म का गाना बोल हैं इंदिवर के।

यादों की महफिल कार्यक्रम में संगीतकार अनिल बिस्वास के संगीतबद्ध किए हुए गाने आज आपको सुनवाए जा रहे हैं। अगला जो गीत है ये बेकसूर फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में एहसान रिजवी के बोल हैं।

नमस्कार श्रोताओं, सुरीला सफ़र इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूँ मंजू द्विवेदी। सबसे पहले आपको आज विविध भारती के फेसबुक पेज पे जो इबारत हमने लिखी है वो आपको पढ़ के सुना देते हैं। हिंदी सिनेमा के एक कामयाब अदाकार जो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे, जो अपनी भूमिकाओं को इतनी सहजता से निभाते कि ये समझना मुश्किल कि ये अभिनय है या वास्तविकता। किरदार कोई भी हो, हर किरदार को उन्होंने जीवंत कर दिया। उनका अभिनय लोगों के दिमाग पर ऐसा छाप छोड़ जाता है। एक अति संवेदनशील कलाकार जो ट्रेजेडी किंग भी कहलाए और ऑलराउंडर भी, उन्हें आप अभिनय के पारसमणि भी कह सकते हैं। तो बताइए कौन सी फिल्मों के गाने आज आपको सुनवाए जाएंगे। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी फिल्मों के नाम भी लिख दिए हैं, गानों की लाइनें भी लिख दी हैं, और जिन शब्दों का जिक्र हमने किया है, एहसान, सितारे, वीर जवान, ख्वाब, शहर, मोहब्बत और हंसी मौसम, इन शब्दों को लेकर उन्होंने बहुत सारे गाने भी चुन लिए हैं। तो जो बातें हमारे श्रोताओं ने लिख करके भेजी है उसके बारे में एक एक करके आपको पढ़ के सुनाते। एक साथी हमारी लिख रही हैं कि दिलीप कुमार जी के लिए एक प्यारा सा हमारा एहसास, कुछ लोग चले जाते हैं लेकिन उनकी मुस्कान, उनकी आवाज़ और उनका हुनर समय की धूल से कभी भी नहीं ढकता। वे हर बार किसी गीत, किसी दृश्य या किसी याद के बहाने फिर से हमारे बीच याद आ जाते हैं। शायद यही अमर होने का सबसे सुंदर अर्थ है। एक हमारे साथी ये भी लिखते हैं कि दिलीप कुमार साहब को शत शत नमन। हर किरदार को जीवंत करने वाले कलाकार, कभी कभी तो ऐसा लगता है मानो पर्दे पर होने वाली घटनाएं सब उनके साथ घटित हो रही है। और सिलसिलेवार ढंग से उन्होंने कुछ गानों का जिक्र भी किया है। तो चलिए एक एक कर हम उनके अभिनय से सजे जो गीत हैं वो आपको सुनवाएंगे। सबसे पहले गंगा जमुना फिल्म का ये गाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में शकील बदायूनी के बोल

0: नौशाद का संगीत, इस गाने में जो अभिनय है उसकी, उसमें आपको क्या विशेषता नजर आती है ये आप हमें लिख करके बता सकते हैं?
1: लागा गोरी गुजरिया से

0: थई थई थई थई झाक दिनक दिन काक तिनक तिन झाक दिनक दिन धाक तिनक तिन झा
1: आंख मिल जई है सजनिया से तो नाचन लगी है।

गीत भी खूबसूरत, संगीत भी खूबसूरत और फिल्म में अदाकारी भी बड़ी खूबसूरत, नृत्य तो देखने लायक। ऐसा लगता है कि कोई एक नौजवान मस्त मौला होकर के नृत्य कर रहा है। कुछ हमारे साथियों ने बातें लिखी है कि नैन नैन लड़ जाई है देहाती।

शैली की लोक नृत्य धोती पकड़ कभी दाहिने तो कभी बाएं सुंदर अभिनय है दिलीप कुमार का। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि नैन लड़ जाई है तो मनवा में खटक होई बे, गाने में दिलीप कुमार ने बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के बिल्कुल एक गांव के लड़के की तरह जो सहज और ऊर्जावान डांस किया उसने दर्शकों का दिल जीत लिया। उनके बोलने का अंदाज, आंखों की भाषा और गंभीर आवाज ने गंगा के किरदार को बेहद जीवंत बना दिया। एक साथी लिख रहे हैं कि ये जो फिल्म है नैन लड़ जाई है, इस गाने गंगा जमुना फिल्म का गाना है, ये फिल्म का नाम है और भारत की दो प्रमुख नदियों के नाम भी है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि इस गाने में जो दिलीप कुमार जी ने नृत्य किया वो नृत्य यादगार है। चलिए धन्यवाद आपको। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आन फिल्म का गाना आपको सुनवाएंगे। एक बार फिर आवाज मोहम्मद रफी की है, शकील बदायूनी के बोल, संगीत नौशाद का। इसमें दिलीप कुमार के साथ अभिनेत्री कौन है ये आपको बताना है।

आन फिल्म का गाना आपने सुना। इस फिल्म में दिलीप कुमार के साथ जो अभिनेत्री हैं वो हैं नादिरा। इससे पहले जो गंगा जमुना फिल्म का गाना हमने सुना उसके बारे में हमारे एक साथी की ये बात है कि गंगा जमुना में उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा और लहजे को इतनी सहजता से निभाया कि पात्र बिल्कुल वास्तविक प्रतीत हुआ। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि वो कलाकार जैसे परिचय की कोई आवश्यकता नहीं, वो दिलीप कुमार के अलावा और कौन हो सकता है। वे हिंदी सिनेमा की बुनियाद थे, नींव थे। उनकी फिल्मों में मधुरता, उल्लास और उमंग का बेहतरीन संगम देखने को मिलता है। आज भी उनकी जब टीवी पर कोई फिल्म आ रही होती है तो हम सारे काम धाम छोड़कर बस उनके मोहपाश में बंध जाते हैं। वो उनकी उड़ती जुल्फें, हल्की सी मुस्कुराहट कयामत ढाने के लिए काफ़ी है। तो आपकी इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और अब अगला गाना सुनवा रहे हैं कोहिनूर फिल्म का। ये गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, शकील बदायूनी के बोल, संगीत नौशाद का।

कोहिनूर फिल्म का गाना दिलीप कुमार और मीना कुमारी पर फिल्माया गया। कह सकते हैं कि जब संगीत की बात हो तो कुछ ऐसे गीत होते हैं जो सच में संगीत के कोहिनूर कहलाते हैं। आज गाने तो हम सुन ही रहे हैं, लेकिन आप ये जिक्र कर सकते हैं किसी भी गाने के बारे में या किसी भी सीन जो आपने देखा हो, दिलीप कुमार की फिल्म देखी हो, उनका कोई अभिनय किसी फिल्म में जो आपको पसंद आया हो, कोई दृश्य जो आपको पसंद आया हो, तो उसके बारे में आप जिक्र कर सकते हैं कि इस गीत में हमें ये चीज़ पसंद आई या ये जो सीन था इसमें हमें ये बात पसंद आई या इनके अभिनय में हमें ये बात बहुत खास लगी। इन बातों का आप जिक्र कर सकते हैं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि हिंदी सिनेमा का इतिहास जब भी महान अभिनेताओं का जिक्र करेगा तो दिलीप कुमार का नाम सबसे पहले सम्मान के साथ लिया जाएगा। अपने सहज, गहरे और भावपूर्ण अभिनय से उन्होंने हर किरदार में ऐसी जान फूकी कि पर्दे पर अभिनय नहीं बल्कि जीवन दिखाई देता था। यही कारण है कि उन्हें ट्रेजेडी किंग के साथ साथ अभिनय का विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि दिलीप साहब कि कितनी ही नई पुरानी फिल्में देखी हैं पर मशाल फिल्म का वो दृश्य मस्तिष्क पर अंकित हो गया जिसमें अपनी पत्नी की बीमारी की अवस्था में सड़क पर भटकते हुए जब वो मदद की गुहार लगाते हैं वो एकदम जीवंत और मार्मिक अभिनय हमें लगा। अब आपको सुनवाते हैं नया दौर फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और बलबीर की आवाजों में। साहिल लुधियानवी के बोल है, संगीत किसका है ये आप हमें बताइए। और जो बात हमने आपसे कही कि किसी गाने का जिक्र आप कर सकते हैं, किसी दृश्य का जिक्र आप कर सकते हैं जो आपको बहुत मार्मिक लगा हो, बहुत जिसमें हास्य आपने अनुभव किया हो या जो आपको बहुत पसंद आया हो या उसकी क्या खासियत आपको लगी है, इसका जिक्र आप कर सकते हैं।

0: ओपी नैयर के संगीत से सजा नया दौर फिल्म का ये गाना एक जोश भर देने वाला गाना है। अगर हम कभी सो भी रहे हों और ये गाना अगर कानों में पड़े तो हम उठकर खड़े हो जाते हैं और सुनने को मजबूर हो जाते हैं, और अगर देखने को मिल जाए तो जो एक्टिंग के साथ गाने को सुनने का मज़ा और भी दोगुना हो जाता है और मन एकदम प्रफुल्लित होकर के जोश से भर जाता है। तो ऐसे ये गीत हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि मेरी नज़र, यदि दिलीप कुमार के अभिनय की बात हो तो उनकी सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है मुगल आजम। इस फिल्म में उन्होंने शहजादा सलीम की भूमिका निभाई थी और यही भूमिका उनके अभिनय कौशल का एक उत्कृष्ट उदाहरण मानी जाती है। एक साथी लिख रहे हैं कि मधुमति का सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, ये गाने की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। और एक साथी लिख रहे हैं कि मनोज कुमार की क्रांति फिल्म में दिलीप कुमार जी ने बहुत अच्छा रोल निभाया था और ये यादगार रहा। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि 1960 की सदाबहार फिल्म कोहिनूर का गीत दो सितारों का जमीन पर, ये कालजई रोमांटिक गीत है, संगीतकार नौशाद और शकील बदायूनी और आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की, संगम को सुनकर आज भी प्यार और उमंग का एहसास होता है। एक साथी हमारे ये बात लिख रहे हैं कि दिलीप कुमार भारतीय फिल्मों के ऐसे अभिनेता जिन्होंने अपने अभिनय से फिल्म इंडस्ट्री की परिभाषा ही बदल दी। सुपरस्टार कैसे बनते हैं ये दिलीप कुमार जी ही अपने अभिनय से उन्होंने बताया। फिल्मों में गंभीर भूमिकाओं के अलावा दिलीप कुमार जी ने कई फिल्मों में कॉमेडी रोल भी किए और दर्शकों को उन्होंने बहुत हंसाया भी। चलिए अब मधुमति फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना। संगीत किसका है आप बताइए।
1: टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया।

मधुमति फिल्म का गाना, संगीत सलील चौधरी का। हमारे साथी लिख रहे हैं कि राम और श्याम फिल्म में उनके एक्टिंग के सभी शेड्स देखने को मिलते हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि दिलीप कुमार और संजीव कुमार की एक फिल्म संघर्ष मैंने देखी है, उसमें एक गाना है कोई पैरों में घुंघरू बंधवा दे तो फिर मेरी चाल देख ले, उसमें दिलीप कुमार का डांस बहुत ही अच्छा लगा और फिल्म भी हमें बहुत अच्छी लगी। एक साथी लिखते हैं कि फिल्म शक्ति में अमिताभ बच्चन के पिता का रोल दिलीप कुमार जी ने बखूबी निभाया है, एक सशक्त पुलिस इंस्पेक्टर का। और एक साथी ये लिख रहे हैं कि नया दौर में तांगे की दौड़ वाला दृश्य केवल जीत हार का नहीं बल्कि उस विश्वास का प्रतीक है कि हौसला और मेहनत परिस्थितियों से बड़ी ताकत होते हैं। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि मुगले आजम फिल्म का प्रसिद्ध गीत जब प्यार किया तो डरना क्या राजस्थान के जयपुर शहर में स्थित आमेर किले के शीश महल में फिल्माया गया था। हम जब भी आमेर जाते हैं तो इस गाने की याद हमें आती है। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि मुझे दिलीप कुमार की क्रांति, विधाता और सौदागर पिक्चर बहुत अच्छी लगी। आइकॉनिक फिल्म सौदागर में दोस्त भी के ऊपर है और क्रांति पिक्चर देख के ऊपर है, ऐसा कुछ थोड़ा सा आप अगर स्पष्टता से लिखें तो अच्छा होगा। एक साथी लिख रहे हैं कि अभी कुछ दिन पूर्व मैंने दिलीप कुमार जी की फिल्म यहूदी देखी। फिल्म में उनका अभिनय वाकई बेहतरीन था, उनकी रोमन वेशभूषा और भारी भरकम उर्दू संवादों की अदायगी लाजवाब थी। सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने अपनी आंखों और चेहरे के हाव भाव से प्यार, तड़प और लाचारी के दर्द को जिस तरह बयां किया वो सीधे दिल को छू जाता है। इसे देख कर ही महसूस होता है कि क्यों उन्हें आज भी सर्वश्रेष्ठ उनका अभिनय कहा जाता है। चलिए अब हम अगला गीत सुनवाते हैं, बैराग फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। दिलीप कुमार के साथ अभिनेत्री कौन है ये आप बताइए।

ऐश करता हूँ आशिक मेरा नाम है, ऐश करना मेरी जान मेरा काम है।

बैराग फिल्म का गाना आपने सुना। हमारे साथियों ने लिखा है कि इस गाने में अभिनेत्री है लीना चंदावरकर और अन्य अभिनेत्री है सायरा बानो। एक साथी लिख रहे हैं कि मैंने बचपन में हमारे पड़ोस में ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन पर पहली हिंदी फिल्म देखी थी, वो दिलीप कुमार की थी और वो फिल्म थी गोपी, जो इन्हें बहुत पसंद आई। और

एक हमारे साथी ये बात लिख रहे हैं कि दिलीप कुमार जी ने अलग अलग प्रकार के अभिनय जैसे देशभक्त, प्रेमी, जेलर, कुल 57 फिल्मों में उन्होंने काम किया है। और एक साथी लिख रहे हैं कि सौदागर में राजकुमार और दिलीप कुमार के आमने सामने के कई दृश्य, उनकी आवाज़, संवाद आज भी याद किए जाते हैं। जैसे कि दुश्मनी जब तक निभाओ शान से निभाओ, लेकिन अगर दोस्ती करो तो उसे भी दिल से निभाओ। ये बात इन्होंने लिखी। एक साथी लिख रहे हैं कि वे आंखों से अभिनय किया करते थे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण राम और श्याम का दिया जा सकता है। प्राण साहब के हाथ में हंटर होता है और विरोध में दिलीप साहब का सिर्फ चेहरे का क्लोजअप दिखाया जाता है। वहां सिर्फ उनकी आंखें बोल रही है, आंखों से गुस्सा, बदला और चिढ़ का अनोखा अभिनय वहां देखने को मिलता। यूं ही नहीं उन्हें बादशाह कहा जाता है अभिनय का। चलिए अब हम आपको संघर्ष फिल्म का गाना सुनवाते हैं। आवाज मोहम्मद रफी की, शकील बदायूनी के बोल, संगीत नौशाद।

एक साथी ने लिखा है कि फिल्म संघर्ष का ये जो गीत है, दिलरुबा मैंने तेरे प्यार में क्या क्या नहीं किया और जब दिल से दिल टकराता, ये दोनों गाने अपनी नायिका को जुनून की हद तक प्यार करना, मुझे नायक का ये किरदार बहुत पसंद आया था। एक साथी लिख रहे हैं कि बैराग का यह गीत, जिसके संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी, इसमें दिलीप कुमार जी ने पहली बार तिहरी भूमिका निभाई थी, मेरी लिस्ट का ये पांचवा गीत था जो आपने शामिल कर लिया है। और एक साथी लिख रहे हैं कि वो नायाब कलाकार हैं, हम सबके चहेते दिलीप कुमार साहब, यूं तो उनकी हर फिल्में और हर सीन याद रह जाता है मुझे। एक सीन का जिक्र करना चाहूंगा, मुंबई में रात के सन्नाटे में सड़क पर वे अपनी धर्म पत्नी, जो इसमें जो कलाकार है वो वहीदा रहमान है, उनके साथ जा रहे होते हैं। अचानक वहीदा जी के पेट में दर्द होने लगता है और वो तड़पने लगती हैं। उस समय दिलीप साहब मदद के लिए गुहार लगाते हैं और इक्का दुक्का कार वाले उनकी परवाह के बिना निकल जाते हैं। अरे कोई मदद करो, मर रही है बेचारी, बदहवास होकर वे सड़क पर मदद मांगते हैं, लेकिन व्यस्त शहर के लोग उनकी ओर ध्यान नहीं देते और अंत में वहीदा जी वहीं पर दम तोड़ देती। ये सीन आज भी मुझे याद आता है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दिलीप साहब को मैं सलाम करता हूँ। चलिए, धन्यवाद आपका। लीडर फिल्म का गाना आइए अब सुनते हैं।

लीडर फिल्म का ये गाना था। एक साथी लिखते हैं कि कर्मा फिल्म में जब दिलीप साहब देशद्रोही बने अनुपम खेर को थप्पड़ मारते हैं, वो दृश्य इतना प्रभावित करता है कि मैं थिएटर में कुर्सी छोड़कर उठ खड़ा हो गया था। एक साथी लिख रहे हैं कि वैसे तो उनका हर किरदार लाजवाब होता था, लेकिन फिल्म देवदास का किरदार मुझे बेहद पसंद है। दिलीप साहब के बाद कोई देवदास न बन सका, क्योंकि उन्होंने वो किरदार निभाया नहीं था बल्कि जिया था। किरदार तो बहुत अभिनेता निभा लेते हैं, लेकिन किरदार को जी लेना उनसे सीखना चाहिए। एक साथी ये लिख रहे हैं कि हिंदी सिनेमा का इतिहास लिखे और दिलीप कुमार का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्हें ट्रेजेडी किंग कहा गया, पर यह उपाधि उनके अभिनय को एक फ्रेम में बांध नहीं पाती। उनका अभिनय दर्द तक सीमित नहीं था, वो हर किरदार में इंसान की पूरी जिंदगी जी लेते थे। वो संवाद से पहले आंखों से बात करते थे, चीखना चिल्लाना नहीं, गाल पर एक आंसू और टूटी हुई सांस, यही उनका ट्रेजिक फॉर्मूला था। संक्षेप में कहें तो दिलीप कुमार ने हमें सिखाया कि असली अभिनय शोर में नहीं सन्नाटे में होता है। एक निगाह, एक रुकी हुई सांस और सहज अंदाज में बोला गया संवाद, बस इतने में वो उस किरदार की पूरी जिंदगी पर्दे पर जी जाते थे। धन्यवाद आपका। चलिए आजाद फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। लता मंगेशकर के साथ एक और जो आवाज है वो किसकी है वो बताइए हमें, और दिलीप कुमार के साथ अभिनेत्री कौन है ये भी बताइए।

आज़ाद फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर के साथ, जो आवाज़ है वो चितलकर यानी कि सी रामचंद्र की है और अभिनेत्री हैं मीना कुमारी। एक साथी लिख रहे हैं कि हिंदी सिनेमा के एक ऐसे युग पुरुष जिन्होंने पर्दे पर आम इंसान के संघर्ष और स्वाभिमान को जीवंत

सचमुच गीत में सागर की गहराइयाँ नज़र भी आती है और कानों में वो महसूस भी करवाती है। चलिए एक हमारे साथी की बात की, फिल्म अमर, महबूब खान, दिलीप कुमार ने एक ऐसे नैतिक रूप से भ्रष्ट नायक का किरदार निभाया है, दर्शकों को हैरान और असहज कर देता है। उनका ये अभिनय बहुत साहसी था क्योंकि उस दौर के सिनेमा में हीरो को हमेशा आदर्श पुरुष महान माना जाता था। फिल्म का नायक पढ़ा लिखा संभ्रांत परिवार का गलत कर बैठता है जिससे उसकी चरित्र की का नैतिक पतन होता है। उस पश्चाताप को बेहद गहराई और संवेदनशीलता के साथ पर्दे पर उतारा है। उस समय एक नायक को खलनायक के रूप में पर्दे पर उतारना हिंदी फिल्म का एक दुर्लभ प्रयोग था। दिलीप कुमार जैसे सुपरस्टार ने एक नकारात्मक कृत्य करने वाले व्यक्ति की भूमिका चुनी। अपनी सूक्ष्म भाव भंगिमाओं से अमर के नायक ने दर्शकों को मजबूर किया कि वे उस चरित्र के पछतावे और अंतर्मन के संघर्ष को समझ सके। धन्यवाद। अगला गाना यहूदी फिल्म से, मुकेश की आवाज़।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं। ये गीत शायद हम आपको पूरा ना सुनवा पाए, लेकिन गीत की झलक तो आपको सुनवा ही सकते हैं। आदमी फिल्म का गाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, शकील बदायूनी के बोल, संगीत नौशाद का।

राहें चाहे पुरानी हो जाए, लेकिन दिलीप कुमार जैसे जो कलाकार होते हैं उन्हें हम आवाज़ कैसे न दें, ये तो संभव ही नहीं है। हर युग में, हर पीढ़ी में ऐसे कलाकारों को याद किया जाता रहेगा। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना मेरी यानी मंजू द्विवेदी के साथ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

इसके साथ ही अंतराल का समय हुआ पूरा। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

0: संगीतकार थे आनंद बख्शी, संगीत था शिव हरि का। और इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे बड़े सम्मान बिंतांग अदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी को अब तक 25 से अधिक देश अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से नवाज चुके हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय बैठक की, जिसमें ऊर्जा, व्यापार, समुद्री सहयोग और रक्षा क्षेत्र में साझेदारी को नई गति देने पर चर्चा हुई। बैठक में महत्वपूर्ण खनिजों, खाद्य सुरक्षा और डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की यूपीआई के इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने पर खुशी व्यक्त की।
1: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की यूपीआई इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 डूरंड कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण कर उन्हें हरी झंडी दिखाई। राष्ट्रपति ने इस वर्ष टूर्नामेंट में श्रीलंकाई टीम की भागीदारी पर खुशी व्यक्त की और सभी टीमों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने खिलाड़ियों से खेल भावना का पालन करते हुए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का आग्रह किया। इस अवसर पर रक्षा प्रमुख जनरल NS राजा सुब्रमण्य सहित सेना और नौसेना प्रमुख भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैप्टन बत्रा कारगिल युद्ध में शत्रुओं पर काल की भांति टूट पड़े और मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि उनका शौर्य सदैव राष्ट्र सेवा की ऊर्जा प्रदान करता रहेगा। कृषि विभाग ने किसानों को खरीफ फसलों की बुआई में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। विभाग का कहना है कि जब तक खेतों में करीब 4 इंच यानी 1 बालिश्त की गहराई तक पर्याप्त नमी न हो जाए, तब तक बुआई करना जोखिम भरा हो सकता है। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा है, वे मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए ढेंचा या सनई की बुआई हरित खाद के रूप में कर सकते हैं। कृषि विभाग ने किसानों को सोयाबीन बीज का अंकुरण परीक्षण करने और 70% से अधिक अंकुरण क्षमता वाले बीजों का ही उपयोग करने की सलाह दी है। प्रदेश पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मऊगंज जिले के बिझोली गांव में एक किराए के मकान में चल रही अवैध सिंथेटिक ड्रग निर्माण इकाई का भंडाफोड़ किया है। विंध क्षेत्र में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार 2 के तहत हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लगभग 1,28,00,000 रुपए मूल्य का मादक पदार्थ, रसायन उपकरण और वाहन जब्त किया है। प्रारंभिक जांच में इस नेटवर्क के तार मुंबई, नागपुर और महाराष्ट्र के अन्य शहरों तक जुड़े होने का खुलासा हुआ है। अशोकनगर में गुरु पूर्णिमा पर्व पर तीर्थयात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने दिल्ली सराय रोहिल्ला और अशोकनगर के बीच एक ट्रिप विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 26 जुलाई को दिल्ली से रवाना होकर 27 जुलाई को अशोकनगर पहुंचेगी, जबकि वापसी में 30 जुलाई को अशोकनगर से चलकर 31 जुलाई को दिल्ली पहुंचेगी। ट्रेन फरीदाबाद, मथुरा, आगरा, कैंट, ग्वालियर और झांसी सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में कुल 24 कोच लगाए जाएंगे। अब बात मौसम की। प्रदेश में अब तक करीब 7 इंच बारिश दर्ज की जा चुकी है, जो सामान्य से केवल 1% कम है। मौसम विभाग ने आज गुना, अशोकनगर, विदिशा, सागर, छतरपुर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि प्रदेश के 26 अन्य जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर के निदान वाटरफॉल में अचानक पानी बढ़ने से फंसे 2 पर्यटकों को प्रशासन ने रस्सियों की मदद से सुरक्षित निकाला। शिवपुरी में स्टेट बैंक RCT द्वारा ग्रामीण युवाओं के लिए CCTV और सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉलेशन का 13 दिवसीय निःशुल्क आवासीय ट्रेनिंग कैंप 9 जुलाई से शुरू होगा। नर्मदापुरम के इटारसी स्थित तवा नदी पुल की मरम्मत के चलते 16 जुलाई तक भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। मैहर नेशनल हाईवे 30 पर डिगरा गांव के पास तेज रफ्तार कार और ट्रक की भिड़ंत में 5 लोगों की मौत हो गई। और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का 3रा मुकाबला आज रात नॉटिंघम में भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे शुरू होगा। शनिवार को मैनचेस्टर में खेले गए दूसरे मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराया था। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में डोरन कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफियों का अनावरण किया। और दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 3 दिन में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं की उपस्थिति में आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
2: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा, आपदा प्रबंधन तथा औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं।
2: हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरिटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हुए समझौते से भारत की उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती दवाएं इंडोनेशिया के लोगों के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI को जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में आसानी होगी।
2: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की UPI इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि वे कल योग्यकार्ता में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ 1000 साल से अधिक पुराने प्रम्बानन मंदिर की संरक्षण परियोजना का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने इसे भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी को उत्साह के साथ मनाएंगे।

0: श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया।
1: मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए प्रेसिडेंट प्रभवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर बधाई दी है।
2: रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ये असाधारण सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, परिवर्तनकारी राजनीतिज्ञता और आपसी विश्वास, सम्मान और साझा प्रगति पर आधारित वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करते हुए भारत के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता की एक सशक्त मान्यता है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि ये सम्मान सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये देश के लिए गर्व का क्षण है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान भारत इंडोनेशिया साझेदारी को और मजबूत करता है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति एवाई कोगजे और न्यायमूर्ति समीर दवे की खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सभी अपीलें खारिज कर दी और मामले में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों को दी गई सजा को बरकरार हुए अपने फैसले को सही ठहराया। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के भीतर लगातार हुए 21 बम धमाकों में 56 लोग मारे गए थे और 200 अन्य घायल हुए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध धनराशि के हेरफेर और अनियमित वित्तीय लेनदेन के मामले में आज कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की। निदेशालय की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 150 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि संदिग्ध उद्देश्यों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के माध्यम से भेजी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 डोरन कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया। राष्ट्रपति ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने उनसे खेल भावना का पालन करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता की प्रतिष्ठा को और बढ़ाने का आग्रह किया।
3: फुटबॉल विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल में से एक है। ये खेल उत्कृष्टता, एकता और खेल भावना का एक अनुपम उदाहरण है। फुटबॉल लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो हमें समानता, सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत आज 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। श्री शाह ने कहा कि रिज के लगभग 5000 हेक्टेयर क्षेत्र को अब औपचारिक रूप से वन भूमि घोषित कर दिया गया है।
4: 6300 हेक्टर हरित रिज दिल्ली का फेफड़ा बनकर दिल्ली के पर्यावरण की सुरक्षा करेगी। 1 करोड़ से अधिक देसी पौधे, 35 लाख से ज्यादा बड़े बड़े वृक्ष के पौधे और 65 लाख अन्य झाड़ियां, बांस और औषधीय रोपे लगाने का काम होगा।

0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 14 किलोमीटर लंबी जोजीला सुरंग, जम्मू श्रीनगर कॉरिडोर पर 36 सुरंगें, केदारनाथ रोपवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी प्रमुख परियोजनाएं कनेक्टिविटी को मजबूत कर रही हैं और देश के विकास को गति दे रही हैं। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय विकास के लिए ज्ञान, नवाचार और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के केंद्र के रूप में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को मजबूत करने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। भुवनेश्वर में आज 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने जनजातीय विरासत को संरक्षित करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी ज्ञान को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत करने का आह्वान किया।
1: जनजाति समूहों का सामूहिक विकास ये नरेंद्र मोदी सरकार का लक्ष्य है। इसके कारण बहुत सारे बंधन केंद्र और उसके साथ साथ बहुत सारे रिसर्च कार्यक्रम हम कर रहे हैं और उसका क्रम में आज टीआरआई ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका देश भर का 29 जगह से आके यहाँ योगदान दिया है और उनका काम आगे बढ़ रहा है। मेरा ख्याल से ये बहुत बढ़िया मैसेज होगा और जनजाति के लिए लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में बढ़ती राजनीतिक उथल पुथल के बीच जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी देते हुए 48 घंटे का समय दिया है। कमेटी ने कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। हजारों लोग कथित नाकाबंदी को समाप्त करने, संचार सेवाओं की बहाली, भोजन और दवाओं की निर्बाध आपूर्ति, गिरफ्तार नेताओं की रिहाई और 38 सूत्री लिखित समझौते के कार्यान्वयन की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद से प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो करते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 3 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। तटीय कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने कई जिलों, विशेष रूप से पालघर, ठाणे और पुणे तथा नाशिक में बारिश के लिए चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुणे जिले के घाट क्षेत्र, लोनावला, माहौल, ताहिनी और भोर में लगातार तेज बारिश जारी है, जिससे नदियों और नाले उफान पर है। भूस्खलन और अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों से झरनों और पहाड़ों इलाकों में जाने से बचने की अपील की है। इस बीच मुंबई और पुणे के बीच सड़क संपर्क बहाल कर दिया गया है। नासिक के घाट क्षेत्र, जिनमें इगतपुरी और त्र्यंबकेश्वर शामिल है, में भी अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई है। मुंबई महानगर क्षेत्र में बारिश की तीव्रता में कुछ कमी आई है, हालांकि ठाणे और पालघर जिले के कुछ हिस्सों में अब भी भारी बारिश जारी है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उधर गुजरात में भी कई जगहों, खासकर सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्र में लगातार हो रही तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र के दौरान सपाट कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 46 अंक बढ़कर 78,331 पर, जबकि निफ्टी भी लगभग 10 अंक बढ़कर 24,440 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौतों, ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार

0: बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गीत है मियां बीवी राजी। इस फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, संगीत है एसडी बर्मन का।

जिस देश में गंगा बहती है, इस फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज़, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं बहुरानी फिल्म का गाना। लता मंगेशकर की आवाज है, गीतकार साहिल लुधियानवी, संगीतकार सी रामचंद्र।

मजरू सुल्तानपुरी का लिखा और चित्रगुप्त का संगीतबद्ध किया ये गाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, फिल्म का नाम ऊंचे लोग।

अब आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सखी सहेली कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। दीपा जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और हमारे सभी सुनने वाली सखियों सहेलियों और श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
1: हेल्दी नमस्कार, क्या हाल है भाई? हेल्दी से तो ये बात कहना जरूरी है कि सब लोग हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, सानंद रहें।
2: जी जी, और ऐसा होता है ना ममता जी, किसी एक को भी ये बात सुनकर अगर ऐसा लगता है, थोड़ा भी अगर वो इंस्पायर होते हैं या उनको प्रेरणा मिलती है कि हाँ हमें अपनी सेहत का ध्यान

0: रखना चाहिए। तो ये हेल्दी नमस्कार कहना कहीं ना कहीं सकारात्मक रूप ले लेता है।
1: बिल्कुल सही बात है, अगर एक नहीं बहुत लोगों तक हमारी बातें पहुंचती हैं, करोड़ों श्रोता हमारी बात सुनते हैं और बहुत सारे श्रोता लाभान्वित भी होते हैं। अब देखिए ना, बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में सभी बरखा रानी की बूंदों का आनंद लेते हैं, भीगने का आनंद लेते हैं, छतरियों का आनंद लेते हैं, लेकिन जो उसके खामियां हैं उस पर लोग कम ही ध्यान देते हैं कि बरसात आपके लिए खुशी तो लेकर आती है, फायदे लेकर आती है, लेकिन मुसीबतें भी लेकर आती है और इन मुसीबतों के साथ उन मुसीबतों पर किसी का ध्यान नहीं जाता। बहुत सारे लोग खास तौर से युवा वर्ग बारिश जब होती है तो बस हाथ में मोबाइल उठाया और रीलें बनाना शुरू और सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू हो जाता है।
0: बिल्कुल,
1: और कई बार वो इसके पीछे छिपे खतरे को भूल जाते हैं, जैसे नदी के किनारे गए हैं, समंदर के किनारे गए, पहाड़ों पर
0: या
1: झरनों के पास,
0: जी डैम के पास चले जाते हैं, फिर एक तेज कहीं पे
1: लहर आती है,
0: लपट आती है, लहर आती है, वो वीडियो बन जाता है, वो रील जो है हर जगह,
1: वो रील मोबाइल से ही पानी में चला जाता है और खुद भी पानी के अंदर चले जाते हैं और घर वाले रोते रह जाते हैं, जिंदगी भर महसूसते रह जाते हैं मन कि भाई हमारी संतान चली गई। तो बारिश का आनंद ले, रील बनाने का आनंद ले, लेकिन उनके पीछे छिपे खतरों पर भी गौर करें। और ये रील बनाने की जो आदत है, रीलों से प्रसिद्धि पाने की जो आदत है, ये कई बार आपको मुश्किल में भी डाल देती है।
0: बिल्कुल, मुश्किल में भी डाल देती है, जान से भी कभी कभी हाथ गंवाना पड़ जाता है। कई लोगों का हमने देखा है, सुना, जाना है, अलग अलग जगह से पता चला है,
1: लाइक कमेंट आपने रील डाली और हमने लाइक किया, अरे तुमने मेरे लाइक नहीं किया,
0: जी इस तरह के झगड़े भी हो जाते हैं और सारा ध्यान फिर अपना दूसरे सब कामों को छोड़ करके अपने हैंडसेट पे चला जाता है कि इसका लाइक आया या नहीं, फलाने ने उसको सब्सक्राइब किया है या नहीं, किसी ने कुछ कमेंट लिखा है या नहीं, तो सारा ध्यान हमारा बस एकत्रित हो जाता है उस रील से संबंधित कमेंट्स आ रहे हैं या नहीं।
1: कितना चला जाता है दीपा जी, आपने ये नोटिस किया है, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि पूरे पूरे दिन जब तक वो जागते रहते तब तक मोबाइल में ये देखते रहते हैं या पोस्ट करते रहते हैं, पोस्टे देखते रहते हैं, लाइक कमेंट। तो ये जो ये जुनून है, एक तरह का जुनून है लोगों में और जुनून कई बार बीमारी का रूप ले लेता है और आज हम इस मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे। हमारे श्रोताओं की बहुत सारी टिप्पणियां भी आ रही हैं, तो आज हमने श्रोताओं को ये विषय दिया है, वायरल होने का जुनून, तो उनके क्या अनुभव हैं वो जरा बताएं कि अड़ोस पड़ोस बाल बच्चे जो इसके शिकार हैं।
0: कुछ आए हैं संदेश ममता जी, लेकिन हम चाहते हैं वो और अपने अनुभव या अपने आस, जैसे आपने कहा आस पड़ोस का कहीं देखा है, कुछ जाना है।
1: मैं तो डर गई दीपा जी कि आपने कहा अभी कि आज हमने भी एक पोस्ट की है और लाइक कमेंट देख रही थी भाई यहाँ हम लोग ना उलझ जाएं।
0: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है, लोगों ने अपनी राय दी है, अपने बातें बताई हैं और क्या वो इस चीज को लेकर के उनके विचार हैं ये भी आए हैं, हम चाहते हैं लेकिन कुछ और भी बातें वो
1: देख तो रहे हम भी
0: जी,
1: लाइक कमेंट देख रहे हैं कि हमारे श्रोताओं की कितनी सारी टिप्पणियां आई है। देखिए ना इस समय 52 लोगों ने लाइक किया है और 112 कमेंट आ चुके हैं और 2 लोगों ने शेयर किए हैं, लेकिन हम इसके मतलब इसकी फेर में नहीं पड़ते हैं
0: जी।
1: श्रोताओं की जो टिप्पणियां जेन्युइन है, जो विषय संबंधित है, वो हम उन तक पहुंचाते हैं। तो अपने अनुभव साझा कीजिए, श्रोताओं से ये अनुरोध है। और कई लोगों की आदत होती है कि सीधे सीधे कोई बात न कहें, जैसे कि न नौ मन सोना होगा न राधा नाचेगी, या फिर 100 दिन चले अढ़ाई कोस, ऐसे कितने सारे मुहावरे हैं
0: जी। बिल्कुल
1: याद है
0: जैसे
1: आपको?
0: याद है, जैसे कि आज जो हम लेने वाले हैं, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना,
1: टेढ़ी खीर,
0: टेढ़ी खीर, यानी कि एक कहीं समूह है वहां पे सब लोग कुछ एक बात पे सहमत हो गए हैं, लेकिन कोई एक जनाब होंगे वो कुछ और ही बात अलग करेंगे।
1: कहा जाता है कि रानी कितनी भी गरीब हो जाएंगी, लेकिन 9 मन सोने से थोड़ी ना, उनके पास 9 मन सोना तो होगा ही,
0: होगा ही।
1: ऐसे जाने कितने मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं जिन्हें हमने बचपन में सुना है और घर में बड़े बुजुर्ग दादी नानी को तो हमने माँ को मुहावरे में ही बात करते हुए सुना, सीधे सीधे बोलते ही नहीं थे। अगर पढ़ाई के बारे में भी कुछ कहना है तो वो सीधे लिखो पढ़ोगे तो बनोगे नवाब, मतलब सीधे नहीं कहना है कि आप पढ़ाई शुरू कर दो
0: जी,
1: उसको या तो गानों के साथ या मुहावरों के साथ ही बोलते
0: वैसे
1: थे,
0: वैसे ही जोड़ते थे और उसी तरीके से बात करते।
1: तो कितने मुहावरे याद है आपको और हमारे श्रोताओं को? चलिए आज परीक्षा होती
0: जानते है बिल्कुल ये जानते हैं और आगे बढ़ेंगे, हल्की फुल्की भी कुछ बातें करेंगे, जैसे एक विषय हमने लिया

0: या वायरल होने के बारे में विचार करने का, लेकिन एक हल्की फुल्की बातें लेंगे कि मोल भाव करना ये कला है या आदत है। बाजार में जाते हैं, कोई तो कहता है ना, हम कभी बार ऐसा हो जाता है ना ममता जी, हम कहते हैं अरे हमने ये 250 रुपये में लिया, और आप कहेंगी क्या बात है 250 रुपये में लिया, हम तो कल ही 150 रुपये में लेकर आए। और फिर देखिए जो 250 में लेकर आया है उसका दिल उदास हो
1: बैठ
0: जाता
1: जाता
0: है और
1: है।
0: मुंह बिल्कुल उतर जाता है। तो ये मोल भाव करना कला है या आदत, इसके बारे में भी बात हो। और सखी सहेली विशेष का भी दिन है आज। आज हम बात कर रहे हैं हार्दिका शाह, जो कि संस्थापक है एक फिनटेक कंपनी की, किनारा कैपिटल नाम से।
1: तो अब क्या करें, अब एक गाना सुन लेते हैं,
0: चलिए
1: फिर और बोलते बतियाते हैं।

0: कहाँ खो गई? कमेंट लाइक कमेंट में,
1: लाइक कमेंट में, और ये देखने के लिए कि जो बातें अभी हमने अपने श्रोताओं से की क्या वो हमें मैसेजेस भेज रहे हैं या नहीं।
0: अच्छा अच्छा वैसे अगर हमारे श्रोता कमेंट नहीं करेंगे तो हम उन तक उनकी बात कैसे पहुंचाएंगे, तो इसलिए उनकी टिप्पणियों का तो हमें इंतजार रहता है, लेकिन वो नशा नहीं बनना चाहिए लाइक कमेंट का।
1: कुछ लोग कभी ऐसा हो जाता है, पूरा ध्यान एकदम ऐसा होता है ममता जी कि आज इस वाले विषय पर कुछ आए हैं, बात आई है या नहीं आई है, कुछ लिखा है या नहीं लिखा है, क्या लिखा है, तो ये उत्सुकता बढ़ तो जाती है।
0: तो
1: और अब जी अब एक और उत्सुकता है कि ये जो हमारी संस्थापक है हार्दिका शाह किनारा कैपिटल की, कैसे बनी, क्या इनकी जीवन का परिचय हुआ, दरअसल किस तरह से वो आगे बढ़ी।
0: क्या होता है दीपा जी कि हम कुछ ऐसी महिलाएं अपने देश में हैं, कुछ प्रवासी भारतीय भी हैं, उन महिलाओं से बहुत सारी प्रेरणा मिलती है
1: जी,
0: बहुत सारे प्रेरक प्रसंग उनके जीवन में घटित हुए हैं। उन घटनाओं को जब हम पढ़ते हैं या पढ़वाते हैं या जानकारी देते हैं तो उससे बहुत सारी सखियों को प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की, और हर ज़्यादातर उन कामयाब महिलाओं के पीछे के लंबी संघर्ष की कहानी होती है। तो उन कहानियों को सुनना, जानना, बताना हमारा फर्ज बनता है, तो हम अपने श्रोताओं को इसलिए हार्दिका शाह के बारे में आज जानकारी दे रहे हैं
1: जी। ये ऐसा नाम है ममता जी जिन्होंने इस बात को सही साबित किया कि व्यापार का असल उद्देश्य केवल लाभ अर्जित करना नहीं है, बल्कि समाज में उन वर्गों तक भी पहुंचना है जहां अक्सर लोग पहुंच नहीं पाते या उन तक कोई भी वित्तीय व्यवस्था पहुंच नहीं पाती है
0: जी।
1: तो एक मध्यम वर्गीय गुजराती परिवार की हैं हार्दिका शाह, वहीं पली बढ़ी और अपने माँ को और अपने छोटे व्यवसाय के लिए उन्होंने बहुत पूंजी जुटाते हुए देखा था, खूब संघर्ष करते हुए उन्होंने बचपन में अपनी माँ को देखा।
0: संघर्ष इतना था कि 17 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अमेरिका के इलिनोइस स्थित नॉक्स कॉलेज से कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई करने के लिए घर छोड़ दिया। कोलंबिया के बहुत प्रसिद्ध बिजनेस विश्वविद्यालयों के संयुक्त कार्यक्रम से MBA पूरा करने के बाद उन्होंने एक प्रसिद्ध कंपनी में काम करना शुरू किया। साथ ही वो विदेश के बहुत जाने माने विश्वविद्यालय सहित अन्य तमाम कार्यक्रमों में निशुल्क मार्गदर्शक के रूप में भी वे काम करने लगी।
1: बिल्कुल, और वहां उन्हें अक्सर जो अपनी माँ, उनकी माँ जो पूंजी जुटाती थी ना, इकट्ठा करती थी, वो सारी चुनौतियां उन्हें अक्सर याद आया करती थी। तो मध्यम वर्गीय परिवार की वो थी, उस नाते दृष्टिहीन लेकिन महत्वाकांक्षी पिता और उद्यमी माँ की परवरिश में उन्होंने बचपन से ही बहुत संघर्ष देखा। लेकिन उनके पिता और गुजरात के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे, वे बॉम्बे विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के एक सफल प्रोफेसर बने और आज भी वे पढ़ाते हैं।
0: बहुत सारे संस्थानों में कार्य करते हुए उन्होंने महसूस किया कि भारत के छोटे उद्यमियों, विशेषकर सूक्ष्म और लघु व्यवसाय के लिए पूंजी तक पहुंचना बहुत कठिन है। इसी विचार ने उनके भीतर परिवर्तन का संकल्प जगाया। वर्ष 2011 में उन्होंने एक कैपिटल की स्थापना की, किनारा कैपिटल। इस संस्था का उद्देश्य उन छोटे व्यापारियों, महिला उद्यमियों और सूक्ष्म व्यवसायों को सरल और त्वरित ऋण उपलब्ध कराना था, जिन्हें पारंपरिक बैंकिंग व्यवस्था से सहायता प्राप्त करने में कठिनाई होती थी
1: जी। और उन्हें यह विश्वास था कि यदि कोई व्यक्ति सही समय पर आर्थिक, उन्हें अगर आर्थिक सहयोग मिल जाता है तो केवल अपना जीवन ही नहीं बल्कि और भी कई लोगों का भविष्य भी बदल सकता है। और उनके नेतृत्व में किनारा कैपिटल, जो उनकी कंपनी है, आधुनिक तकनीक और मानवीय संवेदनाओं का सुंदर समन्वय स्थापित करता है। संस्थाओं ने हजारों छोटे उद्यमियों को वित्तीय सहायता देकर उनके सपनों को एक नई उड़ान दी है।
0: तो ये हम सबके लिए प्रेरणा की बात है। फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा
1: जी।

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर यह है कार्यक्रम सखी सहेली
3: जी। और अपनी कंपनी जो हम बात कर रहे थे हार्दिका शाह के बारे में, उनकी कंपनी के हर विकास कार्यक्रम के माध्यम से वो महिला उद्यमियों को सशक्त बना रही हैं, वो जो कंपनी के सीआरओ सीएसआर कार्यक्रम के माध्यम से महिला सूक्ष्म उद्यमियों को सहयोग देने के लिए बहुत प्रतिबद्ध है। उनका संघर्ष, दूरदर्शिता, समाज के प्रति समर्पण आज के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वे इस विश्वास की एक जीवंत मिसाल है कि दृढ़ संकल्प, अथक परिश्रम और सेवा भाव से असंभव भी हम संभव कर सकते हैं।
2: बिल्कुल सही बात है। तो ये अपने जहन में ज़रूर रखें, जब भी किसी काम की शुरुआत करें तो ये जहन में रखें कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं
3: जी।
2: तो काम सफल होता है। अब दीपा जी देखिए ना, हमने कार्यक्रम की शुरुआत में जो गाना सुनवाया था वो सजना बरखा बाहर आई फिल्म परख का, और उस पर एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि गाना इतना अच्छा लग रहा है कि इस गीत को सुनता हूँ तो मुझे वो दिन और में याद आ जाता है। वो यूं कि गांव के तालाब में नहा कर आया था, ये आजकल के बरसात के दिन थे। वहां तालाब पर मैंने पपीहे को भी देखा था और घर आया तो ताऊ जी के रेडियो पर यही गीत बज रहा था, तो मुझे वो दिन समय ये गीत याद आ गया। तो देखिए ना, रेडियो से बजते हुए गाने हमें कहां कहां पहुंचा देते हैं।
3: बिल्कुल। और हर एक के जीवन में जो रेडियो का प्रेमी है, कहीं ना कहीं किसी न किसी गीत के साथ कोई याद तो उनकी जुड़ी ही है।
2: तो चलिए फिर बात गाने की है, सुन लेते हैं गाना।
3: चलिए।
4: हाय राम,

0: ममता जी, आज का समय कुछ ऐसा हो गया है ना कि प्रसिद्धि पाने की लालसा हर एक के मन में कुछ हावी सी होने लगी।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
0: और कई बार ऐसा भी होता है कि वो सही या गलत का फर्क उस चक्कर में भूल जाते हैं कई लोग, है ना।
1: और आजकल सोशल मीडिया पर लाइक, कमेंट्स और फॉलोअर्स की संख्या अब कई लोगों के लिए आत्मसंतुष्टि का पैमाना बन गई
0: जी,
1: है।
0: जी बिल्कुल।
1: कितने फॉलोअर्स हैं, कितने बढ़े, कितने नहीं घटे, ये भी देखते रहते हैं। अरे घट गए तो लोग तनाव में आ जाते हैं कि अरे बाप रे अब क्या करें।
0: जी।
1: और दूसरी ओर वायरल पोस्ट लोगों को और अधिक लोकप्रियता की चाह में लगातार नए प्रयोग करने के लिए प्रेरित कर रही है। कई बार ऐसी बातें सिर्फ प्रसिद्धि पाने के लिए फैला दी जाती हैं जो ठीक नहीं होती हैं, सोशल मीडिया पर वो भी वायरल हो जाती हैं। वायरल से मतलब प्रसिद्धि है,
0: और
1: कुछ चीजें जो नहीं होनी चाहिए उसे भी लोग अपनी प्रसिद्धि के तहत वायरल कर देते
0: बिल्कुल।
1: हैं।
0: बिल्कुल। और एक कोई पोस्ट अगर डाली और उस पोस्ट पर अगर उन्हें वो एक अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो निराशा बढ़ने लग जाती है, तनाव बढ़ने लग जाता है। किसी ने अगर जवाब नहीं दिया आपके पोस्ट, आपने कोई पोस्ट डाली और उस पर अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो इंसान एकदम लगता है किसी ने कुछ देखा नहीं, हमारे मेरे बारे में कोई जानना नहीं चाहता या मेरे इस लिखी हुई चीज को कोई पढ़ना नहीं चाहता, ये क्या हो गया, क्यों हो गया। और दोस्तों को फोन लगा के पूछ भी लेते हैं, ऐसा भी हो जाता है।
1: यहाँ तक हो गया है कि अभी कई लोगों को ये देखा जाता है कि लोग आधी रात को, आप देखिए आधी रात को भी लोग सक्रिय रहते हैं सोशल मीडिया पर, आप ऑनलाइन दिख जाते हैं, हरी बत्ती आपको दिखाई दे जाती है
0: जी, तो और पड़ जाता है।
1: रात को उठ के 2:30 बजे 3 बजे भी देखते हैं कि किसने हमारी पोस्ट को लाइक किया, किसने कमेंट किया और किसने दिल का साइन लगाया। वो भी अब एक अलग पैमाना बन गया है कि अरे उसने तो सिर्फ लाइक करके छोड़ दिया, दिल का साइन नहीं लगाया। और अब लाइक करने के बाद जो कमेंट्स करते हैं, कमेंट्स करने वाले ये भी उम्मीद करते हैं कि उनके कमेंट्स को भी लाइक किया जाए
0: जी।
1: फिर वो ये भी कहते हैं कि हमारे कमेंट्स को लाइक आपने नहीं किया, तो कमेंट्स को भी लाइक करने की एक प्रथा चल पड़ी है। तो इस प्रवृत्ति का सबसे चिंताजनक पहलू ये है कि कई लोग समाज, कानून और अपनी सुरक्षा की अनदेखी कर बैठते हैं। सड़क पर स्टंट, सार्वजनिक स्थानों पर अनुचित हरकतें और केवल ध्यान आकर्षित करने के लिए बनाई गई भ्रामक सामग्री डाल देते हैं, पोस्ट कर देते हैं। इससे न केवल व्यक्ति स्वयं जोखिम में पड़ता है बल्कि दूसरों की सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है।
0: कई बार सड़कों पे आप देखते हैं कि युवक युवती बैठे हैं बाइक पर और बहुत तेजी से गाड़ी चला रहे हैं, और हमने ये देखा कि पीछे जो महिला बैठी है वो फोन हाथ में लिए हुए है और आगे बाइक की तरफ से कुछ इस तरह से वो कैमरा का सेटिंग करते हैं फोन का कि वो चलती हुई गाड़ी नजर आए, बाइक नजर आए। तो ये खतरा दूसरों के लिए भी है, खुद के लिए सबसे ज़्यादा है। कब कहाँ बैलेंस बिगड़ सकता है इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं होती। उन्हें ऐसा लगता है ये सड़क पर इस तरह के स्टंट करके इस तरह से कुछ अलग ही तरीके से वीडियो डालना, ये शायद हमें और किस पता नहीं किस प्रसिद्धि की किस पीढ़ी तक लेके जा सकता है।
1: तो दीपा जी, ये मुद्दा बहुत बड़ा है, इस पर चर्चा और करेंगे और श्रोताओं की टिप्पणियाँ भी बहुत सारी आ रही हैं। एक गाना सुन लेते हैं,
0: चलिए
1: फिर उसके बाद चर्चा करेंगे।

0: बेचारा दिल क्या करे भाई, लाइक कमेंट देखे तो ना देखे कैसे, बेचारा दिल क्या करे, दिल पर वश नहीं होता है इस मामले में कि लोग कितना भी
1: बात तो
0: खुद को
1: सही है।
0: समझा लें।
1: देखिए जी बिल्कुल, हम कितना भी समझा लें लेकिन हमारी भी नज़र जब कार्यक्रम रहता है ना, चलता रहा होता है ममता जी, तो हम ये देखते हैं कि और कितने कमेंट्स आए, और कितने कमेंट्स आए, ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे तो अच्छे से अच्छे जो कमेंट्स अपने कार्यक्रम
0: श्रोताओं
1: से
0: तक
1: संबंधित
0: पहुंचा
1: वो
0: देंगे,
1: पहुँचाएं हम।
0: लेकिन
1: बिल्कुल
0: यहाँ पर उद्देश्य अलग है ना। लेकिन जो
1: जी
0: उद्देश्य गलत होता है अपनी प्रसिद्धि पाने का, वो एक अलग मुद्दा है। फिर
1: जी
0: और बातें करेंगे, फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं।
1: चलिए।

0: विविध भारती से यह कार्यक्रम सखी सहेली और बातें हम कर रहे थे गाने से पहले और इस ब्रेक से पहले कि वायरल होने के जुनून में लोग न जाने क्या क्या करते हैं,
1: कम समय में प्रसिद्धि पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि दुनिया भर में हमारा नाम हो जाए।
0: अब यही बात हमारे एक श्रोता ने भी लिखी है। देखिए, इन्होंने लिखा है, आजकल वायरल होने की दौड़ में लोग कभी कभी ये भूल जाते हैं कि सबसे बड़ी पहचान कुछ पल की लोकप्रियता नहीं बल्कि अच्छे कर्म और अच्छा चरित्र है। जो चीज कुछ दिनों के लिए वायरल होती है वो समय के साथ भूल भी जाती है, लेकिन इंसान की अच्छाई, संवेदनशीलता और सादगी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहती है।
1: बिल्कुल सही कहा कि मेहनत, सादगी, सच्चाई, यही हमेशा आगे तक चलती रहेगी। और एक और संदेश है, ममता जी ये कहते हैं कि आज के सोशल मीडिया के दौर में कई लोगों के लिए वायरल होना ही सफलता का पैमाना ये बन गया है। अधिक लाइक, व्यूज और फॉलोवर्स पाने की चाह में कुछ लोग ऐसे वीडियोज या पोस्ट बना देते हैं जो जोखिम भरे हो सकते हैं। ये जुनून कभी कभी उनकी पढ़ाई, काम, रिश्ते और मानसिक शांति पर भी असर डालते हैं। लोकप्रिय होना बुरा नहीं है, लेकिन उसके लिए जिम्मेदारी, सच्चाई, अच्छे मूल्यों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात है। और यहाँ तक हो गया है, ये एक तरह की ऐसी बीमारी बन गई है कि कई बार लोग बड़ी दुखद खबर पोस्ट करते हैं
1: जी।
0: वहाँ लोग जाकर हंसी का इमोजी लगा देते हैं भूल से
1: जी,
0: हड़बड़ी में, और ये देखना भी नहीं चाहते कि वो पोस्ट क्या है। कई बार लोग बिना पढ़े बिना जाने लाइक कर देते हैं कि फलाने की पोस्ट है तो यहाँ पे लाइक कर देते हैं। पता चलता है कि उससे आपकी सहमति नहीं, असहमति थी
1: जी।
0: और किसी जो वो बंदा मुसीबत में है तो आप भी मुसीबत में फंस गए क्योंकि आपने उसे लाइक किया था। कई बार सोशल मीडिया पर ये चर्चा भी होती है, कुचर्चा भी होती है, कई विवादास्पद बातें उस पर पोस्ट होती हैं, कई जैसे संगीत के बारे में, साहित्य के बारे में कुछ ऐसी पोस्ट लिखी जाती है जहां आपकी सहमति है ही नहीं, लेकिन आप लाइक करके आगे बढ़ जाते हैं। बाद में पता चलता है कि ये बात तो आपको मुसीबत में डाल गई है,
1: मुसीबत में डाल देते हैं। और कई बार बड़े अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। उन्हें क्या लगता है, इस तरह का हम लिख करके हमारे ऊपर ज्यादा ध्यान लोगों का जाएगा, हम पर ज्यादा आकर्षित होंगे लोग, और इस तरीके से हम कुछ अलग सा लिख दें, अलग सा लिखने में वो समझ ही नहीं पाते कि भाषा हम क्या इस्तेमाल कर
0: कुछ
1: रहे।
0: लोग ये भी करते हैं कि जो बात किसी ने कही नहीं उसे अपने नाम पर पोस्ट करते हैं।
1: हाँ, ये बात
0: कि फलाने ने हमें ऐसा कहा और इतना बुरा भला कहा, मेरी निंदा की और हम तो हमेशा कटघरे में खड़े होते हैं, जबकि किसी ने कोई चर्चा ही नहीं की है। तो ये भी एक तरीका है लाइक कमेंट पाने का, लोग इस्तेमाल करते हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ सकारात्मक पहलू भी है। जब सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था तो जैसे कुछ अगर हम पढ़ने लिखने की बात करें, साहित्य की बात करें, संगीत की बात करें, तो किताबें जो छपा करती थी, प्रकाशित होती थी, तो अखबार पत्रिकाएं उसका माध्यम थी जानने के लिए
1: जी,
0: और उसके माध्यम से लोग जानते थे और चर्चा होती थी उन किताबों की। लेकिन अब ये आसान हो गया है कि अगर मान लीजिए किसी की चर्चित किताब है और अच्छी उत्कृष्ट किताब है तो आप जल्दी से सोशल मीडिया के माध्यम से, लाइक कमेंट्स के माध्यम से जान लेते हैं कि हाँ ये किताब चर्चित है तो चलो हम भी खरीद लेते हैं, पढ़ लेते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। तो अगर कहीं पे बुराई है तो अच्छाई भी है, तो हमारे लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छी बातों को अपना करके उसमें आगे बढ़ें और जो नकारात्मक पक्ष है उस तक ना पहुँचे और ना ही लोगों को उसके लिए, उस तरफ जाने के लिए प्रेरित करें। एक और संदेश आया, वो हम यहाँ पढ़ना चाहेंगे।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी, देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, कॉर्न व हवन सामग्री।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कॉर्न्स एवं हवन सामग्री।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी, देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, कॉर्न व हवन सामग्री।
1: और चाची जिन्हें बिल्कुल मोबाइल का इस्तेमाल नहीं आता था, वो अपने बच्चों से, अपने नाती पोतों से सीख कर बाकायदा अपनी रील पोस्ट करते हैं
2: जी।
1: और कुछ लोग
2: और
1: अपना डांस
2: तो
1: का
2: लोकप्रिय भी हो रहे हैं
1: डांस का वीडियो
2: जी।
1: ये दिखाते हैं कि हमें देखो, हम इतनी उम्र में डांस करने में सक्षम है। और कोई गाना गा के पोस्ट कर रहा है, कोई अपनी कविताएं पढ़ रहा है, कोई कहानी का टुकड़ा, कहानी का हिस्सा पढ़ के पोस्ट कर रहा है, मतलब कोई नहीं तो रेसिपी बता रहा है और किचन के टिप्स बता रहा है, योगा के बारे में, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में,
2: बहुत सारे
1: मतलब
2: पर
1: मुझे तो लगता है कि दुनिया का कोई हिस्सा बाकी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं बाकी, कोई ऐसा विषय नहीं है जो वायरल नहीं है सोशल मीडिया
2: सोशल मीडिया पर नहीं आया है। और जिसको जिसमें हुनर हासिल है ना, वो उसी कला को चाहता है कि अब दुनिया तक पहुंचा, और उनके लिए सबसे आसान तरीका है सोशल मीडिया का इस्तेमाल।
1: और इसमें नुकसान क्या है कि कई बार जो नुस्खे बताए जाते हैं कि सुबह सुबह उठ के ये बीज खा लो, ये पानी पी लो तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, फिर कई लोग ये बताते हैं कि फला एक्सरसाइज, उंगली, पांचों उंगलियों को उस पर प्रेशर डालो तो आपके सिर दर्द ठीक हो जाता है, ये करो तो पेट दर्द ठीक हो जाता है। इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि कई बार इस गफलत में आपकी बीमारी बहुत बड़ी बड़ा रूप ले लेती
2: जी,
1: है
2: जी।
1: तो अब हमारी बातें कहीं बहुत बड़ी, बहुत दूर तक न जाएं, इससे पहले हम यहाँ पर विराम देते हैं अपनी बात को और सुनवाते हैं अपनी सखियों और सखाओं को ये गाना, बारिश वाला गाना। जहाँ पर बारिश नहीं हो रही है उनके लिए सुकून देगा ये गाना, इसलिए भी ये गाना।

0: दीपा जी, हर चमकती हुई चीज अनमोल नहीं होती, ये हमारी एक सखी कह रही हैं कि आज सोशल मीडिया पर वायरल होना आसान हो सकता है, लेकिन किसी के दिल में सम्मान की जगह बनाना कहीं ज्यादा बड़ी बात है। इसलिए ऐसा काम कीजिए जिस पर समय भी मुस्कुराए और आने वाली पीढ़ियां भी गर्व करें।
1: क्या बात है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि काम ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से सकारात्मकता हर तरफ फैले, है ना।
0: कुछ लोग लिख रहे हैं कि लोग वायरल होने के लिए अश्लील वीडियो भी डालते हैं, ये भी गलत है, बहुत गलत है। और अब देखिए ना, एक और मुद्दा है, वो है मोल भाव करने का। कुछ लोगों की आदत होती है कि किसी भी दुकान में गए तो मोल भाव ज़रूर करते हैं, जैसे कि कुछ फिक्स रेट की दुकानें हैं, कुछ ब्रांडेड चीज़ें जहाँ पर मिलती हैं, जहाँ पर एक पैसा भी नहीं
1: कम किया
0: कम किया जाता है कि 99 रुपए है तो वो 1 रुपए भी आपको अदा करना पड़ता है,
1: जी।
0: लेकिन वहाँ भी लोग मोल भाव करते हैं। अरे 1 रुपए भी नहीं कम हो सकता है क्या, अरे 20 रुपए तो कम कर दो। तो ये कुछ लोगों की आदत सी बन जाती है, जहाँ पर ये भावना नहीं होती कि इससे बचत हो जाएगी, वो आदतन मोल भाव करते
1: वो
0: हैं।
1: उन्हें पता भी नहीं होता है ममता जी, उन्हें लगता है कि नहीं, अगर हमने ये 10 रुपए या 20 रुपए कम नहीं कराए तो ये तो मेरे कुछ खिलाफ सी बात हो गई है। ऐसा कैसे हो सकता है, मान लीजिए कि कोई 50 रुपए में चीज़ है और अगर मैं 30 में नहीं करके लेकर आई तो कहीं कुछ ऐसा लगता है कि मैंने तो कहीं कुछ कमी कर दिया। ऐसे कैसे हो सकता है कि भाव मैंने नहीं किया, ऐसा हो जाता है।
0: और बहुत देर तक वो सोचती रहती हैं कि हम तो ठग गए,
1: हाँ
0: जबकि
1: जी,
0: ऐसा नहीं होता है। एक श्रोता ने लिखा है कि मनोवैज्ञानिक रूप से मोल भाव करने से खरीदार को ये एहसास होता है कि उसे बेवकूफ़ नहीं बनाया गया है और उसने एक समझदारी भरा फैसला किया है। मोल भाव करना शुरुआत में एक आदत के रूप में शुरू होता है, लेकिन जब आप इसमें माहिर हो जाते हैं तो ये एक कला बन जाती है। ये केवल पैसे बचाने का जरिया नहीं, बल्कि ये मानव स्वभाव और संवाद का एक सुंदर हिस्सा है। मोल भाव करना दोनों पक्षों के बीच एक मानसिक कसरत भी है, ये समझने की कला है कि सामने वाले की सीमा क्या है। कई
1: जी
0: बार लोग जहां पर मोल भाव नहीं करना चाहिए वहां भी करते हैं, जैसे सब्जी वाले, सब्जी
1: हाँ
0: वालों
1: जी
0: से
1: हाँ
0: अगर उसने कहा कि ये 50 रुपए में आधा किलो या 1 किलो हम सब्जी दे रहे हैं जो भी, तो वो ज़रूर कहेंगी कि अच्छा 50 रुपए में आधा किलो, तो ठीक है हम 1 किलो लेते हैं, कितने पैसे कम करोगे। तो
1: हाँ
0: सब्जी
1: ये बात
0: वाले भी
1: होती है जी।
0: आनंद लेते हुए कहते हैं अच्छा ठीक है ले लो, 5 रुपए कम दे देना। तो सब्जी वालों से आप मोल भाव क्यों कर रहे हैं? वो सड़क पर सब्जी बेच रहे हैं, उनको बेच के घर जाना है। मुझे लगता है कि उनसे कम से कम मोल भाव नहीं करना
1: नहीं
0: चाहिए।
1: करना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा देखने में आता है सब्जी वालों से होती ही है ये
0: बिल्कुल।
1: भाव ताव तो चलता ही। अगर उसने वो गठरी बना के रखी है, मान लीजिए कि वो कह रहे हैं कि ये 15 रुपए की है गठरी, तो वो बोलेंगे नहीं 10 रुपए में दो या 15 की दो हमें गठरी दो। इस तरह की बातें तो अक्सर देखने को मिलती हैं। और एक संदेश ये कह रहा है कि मोल भाव करना आदत है या कला। मोल भाव करना, वैसे इसको करने में कोई बुराई तो नहीं है, मोल भाव करना ही पड़ता है, पर कुछ सामान इस तरह के होते हैं कि उनके मोल भाव करने ही नहीं पड़ते हैं। उनकी हर जगह की रेट फिक्स होती है, पर कुछ वस्तुएं इस तरह की होती हैं कि उनके मूल्य कहीं भी कम या ज़्यादा नहीं होते, इसलिए मोल भाव करना अच्छा रहता है। मैं कभी कभी सब्जी घर के लिए खरीद कर लाता हूँ, 2-3 दुकानों पर भाव पूछने से ही पता चल जाता है। ज्यादा दुकानों पर मोल भाव करने की मैं आदत नहीं रखता हूं।
0: हमारी एक सखी ने लिखा है कि मोल भाव करना मेरी तो आदत है, मैं चाहती हूँ कि ये छूट जाए पर जाती ही नहीं। जब भी मार्केट जाती हूँ घर से सोच कर निकलती हूँ कि आज वो भाव मिलेगा उसी में शॉपिंग करूँगी, पर वहाँ जाते ही आदत जोर मारना शुरू कर देता है। भाई ये बड़ी ईमानदारी से इन्होंने अपनी बात
1: बता
0: लिखी
1: दिया
0: है,
1: जी।
0: और हम चाहते हैं कि हमारे सभी श्रोता ऐसी ईमानदारी से बेबाकी से अपनी बात रखें।
1: जी, एक गीत सुन लेते हैं ममता जी, करें ऐसा
0: सुनते हैं
1: जी।

0: अब दीपा जी, हमारे श्रोता तो मूल भाव पर तुल गए, मूल भाव पे लगे हुए, मतलब मूल
1: वहां पे
0: भाव
1: लगे
0: किए
1: हुए
0: जा
1: हैं
0: रहे।
1: बिल्कुल।
0: अब एक श्रोता ने लिखा है कि हम महिलाएं मूल भाव करने के लिए बदनाम होती हैं, मूल भाव करने की आदत भी होती है। सब्जी वाले से जब तक धनिया और हरी मिर्च फ्री में न डलवा लें तब तक चैन नहीं पड़ता है। और भी शॉपिंग में बहुत सारे मूल भाव करती हैं, सच में पता नहीं क्या मिलता है उन्हें कि थोड़ी मिर्ची और डाल दो ना,
1: हाँ
0: अच्छा
1: ये
0: करी
1: बात तो है,
0: पत्ता
1: करी
0: भी
1: पत्ता भी
0: डाल दो।
1: डाल दो।
0: वो फ्री में लेने में क्या मिलता है, ये आज तक मुझे भी नहीं समझ में आया। मैंने भी देखा है बहुत सारी महिलाओं को। और एक श्रोता ने लिखा है कि मोल भाव करना आदत या कला, भाव करना कोई बुराई तो नहीं है, मोल भाव करना भी पड़ता है, पर कुछ सामान तो इस तरह के होते हैं कि उनके मोल भाव करने ही नहीं पड़ते, उनकी हर जगह एक ही रेट होती है, पर कुछ वस्तुएं इस तरह की होती हैं कि उनके मूल्य कहीं कम कहीं ज़्यादा होते हैं, इसलिए मोल भाव करना अच्छा रहता है। मैं कभी कभी सब्जी घर के लिए खरीदता हूँ तो दो या तीन दुकानों पर भाव पूछने से पता चल जाता है, ज़्यादा दुकानों पर मोल भाव करने की आदत नहीं रखता हूँ। एक श्रोता ने लिखा है कि बदनाम महिलाएं हैं मोल भाव करने के लिए, लेकिन पुरुष भी कम नहीं हैं मोल
1: बिल्कुल,
0: भाव के लिए।
1: ये बात तो सही है, आपने बिल्कुल सही कहा।
0: और आप
1: और
0: ज़रा बताइए कि ये क्या कर रही हैं, डेढ़ डेढ़ चावल की खिचड़ी पका रही हैं
1: बिल्कुल, आज डेढ़ चावल की खिचड़ी पक रही
0: कैसे?
1: है। देखिए, जहाँ पे कहीं पे कुछ एक ग्रुप बैठा हुआ है, बातें कर रहा है, और किसी एक बात पर सब लोग ने हाँ कर दी, और अचानक से कोई एक उसमें से कहता है नहीं, ये इस तरीके से नहीं होगा, कुछ अलग तरीके से होगा। तो जहाँ जब कोई राय अपनी अलग देने लग जाता है, या कुछ अलग थलग बात करता है, या अपनी कहते ना एक टांग ऊपर रखना चाहता है, तो इस तरह की बात को बहुत सारे हमारे
0: मुर्गे
1: श्रोताओं ने
0: की
1: लिख भेजा है
0: एक
1: कि
0: टांग, ये भी एक
1: हाँ
0: मुहावरा है।
1: ये भी एक
0: अब
1: पॉइंट।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि आज पता चला कि डेढ़ चावल की खिचड़ी पकती है, हमने तो बीरबल की खिचड़ी के बारे में सुना था।
1: बिल्कुल, ये भी होती है जहाँ अपना राग अलापना है या अपनी मनमानी करना, ये भी इस मुहावरे का अर्थ होता है, ऐसा हमारे एक श्रोता ने संदेश लिख के भेजा है। अच्छा, एक और संदेश आया कि खिचड़ी एक ऐसा व्यंजन है जो कई लोगों के साथ मिलकर बांटकर खाने या पकाने की परंपरा से जुड़ा है। ऐसे में डेढ़ चावल की खिचड़ी का अर्थ बहुत ही कम मात्रा में भोजन या एक छोटे समूह से है। जब कोई व्यक्ति समूह में शामिल न होकर खुद को अलग थलग कर देता है, तब इस मुहावरे द्वारा उस व्यक्ति को अंकित करते हैं कि भाई ये देखो, ये आ गया डेढ़ चावल की खिचड़ी वाला।
0: अब हमारी एक सखी है जिन्होंने अलग ही खिचड़ी पकाई है। अब सारे श्रोता तो ये कह रहे हैं कि डेढ़ चावल की खिचड़ी, मतलब कि सबकी अलग-अलग राय रखना और
1: जी
0: अपनी अपनी राय ऊपर रखना, मतलब ये। अब हमारी एक सखी है जिन्होंने लिखा है कि डेढ़ चावल की खिचड़ी का मतलब कि किसी बात को एक ने दूसरे के कान में कहा, दूसरे ने तीसरे के और तीसरे ने चौथे के, हर एक ने एक दूसरे को कहा, ये बात सिर्फ मैं तुमसे बता रही हूँ, तुम किसी से न कहना। मगर जब वो बात एक कान से होते हुए चौथे कान तक जाती है तो बात न होकर कुछ और ही हो जाता है, सीधा मतलब बात का बतंगड़ बन जाता है, कहा तो छोटे से शब्द में या अर्थ में, मगर जिसने सुना उसने दूसरा ही अर्थ लगाया, और जिसको कहकर अपनी बात परोसी वो दूसरे ही अर्थ में कह दी। तो बात तो थी छोटी सी, लेकिन एक से दूसरे तक जाते अर्थ का अनर्थ हो गया, या फिर कह सकते हैं कि बातों की ऐसी जुगाली हुई कि डेढ़ चावल की खिचड़ी बन गई। दरअसल मुहावरे का ये अर्थ भी सही है। कई बार हम ये भी कहते हैं, जब हम छोटे थे तो जब माँ और दादी सुनाती थी नानी की
1: जी
0: इस तरह के मुहावरे, तो वहाँ पे अर्थ भी बताती थी, तो उसका यही अर्थ होता है कि क्या डेढ़ चावल की खिचड़ी पका रही हो, तो मतलब ये कि बातें जब उलट पलट हो जाती हैं और उसका एक अपना मंतव्य हो जाता है, अपनी राय हो जाती है,
1: जी
0: तो अर्थ बदल जाता
1: अर्थ
0: है।
1: बदल जाता है। और देखिए, यहाँ पर एक और खिचड़ी पक रही है। ये संदेश आया है कि हमेशा मिलजुल कर काम करना सफलता की कुंजी है, लेकिन कुछ लोग हर बात में डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाते हैं। वे दूसरों की राय को महत्व नहीं देते हैं और अपनी ही मनमानी करते हैं। ऐसे व्यवहार से टीम में मतभेद पैदा हो जाते हैं और काम भी प्रभावित होता है। इसलिए हमें अपनी बात अवश्य रखनी चाहिए, लेकिन सबकी राय का सम्मान करते हुए मिलकर निर्णय लेना चाहिए। यही समझदारी है और अच्छे व्यक्तित्व की पहचान भी है।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि पता है हमें एक पुरानी बात याद आ गई, तब कुछ लेना होता था तो कुछ सहेलियों या घर की मौसी या चाची साथ होती थी, फिर हम एक दूसरे का मुंह देखते थे कि पहले कितना कम करवाएंगे, मोल भाव के लिए इन्होंने लिखा है,
1: जी
0: और फिर इशारे में बात करके बोलते थे, फिर खुश हो जाते थे कि इतना कम करवाया हो गया, फिर बोल के चले जाते थे कि इतने में दो दो, फिर मुड़ के देखते, दो नहीं तो हम नहीं लेंगे, फिर मुड़ मुड़ के देखते थे वो بلا تو نہیں رہا جاؤ جاؤ, پر اب نہیں کرتے سبزی والوں سے تو بالکل بھی نہیں, پھر فکس ریٹ کی شاپ پر بھی جانا پسند کرتے ہیں. یہ اکثر جب پہلے دوپٹے کا فیشن تھا بہت سارا, طرح طرح کے ڈیزائن دار دوپٹے ہوا کرتے تھے, تو میں نے بھی کئی بار لڑکیوں کو دیکھا ہے کہ دوپٹے خرید رہی ہیں اور دکاندار سے کہہ رہی ہیں کہ ٹھیک ہے اتنے میں دو, نہیں تو جا رہے ہیں, اور جا رہے ہیں پوری کی پوری جھنڈ میں ہیں لڑکیاں اور مڑ مڑ کے دیکھ رہی ہیں, پھر وہ بلا رہا ہے آئیے بھابھی جی آئیے لے لیجیے لڑکیاں عورتیں, پھر واپس لوٹ کے آ رہے ہیں, پھر 10 روپے دے دیا ایکسٹرا. تو ایسے
1: کئی شہروں میں ایسے کچھ جگہ ہوتے ہیں ممتا جی جہاں پر کہ آپ کو بھیجتے ہیں نا, یا ہم جاتے ہیں جیسے کوئی بڑے شہر میں گھومنے گئے تو ہم کسی جو پہلے ہی جا کر آ چکا ہے ہم پوچھتے ہیں کہ کہاں پر بارگیننگ ہوگی اور کتنی ہوگی یہ بھی بتا دینا, تو وہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں دیکھو وہ اگر تمہیں 200 روپے بولے نا تو تم 40 یا 50 روپے سے شروع کرنا, اتنی بارگیننگ ہوتی ہے
0: تو 100 روپے بھی مل جائے گا. آج تو ہم سب کی ہم آپ بھی کھچڑی پکا رہے ہیں, کبھی مول بھاؤ کر رہے ہیں تو کہیں کھچڑی پکا رہے ہیں. اب کہیں ہماری ایک شروتا نے لکھا ہے کاری کارے بادرا سچ مچ اب تو چلا جائے تو اچھا, سورت گجرات میں کل سے بہت تیز طوفانی بارش ہو رہی ہے, ابھی بھی بارش ہو رہی ہے, دراصل ممبئی میں بھی بہت بھاری برسات ہو رہی ہے, شہر کے دیش کے تمام حصوں میں بارش ہو رہی ہے, لیکن جہاں پر برسات نہیں ہو رہی ہے وہاں کے لیے کیا ہے, وہ گرمی سے جہاں پریشان حال ہیں تو ان کے لیے گانا ہی سکون دے گا, تو سن لیتے ہیں یہ گانا.

0: इस गाने के साथ हम यही शुभकामना कर रहे हैं कि पूरे देश में बरखा दुल्हनिया आए और इतनी संतुलित बारिश लेकर आए कि किसी को कोई परेशानी ना हो। और अब घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोलें बतियाएं या गाना सुनवाएं, तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाज़त। आप सभी को ममता सिंह
1: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार, नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अभिनेता विपुल देशपांडे से। इनसे बातचीत की है जयंत पात्रीकर ने और ये है इस बातचीत का पहला भाग।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के स्टूडियो में ऐसे कलाकार पधारे हैं जो आपके घर में भी आपसे मिल चुके हैं, आप सिनेमा हॉल में जाएं तो वहां भी आपसे मिल चुके हैं, और आपने अपने लैपटॉप के पर्दे पर या टीवी के पर्दे पर जब कभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आप गए होंगे तो वहां भी आपकी इनसे मुलाकात हुई होगी। जी हाँ, एक ऐसा अभिनेता जो सेल्यूलॉइड का कोई भी जरिया हो, कोई भी मीडियम हो, वहां अपना नाम रखते हैं और अपनी जगह उन्होंने बनाई है। आइए स्वागत करते हैं विपुल देशपांडे का। विपुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका विविध भारती में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। नमस्कार सभी श्रोताओं को भी।
1: विपुल जी, कहाँ से शुरू करें, शुरू से बात करते हैं, कैसे शुरुआत हुई, आप कहाँ के रहने वाले हैं, पैदाइश कहाँ की है और बचपन कहाँ बीता आपका?
2: वैसे मेरे पेरेंट्स मुंबई में ही रहते थे, तो मेरी पैदाइश आप कह सकते हैं कि मुंबई में ही हुई।
1: अच्छा।
2: लेकिन फर्स्ट स्टैंडर्ड तक मेरी पढ़ाई के बाद में हम लोग शिफ्ट हो गए मुंबई से नागपुर।
1: अच्छा।
2: तो नागपुर ये मेरा वैसे विदर्भ में हम लोग का घर है
1: जी।
2: वहीं पे सब रिलेटिव्स हैं, और एंसेस्ट्रल अगर बोला जाए तो अमरावती के पास अकोलखेड़ नाम की एक जगह है जहाँ से हम बिलोंग करते हैं।
1: जी जी।
2: बट अभी हाल ही में सभी लोग जॉब के सिलसिले में सब बाहर आए हैं, और पिताजी बैंक में थे और मेरी माँ जो है वो लेक्चरर थी, तो उन लोगों ने फिर नागपुर में अपना जो है परमानेंट एड्रेस बनाया और मेरा स्कूलिंग नागपुर में ही हुआ।
1: अच्छा।
2: मैं पिताजी का पहले से हॉबी था कि वो स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स में इंटरेस्टेड थे, तो उन्होंने पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग ये सभी जरिए में अपना एक पैशन कायम रखा
1: जी।
2: और मुंबई में ये सब करने के लिए बैंक में जॉब करते हुए पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने नागपुर चुना।
1: अच्छा।

0: हालांकि एग्जैक्टली उल्टा मैंने किया कि मुझे मुंबई चुनना पड़ा वापस तो
1: जी
0: मैं वहां से वापस आया, बट वहां से आते आते बहुत समय लग गया। तो हालांकि मैं चाहता जरूर था कि मैं पढ़ाई करूं एनएसडी में, या फिर ड्रामेटिक्स पढ़ूं, या एफटीआई में जाऊं,
1: जी
0: बट एक्सपोजर कम होता है मुंबई के
1: बाकी शहरों
0: मुकाबले
1: में जी
0: इस क्षेत्र के लिए
1: जी जी
0: स्पेशली। इसे हम लोग करियर नहीं मानते, मतलब एक्टिंग ये हॉबी करके देखी जाती है। मैं
1: बिल्कुल
0: जिस शहर से आता हूँ वहां पर, तो मैंने उसके लिए थोड़ा सा क्रांतिकारी रवैया अपनाया था कि नहीं मुझे यही करना है।
1: हाँ हाँ
0: लेकिन पेरेंट्स ने कहा कि नहीं बेटा ऐसा है, पहले पढ़ाई भी कर लो,
1: जी
0: ताकि बड़ी अनसर्टन फील्ड है,
1: हाँ
0: आप नॉलेजेबल रहोगे तो आप कुछ कर पाओगे बाद में अगर ऐसा कुछ समय आया तो। बहुत अच्छी बात थी। तो उन्होंने मुझे इंजीनियरिंग के लिए सपोर्ट किया, देन मैंने एमबीए किया। फिर जॉब करते करते ऐसा हो गया कि वो एक होता है ना 99 का पढ़ा बोलते हैं,
1: हाँ
0: आदमी फंस
1: हाँ
0: जाता है, तो उसमें
1: अच्छा
0: फंस सा गया था। बट देन फिर मैंने कहा कि नहीं यार करना तो पड़ेगा। तो फिर शुरू में नागपुर में जो भी थिएटर कर पाए हम, वो मैंने किया।
1: जी
0: वहाँ पे कुछ महानाट्य थे, कुछ नॉर्मल नाटक थे, वो मैंने किए। लेकिन हालांकि मुंबई आना ही एक रास्ता था, तो मैं
1: जी
0: एक बार आके गया।
1: अच्छा
0: मैं 2000 में मुंबई आया था, तो आज से 26 साल पहले की बात है,
1: जी
0: तब मैं 20 साल का था। लेकिन तब कुछ मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि कोई चीज़ का एक्सपोजर नहीं था, कुछ चीज़ के
1: हाँ
0: बारे में मालूमात नहीं थी। तो मुझे एक महीने बाद वापस जाना पड़ा। मैंने सोचा कि यार यहाँ पे बिना किसी नॉलेज के कुछ करना पॉसिबल नहीं है। देन आई वेंट बैक, आई कम्प्लीटेड माई इंजीनियरिंग, आई कम्प्लीटेड माई एमबीए।
1: अच्छा
0: उसी के साथ कैंपस प्लेसमेंट हुआ, मैंने गोवा में 1 साल जॉब किया। फिर मैं कैसे तो भी करके, मतलब मिन्नतें करके, मैंने कंपनी से बात की कि मुझे मुंबई जाना है। मालूम था कि मुंबई में ही करना पड़ेगा जो करना है, तो वो हुआ नहीं। वीडियोकॉन से ट्रांसफर नहीं मिली, सो आई टुक स्विच। मैं यहाँ पे हाइपर सिटी में जॉब करने आया।
1: अच्छा
0: सो 2 2.5 साल लग गए। उसके बाद में फिर कहीं जाके एक जगह मैंने
1: मतलब
0: ऑडिशन
1: पहली
0: दिया
1: बार आए तो एक नौकरी के लिए आए।
0: नौकरी के लिए।
1: अच्छा
0: मुंबई में मैंने 2007 से लेकर 2009 तक नौकरी की। 2009 से मैंने स्विच किया, रिसेशन हिट हुआ था उस दौरान, नौकरियां सभी की थोड़ी सी डामाडोल में थी।
1: जी
0: तो फिर 2000 मैंने स्विच किया बिरला में, बिरला एजुटेक में मैं काम कर रहा था। 2 साल ऑलमोस्ट वहां पे काम किया। और उसी दौरान मैंने एक ऑडिशन के बारे में पता किया, जो कि फोर इडियट्स नाम की एक फिल्म थी, जो पता चला।
1: जी ये मुंबई की जो आपकी अभिनय की यात्रा है उसकी अब यहाँ शुरुआत होने जा रही है। उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि नागपुर में जो आपने थिएटर किया तो वो एक्सपीरियंस कैसा था, किस तरह के नाटक वो हुआ करते थे जिनमें आपने अभिनय किया।
0: एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है एक कलाकार के लिए जब वो स्टेज पे जाता है या
1: जी
0: स्टेज से जुड़ी कोई भी हरकत करता है।
1: हाँ
0: लेकिन सीखने के लिए बहुत ही लिमिटेड वहाँ पे स्कोप था,
1: जी
0: क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग थे या तो यहाँ पे आके वापस जा चुके थे कि उनका यहाँ पे शायद ना हो पाया हो, या फिर वहाँ से आए ही नहीं है और वहीं पे एक अपनी दुनिया बसा ली है। एक
1: हाँ
0: पैरेलल इंडस्ट्री खड़ी करने की बात जहाँ पे होती है।
1: हाँ
0: तो नाटक नो डाउट बहुत अच्छे
1: एक
0: थे।
1: उम्र होती है जब हमें एहसास होता है कि भाई हाँ हम अभिनय की दुनिया में कुछ कर सकते हैं,
0: जी
1: और एक वो समय होता है कि जब हमें हमारे घर से प्रोत्साहन मिलता है या हमारे किसी शिक्षक ने हमें कहा कि चलो तुम तो बड़ा अच्छा कर सकते हो, तो वो हमें स्टेज पर धक्का दे देते हैं एक तरह से। तो ऐसा कभी हुआ है आपके साथ?
0: अभिनय मैं कुछ कर सकता हूं, ये मेरी जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं एक्टर ही बनना चाहता
1: क्या
0: था,
1: बात है, क्या
0: तो आई नेवर इमेजिनड एनी अदर
1: बात है, वाह वाह वाह
0: प्रोफेशन।
1: वाह
0: बट जरिया नहीं मिल रहा था तो नाटक
1: हाँ
0: हम करते रहते थे। 5th स्टैंडर्ड से नाटक हर साल मेरे स्कूल में करता था,
1: हाँ
0: जो स्नेह सम्मेलन गैदरिंग होता है
1: हाँ
0: उसमें हर साल करता था, जहां जहां पॉसिबल हो वहां पे करता था। और जैसे कहा आपने कि लोग सराहना करते हैं तो आपको अच्छा लगता है,
1: जी
0: आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो वही है कि आप, एक होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक होता है कि हाँ भी लोग जब बोल रहे हैं तो समझ जाते हैं आपके, हाँ आप कर सकते हैं अच्छा। तो ये फिर वो धीरे धीरे बढ़ता गया,
1: जी
0: बिकॉज यू हैव परफॉर्म्ड वेल, पीपल हैव अप्रिशिएटेड, उन्होंने
1: बिल्कुल।
0: वो सराहना की और फिर आगे बढ़ती गई।
1: और फिर मुंबई आके अपने आप को आजमाना, ये जो मन की एक इच्छा है, बाकी सारे काम करते हुए, नौकरी करते हुए या पढ़ते हुए भी हम जो है वो इच्छा मन में कुलबुलाते रहती है,
0: बहुत ज्यादा
1: ये
0: मैं
1: कितने तने दिनों तक चला?
0: ये सर बहुत चला ये बेसिकली। अगर बात करें तो 2006 में मेरा एमबीए जब मेरा पास आउट हो गया,
1: जी
0: मैं
1: जी
0: पहली बार जॉब करने गया, तो मैंने मेरे बॉस को कहा कि मुझे सर मुंबई में आप प्लेसमेंट दे दो। तो मैं
1: अच्छा
0: चाहता था कि जॉब करते हुए मैं कुछ ना कुछ यहाँ पे,
1: हाँ
0: लेकिन उस दौरान मुंबई में था नहीं। तो वो मेरा 1.5 साल जो है औरंगाबाद, 6 महीने, और फिर 9 से 10 महीने गोवा में, ऐसा मेरा बीता। और रोज रात को, इसलिए क्योंकि दिन भर काम आपका समय कट जाता है, फिर जो आपको समय मिलता है शाम को 7 8 बजे, देन यू फील कि मैंने आज जो दिन भर किया, क्या वो मुझे जो पसंद था वो किया,
1: अच्छा
0: या फिर बस करना है इसलिए किया, सरवाइव करने के लिए किया। तो वही एक बड़ी मशक्कत और बड़ा ही एक द्वंद होता था।

0: जी
1: कि यार ये नहीं करना चाहता हूँ, ये खुशी नहीं मिल रही है लेकिन करना पड़ रहा है।
0: ओह
1: तो कुछ तो भी करके भगवान की दया से मुझे वो स्विच करना पॉसिबल हुआ और फिर मुंबई आया।
0: तो ये मुंबई का जो सफर है, हम उसकी बात करेंगे, मगर हमारे बातों के बीच में आपकी पसंद के गाने भी हम सुनेंगे। तो कौन सा गाना होगा सबसे पहला जो आपको पसंद है?
1: मैं जिंदगी के वो जिस नजरिए से देखता हूं, उस नजरिए से अगर बात करें
0: हाँ
1: तो जिंदगी को एक लाइटली और एक हंसते खेलते जितना पॉसिबल हो बिताना चाहिए, किसी को तकलीफ न देते हुए, शायद वो ज्यादा जरूरी है। तो बच्चन साहब का एक गाना है,
0: हाँ
1: जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल,
0: वाह
1: इसे खोना नहीं खोके रोना नहीं।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया
1: ये
0: गाना,
1: एक बहुत खूबसूरत सा गाना है।
0: आइए सुनते हैं। जिंदगी

0: जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, और ये जिंदगी जो अभिनय यात्रा के रूप में आपकी मुंबई में शुरू हुई, तो वो कैसी शुरुआत थी?
1: सर, मैं जब नागपुर में था 2 साल के
0: हाँ
1: लिए,
0: हाँ
1: मैंने जॉब छोड़ के, मैं नागपुर में 2 साल के लिए मैंने एक पॉज लिया था कि एक नौकरी की आदत होती है, 1 तारीख को सैलरी आती है,
0: हाँ हाँ
1: वो तो वो तोड़नी थी मुझे आदत,
0: हाँ
1: क्योंकि यहाँ पे आके कोई गारंटी नहीं थी कि रोज़ काम मिले। तो मैंने वहाँ पे एक बिजनेस हमारा था, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जो मेरी माँ के अंडर बड़ा हुआ था पूरे अच्छे
0: जी
1: से।
0: जी
1: तो क्योंकि मम्मी लेक्चरर थी, रिटायरमेंट के बाद में शी वॉज टेकिंग केयर ऑफ दिस। तो फिर वो हमने थोड़ा सा एक्सपांड किया, 25 सेंटर्स हमने उसके बनाए नागपुर में। और फिर मैं यहाँ पे आने की मेरी जो एक बात हुई, तो मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी। मैंने सोचा कि जाते काम कैसे मिलेगा,
0: अच्छा
1: तो आई नेवर हैड अ मुस्टैश इन माई लाइफ। यहाँ पे मैंने देखा कि क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, पुलिस फाइल्स, ऐसे कुछ क्राइम शोज आ रहे थे उस दौरान, जो कि बहुत हिट होते थे, और हमेशा नए एक्टर्स उसमें दिखाई पड़ते थे और रिपीट भी होते थे कुछ।
0: जी
1: तो मैंने सोचा कि यार ये एक सही है, इन लोगों को नए नए बंदे लगते होंगे, तो यहाँ पे जाते हैं। और फिर मैंने सोचा कि मेरी हाइट है 6 फिट 2 इंच, भगवान ने दी हुई, तो उसका फायदा कॉप के रोल में किया जा सकता है, तो एटलीस्ट कॉप रिपीट भी ज्यादा होते हैं। सेम
0: हाँ
1: थिंग हैपेंड, बट इट टुक ऑलमोस्ट 7 to 8 months
0: अच्छा
1: टू लैंड इन अ पर्टिकुलर रोल। वो रोल ऐसे आसानी से नहीं मिल पाया, उसके लिए लाइन में लग के इंट्रोडक्शन देना पड़ा बहुत बार, कभी
0: जी
1: लाइन में लगने के बाद नंबर भी नहीं आता था।
0: हाँ
1: तो वो सब करते करते, बट मैंने मूंछ बढ़ाई और मैं थोड़ा
0: अच्छा
1: फिजिक उस हिसाब से किया कि मैं एक ऑथोरिटेटिव कैरेक्टर में जा सकूं,
0: जी जी
1: और वही हुआ कि फिर उसके बाद क्राइम पेट्रोल, साउथर्न इंडिया, इसमें मैं रेगुलर तौर पे पुलिस ऑफिसर के दौर में दिखने लगा।
0: अच्छा
1: तो एटलीस्ट मुझे पहले से कोई सीखने वाला, मैं ना कहीं जा पाया सीखने के लिए और कुछ कर पाया, बट कैमरा मुझे सीखने को वहां से मिला।
0: अच्छा
1: मैंने बहुत करीब से इन सब चीजों को ऑब्जर्व किया,
0: जी
1: और बहुत अच्छे एपिसोड्स हुआ करते थे क्राइम पेट्रोल के पहले। सुब्बू सर उनको ऑप्टिमिस्टिक के थ्रू डायरेक्ट करते थे या देखते थे,
0: जी
1: तो ये उन्होंने बहुत अच्छा किया, तो वो मुझे समझने काफी मिला। आजकल सटल एक्टिंग ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं,
0: जी जी
1: जिसको एक नैसर्गिक तरीके से हम लोग, जैसे आप और मैं अभी बात कर रहे हैं,
0: सहज और
1: तो
0: स्वाभाविक
1: सहज और स्वाभाविक
0: अभिनय जिसे
1: अभिनय
0: कहा
1: जिसको
0: जाता है।
1: कहते हैं,
0: जी।
1: तो वो मुझे वहां से ज्यादा अच्छे से सीखने को मिला। ऐसा लगता नहीं था कि अभिनय किया जा रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि अभिनय ना करो, आपको करना पड़ता है कि वैसा लगे ना कि वो अभिनय हो रहा है, तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट
0: जी
1: थिंग। तो
0: जी
1: ये मुझे वहां से सीखने को मिला, और ये मेरी स्ट्रेटेजी थी, वो कंटिन्यू रही। तो दैट वॉज माई स्टार्ट इन द मुंबई।
0: क्या बात है। और उन शुरुआती दिनों में आप मराठी में भी कुछ देख रहे थे कि कुछ करने को मिले ऐसा?
1: मैं सभी चीज़ों के लिए ओपन था, चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो, इंग्लिश हो। इंग्लिश तो खैर अपने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स नहीं होते, मराठी मेरी मदर टंग है,
0: जी।
1: मी मराठी है। बट यही था कि जब आया तो मुझे सामने यही चीज़ें मिली हिंदी लैंग्वेज की, तो मैं हिंदी में फिर काम करता रहा। मराठी में मैंने एक दो बार ट्राई किया, जहाँ जहाँ मुझे लगा, जैसे मैंने आने के बाद में वो 4 इडियट्स जो फिल्म की थी उसके बेसिस पे, जस्ट गम्मत नाम की एक फिल्म की, लेकिन एक बड़ा ही छोटा सा किरदार मैंने निभाया, जो कि शायद ही किसी को ध्यान में रहा हो,
0: जी
1: और बाकी जगह शायद ये लॉबी, लॉबी तो हर जगह है, ऐसा नहीं कि कोई गलत बात है, लॉबी मतलब एक ग्रुप जो साथ में मिलकर काम करता है,
0: हाँ
1: अब वो एक दूसरे के साथ में कंफर्टेबल हो जाता है, इसलिए वो साथ में काम करता है।
0: जी
1: तो ये थोड़ी स्ट्रांग लगी मुझे रीजनल के दायरे में, तो
0: जी
1: वहां पे मेरी एंट्री ज्यादा नहीं हो पाई। आज भी शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं मराठी अभिनेता हूँ, मैं मराठी कर सकता हूँ,
0: जी
1: बट आई वुड लव टू एक्सपांड माई थिंग। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मुझे कुछ अच्छे किरदार मिले
0: जी
1: जो मैं मराठी में भी नहीं हो पाऊँ, बट
0: हाँ
1: हिंदी में हमेशा मुझे साथ सबका मिला, और हिंदी में मैं अब तक काम करते आ रहा हूँ रेगुलर, सो
0: अच्छा,
1: दैट इज थिंग।
0: चलिए यहां पे एक गाना सुनते हैं आपकी पसंद का। कौन सा गाना होगा?
1: एक मैं कंपेनियनशिप, एक सपोर्टिव एटमॉस्फेयर पे बहुत बिलीव करता हूँ,
0: जी
1: वो कितना पॉसिबल होता है सबकी लाइफ में ये अपने अपने नसीब की बात है, लेकिन जब कोई बात बिगड़ जाए, ये एक मेरा बहुत फेवरेट
0: ओहो,
1: गाना है।
0: बहुत खूबसूरत गीत है, आइए सुनते हैं।
1: जब

0: जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए। ये मुश्किल पड़ने वाली बात संघर्ष के दिनों में तो कदम कदम पे जो है इसका सामना होता
1: जी
0: है ना?
1: जी
0: कैसे मुश्किलों का सामना होता था उन दिनों में, क्योंकि एक तरफ आप काम तो कर रहे थे
1: जी
0: मगर एक ही तरह की वो टेलीविजन सीरीज थी जिसमें पुलिस की ही भूमिकाएं ज्यादा होती थी,
1: हाँ

0: और उसमें टाइपकास्ट होने का बड़ा डर था।
1: जी,
0: कैसा था वो संघर्ष?
1: ये फील्ड ही ऐसी।
0: किसी फिल्म का इंतजार कर रहे थे तब कि कोई फिल्म मिल जाए। हाँ, तो
1: हाँ
0: वो वही वाकया जो है कि पहली
1: जी,
0: फिल्म कैसे मिली।
1: ये बेसिकली संघर्ष जो है, जैसे मैंने कहा था कि अब बोलने जा रहा था कि बच्चन साहब के जमाने मैंने सुना हुआ था कि संघर्ष तो जिंदगी भर रहेगा, अगर संघर्ष नहीं चाहिए तो डाय, वो कोई संघर्ष नहीं रहेगा। तो
0: बराबर
1: जब तक हम इस जिंदगी में हैं, इस दुनिया में, तब तक संघर्ष रहेगा। उसको हम
0: जी।
1: कितनी खूबसूरती से अपने मार्ग को क्रमण करते हैं, उस पर
0: हाँ,
1: डिपेंड है।
0: यस।
1: तो संघर्ष हमेशा रहा, और शुरुआती दिनों में बहुत ज्यादा रहा। कभी कभी ऐसा हुआ कि 3 3 महीने मेरे पास काम नहीं था।
0: हो
1: तो एक एक्टर के लिए जब 3 महीने काम नहीं है, तो आप 3 महीने कुछ नहीं कमा रहे हो, वो एक बहुत बड़ी सिचुएशन थी। लेकिन ऊपर वाले की दया है कि बीच बीच में फिर उसके बाद कुछ ना कुछ काम आता गया और सस्टेन करता रहा, हैंड टू माउथ
0: अच्छा।
1: वो चीजें चलती रही। और टाइपकास्ट आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि फिर उस दौरान लोगों को ऐसा होता है कि वो आपके डेटाबेस में ही फीड करके रखते हैं कि इंस्पेक्टर में ये 10 लोग हैं। पहला फोन जाएगा तो आपको इंस्पेक्टर के लिए आएगा, अगर
0: हाँ
1: डॉक्टर है तो डॉक्टर के लिए ये 20 लोग हैं।
0: जी।
1: तो ये चलता रहा काफी दिन। फिर हमें नहीं बोलना पड़ा, बहुत बार मुझे नहीं बोलना पड़ा कि मैं नहीं करूंगा, और वो बहुत बड़ी बात होती थी कि आपको मालूम है आपको काम मिल रहा है, उसी से आपका घर चलने वाला है,
0: लेकिन मना करना
1: लेकिन मना
0: पड़ता।
1: करना पड़ रहा है क्योंकि यार उसके अलावा कुछ दे ही नहीं रहे हैं। एक अभिनेता के तौर पे अगर मैं
0: जी
1: वेरिएशन ना दे पाऊं
0: जी जी
1: तो कुछ खास मजा नहीं आता है जिंदगी में। तो वो नहीं करते करते कभी हाँ कभी नहीं, जब जरूरत है उस हिसाब
0: हाँ
1: से हमने काम किया। फिर कहीं ना कहीं लैंड हुए, हमने ये भी सोचा था कि कोई फिल्म जो है वो एटलीस्ट अच्छे इसमें मिल जाए,
0: जी।
1: तो इट हैपेंड। और ये जैसे मैं वर्क ग्रेनरी पे मतलब बिलीव करता हूँ,
0: अच्छा
1: वर्क ग्रेनरी मतलब जैसे धान्य का कोठार होता
0: जी, अनाज का
1: है, अनाज का
0: कोठार।
1: कोठार होता है, उसमें एक बहुत बड़ा मतलब जो जो 20 20 25 25 फीट के कोठार होते हैं, जो
0: जी
1: पहले किले पे भी हुआ करते थे,
0: हाँ
1: जहां पे लोग आके उसमें धान्य डालते थे। कि मेरे एक भाई जैसे दोस्त ने मुझे बताया
0: हाँ
1: कि ये काम आप करते हो आप उसमें डालो, वैसे एक धान्य का जैसा वर्क ग्रेनरी है, तो उसमें आप डालोगे, एक बार, 2 बार, 10 बार, 100 बार कुछ नहीं होगा, लेकिन एक टाइम आएगा कि वो जो अनाज है वो उसका लेवल तक भर जाएगा।
0: जी
1: फिर आप जो भी डालोगे, एक भी छोटा गड़वा आप उसमें डालोगे
0: जी
1: अनाज, तो वो बाहर आएगा। सो वर्क ग्रेनरी, आप पहले कितने काम करो शायद उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन जब वो अनाज का जो कोठार है वो भर जाएगा, तो आप छोटा भी कुछ करोगे आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इट इज लाइक दैट। तो शायद वो मेरे और सभी केस में काम करता है। तो पहली फिल्म मुझे जो मिली वो ऐसे ही बहुत जगह ऑडिशन, इंट्रोडक्शन, ऑडिशन, इंट्रोडक्शन
0: अच्छा।
1: दे दे के एक जगह से कॉल आया। और एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे जिन्होंने अर्जुन रेड्डी नाम की फिल्म साउथ में की थी,
0: जी
1: उनका नाम था संदीप सर, संदीप वांगा रेड्डी, उन्होंने मेरा वो ऑडिशन देखा,
0: अच्छा।
1: मुकेश छावड़ा साहब के यहाँ से वो ऑडिशन आया था, एंड ही लाइक्ड इट फॉर द कैरेक्टर ऑफ द डीन ऑफ द हॉस्पिटल वेयर कबीर सिंह जहाँ काम करता है। और फिर वो फिल्म में मुझे एक किरदार मिला जो कि बहुत अच्छा किरदार था, सीन्स शायद कम थे लेकिन एक नोटिस करने लायक किरदार था,
0: जी।
1: और वो फिल्म इतनी बड़ी हुई तो एक छोटे से छोटे किरदार को भी आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है।
0: बिल्कुल।
1: तो दैट वॉज माई फर्स्ट फिल्म इट हैपन इन माई लाइफ। तो अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो शायद कबीर सिंह के नाम से मुझसे जानते होंगे।
0: हाँ, बड़े सेलुलॉइड पर्दे का ये जो पहला अनुभव था,
1: नहीं,
0: इसमें सारे बड़े नाम,
1: बहुत
0: तो कहीं किसी तरह का प्रेशर महसूस किया आपने या इन सब के साथ काम करते हुए क्या अनुभव क्या था?
1: मैं मेरे आर्ट से बहुत प्यार करता हूँ सर, तो मुझे बिल्कुल प्रेशर फील नहीं होता जब मैं परफॉर्म कर रहा होता
0: क्या बात, बहुत बड़ी बात आपने कही है। और
1: हूँ।
0: मतलब जो भी इस क्षेत्र में आने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत सही बात है कि समझे इस बात को कि आप अपनी कला से कितना प्रेम करना चाहिए।
1: बस वो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जरूरी वही है, अगर
0: हाँ
1: आप आपकी कला में निपुण हो, आपने उसे सफिशिएंट टाइम दिया है,
0: जी।
1: तो सामने मतलब मैं बच्चन साहब के साथ भी रूबरू हुआ हूँ पर मुझे कभी प्रेशर नहीं आया।
0: ओहो।
1: तो और यही सब लोग हैं जो इस लेवल पे जा चुके हैं, जैसे बच्चन साहब को तो बचपन से हम देखते आ रहे हैं।
0: जी।
1: जब मैं उनके साथ पहली बार रूबरू हुआ, वागले की दुनिया के हमारे शो के थ्रू एक्सचेंज हुआ था,
0: हाँ
1: हमारा शो और उनका शो, KBC और वो, हम
0: जी
1: लोग,
0: जी
1: तो हमें नसीब प्राप्त हुआ उनके इर्द गिर्द बैठने का, उनसे बात करने का।
0: हाँ
1: तो मुझे प्रेशर नहीं लगा, मुझे लगा कि अपना ही कोई एक सीनियर, एक बहुत बड़ा,
0: जी
1: अभी मेरी आंखों में पानी आ रहा है, वो फील था वो अलग ही था। तो वो उनसे मिलने के बाद ऐसा लगा, और उनसे मैंने बात भी की, मैंने उनको कहा, आई रिक्वेस्टेड हिज मैनेजर कि मुझे 1 मिनट अलग से बात करनी है। जैसे
0: अच्छा।
1: अरे आप दिन भर साथ में थे सर, क्या प्रॉब्लम है, 1 मिनट बात करनी है।
0: हाँ
1: तो वो आए, बटन साहब बहुत ही खूबसूरत इंसान है, बहुत ही अच्छे दिल से, वो आए, उन्होंने कहा

0: हाँ बोलिए बोलिए। मेरा सर एक प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में।
1: हाँ
0: अरे क्या हो गया?
1: अच्छा
0: मेरा सर वो बचपन से आपको देखते देखते बड़े हुए हैं,
1: हाँ
0: तो अभी जब भी एक्टिंग करते हैं तो मेरा कोई ना कोई दोस्त या कोई डायरेक्टर ऐसा बोलता है कि यार खुद से थोड़ा बच्चन कम कर ले। लाफ द सेम वे द वे यू लाफ।
1: अच्छा।
0: डर वाला मुझसे होता नहीं
1: हाँ।
0: है।
1: यहां अगर मैं आपसे कहूं कि एक गाना चुनो तो आप बच्चन साहब की फिल्म का गाना चुनेंगे? हाँ
0: बिल्कुल, मुझे उनका एक बहुत खूबसूरत गाना आता है और जो मैं गाता भी हूँ बहुत सारे गेट टुगेदर्स में,
1: हाँ
0: शराबी फिल्म का दे दे प्यार दे।
1: ओहो
0: आई लव दैट सॉन्ग। इट स्टार्ट्स विद हम बंदे हैं प्यार के, तो एक बहुत खूबसूरत गाना है जो मैं हमेशा
1: क्या बात,
0: पसंद।
1: चलिए सुनते हैं।

0: शराबी फिल्म का गीत हम सुन रहे थे, दे दे प्यार दे। और ये प्यार जो आपने मांगा इंडस्ट्री से, वो आपको मिलता गया, बढ़ता गया ये प्यार।
1: बिल्कुल
0: और इस प्यार की अब इंतहा होना बाकी है, मगर इस प्यार के बढ़त में जो अगला स्टेप है, वो कौन सी फिल्म थी, कौन सा प्रोजेक्ट था?
1: इस दौरान काफी फिल्में हुई। एके वर्सेस एके नाम की अनिल कपूर और अनुराग कश्यप जी के साथ एक फिल्म थी, नेटफ्लिक्स पे आई थी
0: हाँ,
1: वो। मैंने एक फिल्म की, बहुत अच्छी फिल्म थी। अनिल जी और अनुराग जी के साथ काम करने का मौका मिला, दोनों इतने महान एक्टर्स भी
0: जी
1: हैं, तो बहुत सीखने को मिलता है इन सब लोगों के थ्रू। तो एके वर्सेस एके मेरी दूसरी फिल्म थी।
0: जी
1: फिर मैंने बागी 3 भी की, जो कि टाइगर श्रॉफ के साथ में थी, रितेश देशमुख
0: हाँ
1: साहब थे, वो थी। फिर उसके बाद में मेरी दो प्रोजेक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मडगांव एक्सप्रेस एक फिल्म आई थी अभी, कुणाल खेमू उन्होंने वो डायरेक्ट की थी, लिखी थी।
0: जी
1: सो लाइट कॉमेडी फिल्म, तो बहुत ही खूबसूरत पिक्चर थी। जैसे मैं हेरा फेरी, अंदाज अपना अपना, ये फिल्में कभी भी लगाओ, कितनी भी बार देखो, वैसा ही मडगांव एक्सप्रेस भी आप कभी भी देखो, एक बड़ा ही लाइट कॉमेडी फैमिली के साथ देखने लायक वो
0: हाँ
1: एक फिल्म थी। और एक ताज़ा खबर नाम के वेब
0: वेब
1: सीरीज
0: सीरीज
1: जी, जो कि भुवन बाम अपने आप में एक बहुत बड़ा यूट्यूब स्टार है आज के दुनिया में,
0: जी
1: तो उसके साथ की थी। वो दोनों सीजन मैंने उसमें किए, तो उसमें भी मेरा प्राइमरी कैरेक्टर रहा। नेगेटिव शेड है, ग्रे शेड है। पहले सीजन में विलन थे जड़ी चक्रवर्ती साहब,
0: जी
1: जो कि साउथ से सत्या मूवी आई थी, उन्होंने उस सत्या का कैरेक्टर किया।
0: हाँ
1: और दूसरे में थे जावेद जाफरी साहब,
0: जी
1: तो ये दोनों के साथ मैंने वो कैरेक्टर किया था, जो कि ग्रे शर्ट था, लेकिन काम करते हुए बहुत मजा आया। फिर बीच में गांधी गोड से एक युद्ध,
0: हाँ
1: जो राजकुमार संतोषी साहब की फिल्म थी, उसका किस्सा बड़ा खूबसूरत है। हुआ ये कि मैं रणजीत कपूर सर के साथ नाटक किया करता था।
0: अच्छा
1: रणजीत कपूर सर जो अन्नू कपूर साहब के बड़े भाई हैं, 9 साल बड़े,
0: हाँ
1: वो थिएटर की वन ऑफ द मोस्ट सीनियर पर्सनैलिटी होंगी आज इंडिया में।
0: जी जी
1: तो उनके साथ में नाटक करता था, चेखव की दुनिया, शेर अफगन भी हम करने वाले थे। तो सर को मैं बहुत मानता हूँ। लॉकडाउन खत्म होते ही मैंने सोचा कि मैं वापस आ जाता हूँ, फैमिली मेरी नागपुर में ही थी,
0: हाँ
1: लेकिन मैं आ गया, एटलीस्ट थोड़ा बहुत काम चालू हुआ था।
0: जी
1: मैं रंजीत सर को मिलने गया। रंजीत सर ने कहा कि विपुल कल आ जाओ, उस दौरान जो है वो सोसाइटीज लॉक हुआ करती थी, सबको एंट्री नहीं होती थी। बोले तुम्हारे पास गाड़ी है तो मुझे तुम छोड़ देना, मुझे जाना है जुहू,
0: अच्छा
1: तब हमारी रास्ते में बात भी हो जाएगी। मैंने बोला सर ठीक है। मैं गया, सर को पिकअप किया मैंने। हम जाते जाते बातें कर रहे थे, जो कुछ बातें थी मैंने भी एक फिल्म लिखी थी, मैंने सर को बताई
0: अच्छा
1: बातें हुई। मुझे पता नहीं वो कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा जू चलो,
0: अच्छा
1: बच्चन साहब के घर के सामने से जाएंगे। तो मैं वहां ले गया गाड़ी। फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मेरी मंजिल आ गई, मैं उतरता हूँ,
0: हाँ
1: मिलते हैं बाद में। मैं बोला ठीक है सर। तो उन्होंने उतरते वक्त पूछा, तुम राज जी से मिले हो? मैंने बोला कौन राज जी सर?
0: हाँ
1: अरे राजकुमार संतोषी।
0: अच्छा
1: अरे मैंने बोला सर मैंने तो नाम ही सुना है, आप राज जी से मिले हो, कैसे मैं मिलूंगा? अच्छा तो आ जाओ चलो। फॉर मी इट वॉज लाइक गूस बम्प,
0: ओहो
1: इतने बड़े इंसान से आ जाओ चलो मिलने। मैंने तुरंत, मैंने ठीक है आता हूँ, मैंने गाड़ी लगाई, उनके साथ ऊपर गया।
0: हाँ
1: ऊपर गया तो राज जी नहीं थे, बाहर गए हुए थे कहीं।
0: अच्छा
1: उन्होंने कहा कि थोड़ी देर आप इंतजार कीजिए, और वो चले गए अंदर किसी वर्कशॉप टाइप डिस्कशन के लिए।
0: अच्छा
1: अब वो बहुत बड़ा सा फ्लैट टॉप फ्लोर पे मैं था, मैं वहां पे जाके, टेरेस ओपन था, वहां पे जाके बैठ गया। और एक इंसान बड़ा खूबसूरत ख्यालों में खो जाता है। मैंने सोचा मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ, मेरे लंबे बाल हुआ, लॉकडाउन में मैंने कंधे तक बाल बढ़ा लिए थे।
0: अच्छा
1: मैंने सोचा मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ, राज जी की एंट्री होती है, राज जी बोलते हैं अरे यार ये कौन है, इसको ले लेते हैं। ऐसे मैं कुछ सोच रहा था। हालांकि राज जी आए थोड़ी देर बाद, उन्होंने मुझे देखा नहीं, बाद में मुझे मिलाया गया उनसे।
0: हाँ
1: और एक कैरेक्टर उनके दिमाग में था, जो उनके एसोसिएट ने आके मुझे बताया
0: हाँ
1: कि डीएसपी राणा नाम के एक उस दौरान के अच्छा कैरेक्टर था।
0: जी
1: तो उनको बताया कि ये है विपुल देशपांडे। रंजीत सर ने बताया ये मेरा एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर है, थैंक्स टू रंजीत सर फॉर दैट। और उन्होंने कहा कि आप इससे जो भी आपके पास काम हो आप कराइए, बहुत बढ़िया कलाकार है। तो उन्होंने कहा यार डीएसपी का कैरेक्टर है, लेकिन इतने खूबसूरत बाल बढ़ा रखे हैं,
0: या
1: काटने पड़ेंगे। मैंने बोला सर मैं काट लूंगा, बालों का टेंशन नहीं है, अब काम करना जरूरी है।
0: बराबर
1: देन ही गिव मी दैट कैरेक्टर एंड आई
0: अच्छा
1: वर्क विद हिम। इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम आल्सो।
0: ओटीटी की वेब सीरीज के लिए, फिल्मों के लिए आपने काम किया, टेलीविजन के लिए सीरीज की है और बड़े पर्दे पर भी काम किया है। ये तीनों अलग-अलग मीडियम है मगर इसके शूटिंग की जो प्रोसेस है ऑलमोस्ट एक जैसी होती है।
1: जी
0: कुछ फर्क आपने एक एक्टर के रूप में महसूस किया है इसमें?
1: फिल्म और ओटीटी ऑलमोस्ट सेम है,
0: हाँ
1: क्योंकि इसके पहली बात आती है बजट की। आपके पास में एक थोड़ा अच्छा डिसेंट बजट है तो आपके पास टाइम होता है।
0: जी
1: टेलीविजन में क्या होता है कि आपके पास में टाइम थोड़ा कम होता है, क्योंकि आपको वो शूट करके पहुंचाना है, आगे,
0: उसकी
1: और
0: एक तयशुदा तारीख है कि उस दिन वो
1: डेडलाइन
0: एपिसोड तो टेलीकास्ट होना ही
1: होना
0: है।
1: ही है।
0: जी
1: तो जैसे आपने कहा कि एक तयशुदा तारीख, तो उस वक्त आपको पहुंचाना है,
0: हम्म।
1: और आपके पास में बहुत सारा काम होता है,
0: जी।
1: बिकॉज महीने में अगर वो 28 दिन टेलीकास्ट हो रहा है, 28 दिन आपको काम करना पड़ेगा, 28 स्टोरीज आपको लगेंगी।
0: जी
1: तो मेरा एक बहुत ही बड़ा काम जो मैंने किया है आज तक, वो था वागले की दुनिया।
0: हाँ जी
1: मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझता हूँ कि जेडी सर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, जेडी मजेठिया सर, आतिश कपाड़िया सर, ये
0: जी
1: दोनों प्रोड्यूसर्स हैं। मुझे मौका मिला सुमित राघवन जैसे इतने सीनियर आर्टिस्ट के साथ भाई के करेक्टर में काम करने का। तो सुमित दा मेरे मेंटर जैसे हैं।
0: क्या बात।
1: दो और हमारे आइकॉन थे भारती मौसी, भारती आचरेकर,
0: जी
1: और अंजन सर, अंजन श्रीवास्तव, जो कि सीनियर कपल थे
0: जी जी
1: वागले। ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूट्स हैं,
0: बिल्कुल
1: इनसे सीखने को बहुत मिलता है। तो ये तीनों के साथ काम करने में बड़ा मजा आया, मुझे बहुत सराहना भी मिली इन लोगों के साथ काम करते हुए, बहुत सीखने मिला। ये मेरा पहला डेली शो था,
0: अच्छा।
1: तब तक मैं फिल्म्स और ओटीटी ही करना चाहता था, तो मैं उसी पे फोकस ज़्यादा कर रहा था। बट ये कैरेक्टर बड़ा ही अपने आप में मुझे
0: ये मुझे
1: पसंद
0: लगता
1: है।
0: है 2022 की बात है।
1: जी, 2022 की बात है, आज से 4 साल पहले।
0: हाँ
1: तो ये मुझे फ़ोन आया, जैसे मैंने कहा वर्क ग्रीनरी,
0: हाँ
1: उसी कॉन्सेप्ट में मुझे कॉल आया। ये होता है कि आप जैसे कोई न्यू कॉमर भी आता है, वो सोचता है यार मैं अभी ये ऑडिशन क्यों दूं, वो क्यों दूं। मुझे लगता है हर एक ऑडिशन जो आपके पास आता है वो कुछ ना कुछ मीनिंग लेके आता है, वो
0: हाँ
1: शायद कहीं ना कहीं ऐसे सर्कल में जाएगा जहां से आपको बाद में फ्यूचर में काम मिलेगा,
0: अच्छा
1: क्योंकि सबको चाहिए अच्छे काम करने
0: बिल्कुल
1: वाले। तो
0: बिल्कुल
1: कास्टिंग डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर, दे नीड गुड पीपल। तो आपके पास जो भी मौका, जो भी अपॉर्चुनिटी आती है, आप उसको छोड़ो मत। आपके पास में भले ही आपको लग रहा है कि ये इतना मजा नहीं आ रहा है, बट आप उसको शूट करके भेज दो।
0: जी
1: आजकल तो बहुत आसान हो गया है, पहले मैं जब आया था 2013 में, ये ऑनलाइन वीडियो बना के भेजने वाली बात नहीं थी।
0: बिल्कुल
1: आज ऐसा हो गया है कि आपको स्क्रिप्ट आती है, आपका मोबाइल में अच्छा कैमरा है, आप उसको स्टैंड पे लगाओ और खुद ही घर पे बैठ के शूट कर लो,
0: अपना।
1: ऑडिशन भेज दो, सही लगा तो वो बुलाएंगे। ये पहले नहीं हुआ करता था, पहले एक भी ऑडिशन क्यों ना हो जाना पड़ता था, जहां जहां बुलाया जा रहा
0: जी
1: है
0: जी
1: वहां पे लाइन में खड़ा होना
0: वो
1: पड़ता था।
0: दर दर भटकने वाली बात है ना।
1: बिल्कुल, हमने दर दर की ठोकरे खाई है। और बहुत जगह से बाहर से ही निकाला जाता था कि यहाँ कुछ काम नहीं है। कुछ जगह पूछा जाता था कि आपकी अपॉइंटमेंट है, तो नहीं सर पता करने आए, कुछ काम है क्या? नहीं नहीं कोई को, कोई काम नहीं है।
0: ओह
1: तो ये भी बहुत बार, बहुत साल हुआ है मेरे साथ। तो लेकिन उसका अपना एक मजा था, वो
0: हाँ
1: सफर है,
0: अच्छा
1: मंजिल पे पहुंचने का मजा तभी आता है जब सफर अच्छा हो।
0: हाँ
1: अगर सफर आप डायरेक्ट चले गए तो क्या मतलब फिर?
0: बराबर
1: तो एक अलग मजा रहा है, अभी भी मैं एंजॉय करता हूँ, स्ट्रगल अभी भी खत्म नहीं हुआ,
0: हाँ
1: अभी भी ऐसे बहुत सारे किरदार हैं जो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन शायद वहां तक पहुंचने के लिए अभी तक समय होगा, बट जब भी मिलेगा ये सफर आनंददायी ही रहेगा।
0: क्या बात। कोई ऐसा गाना जो आपके इस संघर्ष के दिनों में बार बार आपके जहन में गूंजता हो।
1: देवानंद साहब का जो एक गाना मैंने उन पे फिल्माया, वो गाना देखा था, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला
0: हाय हाय हाय
1: गया
0: क्या बात है।
1: और फिक्र को धुएं में उड़ाता
0: हम दोनों
1: चला।
0: फिल्म का गाना है।
1: हाँ जी,
0: बेहद लोकप्रिय गीत
1: बेहद
0: है।
1: लोकप्रिय
0: आइए सुनते हैं।
1: जी।

0: विपुल जी, जिंदगी का साथ निभाते निभाते आप वागले की दुनिया तक पहुंचे।
1: जी
0: हम उसकी बातें और थोड़ा विस्तार से करना चाहेंगे।
1: जी
0: अंजन जी जैसे वरिष्ठ और श्रेष्ठतम कलाकार के साथ काम करना, भारती जी आचरेकर और सुमित दादा के बारे में आप बता रहे थे, सुमित राघवन जी, कैसा इंटरेक्शन होता था ऑफ द कैमरा, कैसे सब माहौल होता था?
1: एक बहुत ही खूबसूरत बात सुमित दादा के साथ ये होता था
0: जी
1: कि मैं जब तक सेट पे जाऊं और हम लोग रिहर्सल करें
0: जी
1: तब तक मैं उसको बोलता था कि सुमित्दा ये करते हैं, सुमित्दा ये करेंगे, हाँ ये
0: हाँ
1: करेंगे। जैसे ही एक्शन होता है वो दादा मुझे बोलता था
0: जी,
1: क्योंकि
0: आपने बड़े भाई का रोल
1: मैंने
0: किया,
1: उनके बड़े भाई का रोल किया था।
0: मनोज नाम था
1: मनोज
0: उसका,
1: वागले मेरा, मनोज वागले मेरा नाम
0: जी
1: था।
0: जी जी
1: तो बड़ा एक अजीब सा वो लगता था, मुझे
0: हाँ
1: बड़ा मजा आता था उसमें सुनते हुए कि
0: हाँ
1: जब तक एक्शन नहीं हो रहा है तब तक मैं उनको दादा बोल रहा हूँ, सभी हम लोग सभी
0: जी
1: से
0: जी
1: सीनियर
0: जी
1: हैं। और फिर उसके बाद में जैसे ही एक्शन हो गया तो सुमित दादा की यहाँ से आवाज आती थी, अरे
0: हाँ
1: दादा। खैर ये तो हुई मजाक की बात, लेकिन जहां तक उनके साथ काम करने का सवाल है, सुमित दादा को भी 40+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, वो बहुत
0: जी
1: बचपन से काम कर रहे हैं।
0: बिल्कुल
1: फास्टर फेने वो
0: हाँ
1: शो किया करते थे 80s में शायद,
0: बिल्कुल
1: और अंजन जी और भारती मौसी का तो क्या ही कहना, मतलब वो मेरे फर्स्ट रील मदर फादर थे और
0: हाँ,
1: उन्होंने उतना ही प्यार दिया।
0: आपको वो पहला शॉट याद आ रहा होगा अंजन जी के साथ जो दिया था आपने।
1: अमेजिंग इट वाज, मतलब
0: हाँ
1: पहला शॉट सुमित्रा के साथ भी, अंजन जी के साथ भी। तो हालांकि सुमित्रा के साथ तो मेरा मॉक शूट भी हुआ था,
0: अच्छा
1: क्योंकि ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं जिनको प्रोडक्शन बुलाता है, चैनल बुलाता है, एक ऑडिशन होता है, उसके बाद में देखा जाता है कि इनके साथ में केमिस्ट्री होगी कि नहीं होगी।
0: हाँ
1: तो मुझे बुलाया था मेरे ऑडिशन के बाद में, शॉर्टलिस्ट होने के बाद में प्रोडक्शन ने मॉक शूट के लिए।
0: अच्छा
1: तब सीन ये था कि माँ मतलब भारती मौसी एडमिट है
0: अच्छा
1: और ये जो कैरेक्टर है मनोज वागले का, ये थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड कैरेक्टर है
0: ओके
1: मेरा, जो कैरेक्टर मैंने जो प्ले किया था, और उतना ही कूल और उतना ही शांत सुलझा हुआ है राजेश वागले जो कि सुमित दादा प्ले करते थे।
0: हाँ
1: तो इतना उसमें डिफरेंस दिखाना था कि माँ के हॉस्पिटल में वो उधर बजर बजा रही, कोई आ नहीं रहा है और ये भड़का हुआ है, और फिर नर्स को बुलाता है, नर्स को झाड़ता है और वो डर के चली जाती है। इस टाइप का एक वो सीन था, मैं सीन प्रिपेयर करके आया, सुविधा को भी मैं पहली बार मिला था। तो बड़ी प्लीजेंट पर्सनालिटी है, जितने बड़े आर्टिस्ट होते हैं उतने ही डाउन टू अर्थ होते हैं, उतने ही दिल के खूबसूरत होते हैं, मैंने देखा हुआ है। ये तभी तो एक अच्छी एक्टिंग कर सकते
0: बिल्कुल
1: हैं,
0: बिल्कुल,
1: इंसान अगर दिल से अच्छा नहीं
0: ये
1: है तो हो
0: बहुत
1: जाएंगे।
0: बड़े कलाकार इसलिए क्योंकि ये बहुत अच्छे और बड़े इंसान हैं
1: जी,
0: और बहुत विनम्र होते हैं।
1: बहुत विनम्र होते हैं, इनको कभी भी आप देखेंगे नहीं कि अननेसरी शॉर्ट टेम्पर हो, किस पे चला रहे हैं, कुछ भी।
0: जी जी जी
1: तो ये बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो सुमित्रा के साथ वो भी मैंने जो एक मॉक शूट किया, एक्शन होने के पहले तक मैं बिल्कुल उस जोन में नहीं जाता,
0: जी
1: लेकिन एक्शन के बाद मैं चाहता हूँ कि इंसान वही रहे जो कैरेक्टर है, वही मैं फील करूँ अंदर से। और ये मुझे वहां सीखने को मिला, हमारे डायरेक्टर थे समीर कुलकर्णी सर, अमित कानेरे सर,
0: जी
1: दीपेश शाह, ये तीन डायरेक्टर्स थे वहां पे। इन तीनों ने भी जब तक सीन ओके नहीं होता तब तक तो वो आगे नहीं भेजते थे।
0: अच्छा
1: मेरे ख्याल से ऊपर से आया हुआ है, जेडी सर से तू आया है कि यार ये चीज करनी है तो अच्छी करनी है, छापना नहीं है कि हाँ चलो हो गया आगे बढ़ो। हालांकि वहां पे जाके कोई रोक ही देगा आपको, या ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं ये
0: हाँ
1: सीन नहीं है, आप भी रोजमर्रा के आर्टिस्ट आप रोज कर रहे हो चीजें तो हो
0: जी
1: जाती है, लेकिन जो मूड आया है वो हम करते थे। जैसे अंजन सर मुझे मोस्ट ऑफ टाइम अगर मेरा और उनका सीन है वो मुझे उनके रूम में बुला लेते थे
0: अच्छा
1: कि यार विपुल आ जाओ अपना सीन है, रूम में बैठ के रिहर्सल करते हैं। वो भी थिएटर आर्टिस्ट है, मैंने भी थिएटर किया है, मुझे बड़ा पसंद है। तो वो बुला देते हैं और मैं और अंजन सर फिर हम लोग रूम में ही उनके वैनिटी में ही पहले रिहर्स करते थे, क्या मूड रहेगा। सिर्फ लाइन्स ही नहीं होती है एक आर्टिस्ट के लिए, न्यूंसिस जो छोटे छोटे उसमें की हरकतें होती है
0: जी
1: वो ज्यादा मैटर करती है,
0: बिल्कुल
1: पॉजेस मैटर करते हैं। टीवी जो है आपके छोटे से छोटे एक्सप्रेशन को पकड़ लेता है, आई मूवमेंट हो, चाहे आपने कहीं बीच में हल्का सा कान मूव किया है, या मराठी में आवंडा गेड़ा सुमंत अपन
0: हाँ, एक घूंट लेने की जो
1: घूट
0: एक
1: वो है,
0: प्रक्रिया।
1: तो ये छोटी छोटी बातें जो है कैमरा नोटिस करता है आपकी, तो ये चीज सीखने को मिलती थी। भारती मौसी के साथ इमोशनल सीन करने में बहुत कष्ट लगा, ऐसा
0: प्रयास करना पड़ता
1: प्रयास
0: था।
1: करना पड़ता था कि उस लेवल तक कैसे उसके आजू बाजू पहुंचा जाए,
0: हाँ
1: लेवल पर पहुंचने की बात ही नहीं।

0: इज सो सीनियर. तो भारती मौसी के साथ जब इमोशनल सीन एक माँ बेटे वाला होता था और बहुत ज्यादा उनके साथ ही रहे इनिशियली
1: जी,
0: बाद में फिर अंजन जी के साथ भी रहे, लेकिन पहले माँ के साथ वो बेटे का बॉन्डिंग दिखाना था तो एक अलग जोन में चले जाता था फिर मैं. मैं उतना जरूर समझता था कि ये चीज उस राइटर ने इतने प्यार से लिखी है, इतने इमोशन सोच के लिखी है, मैं करने वाला हूँ एक बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट के साथ
1: जी,
0: तो वो उस लेवल पे जाना ही चाहिए तो ही मजा आएगा. तो आई यूज्ड टू हैव इट फॉर एन आर टू आर. मैं लिखता था, खुद मैं लिखता हूँ जितने भी लाइन्स आती है, वैसे तो स्क्रिप्ट मिलती है, बट आई यूज्ड टू राइट इन माय वर्ड्स एंड देन रिपीट इट ऑन रेगुलर बेसिस. ये मैंने सीखा है शायद नाना पाटेकर साहब से भी सुना था, आमिर खान साहब से भी सुना था कि वो खुद लिखते हैं एंड देन वो रिहर्स करते हैं 20 बार 25 बार.
1: जी जी,
0: उसी से फायदा होता है, आपके पास जो भी है वो स्क्रिप्ट है
1: जी
0: वो स्क्रिप्ट में ही चीजें मिलेंगी आपको जो डिलीवर करनी है.
1: जी,
0: तो ये इन तीनों के साथ मैंने सीखा है और बहुत मजा आया. बाकी भी मेरे जितने भी को एक्ट्रेस थे, मेरी वाइफ थी विद्या वागले, सुकन्या ने वो किरदार किया था, फिर हमारे पड़ोसी थे अमित और दीपक, दीपक पारिक, और उनके साथ भी करने में बड़ा मजा आता था. एक अलग ही जोन में वागले जो है चलता रहा. वागले ने मुझे बहुत कुछ दिया,
1: जी जी,
0: घर घर में पहचान मेरी मनोज वागले के नाम से.
1: हाँ, मैं भी उसी सवाल पे आने वाला
0: जी
1: हूँ कि घर घर में आप पहुंचे, मगर ये वागले का शूटिंग करने के बाद जब आप अपने घर नागपुर पहुंचे तो कैसा रिएक्शन था?
0: मेरे बहुत सारे दोस्तों को पता तो था ही कि मैं ऑलमोस्ट 7-8 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ. कुछ लोगों ने मेरे काम देखे थे, क्राइम पेट्रोल साउथ इंडिया, लेकिन वो छोटे मोटे काम थे जो ज्यादा दिखते नहीं थे.
1: अच्छा,
0: तो वागले करने के बाद जब घर घर में शील पहुंची तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने भी बताना चालू किया ये हमारा दोस्त है. तो लोग यकीन नहीं करते थे कि ये तेरा रोज कहां से आएगा. तो नागपुर का तो नागपुर में होगा या ऐसा थोड़ी होता है. बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करते थे. एक बहुत ही मजाक किया सीन हुआ मेरे साथ.
1: अच्छा,
0: मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, 2023 की बात है, हॉस्पिटल में हम लोग थे. एक बार मैं नीचे से, मैं और मेरी शायद माँ थी मेरे साथ, हम लोग नीचे से लिफ्ट में ऊपर के फ्लोर पे जा रहे थे. वहां पे एक इंसान आए, उन्होंने मुझे थोड़ी देर घूर के देखा, फिर अपने आप में कुछ सोचा.
1: अच्छा,
0: और थोड़ी देर में बोलते हैं, आप ही के जैसा एक आर्टिस्ट है.
1: अच्छा,
0: दिखता बिल्कुल आपकी तरह. अच्छा
1: अच्छा,
0: किसमें? वो बहुत बड़ा एक शो है वागले की दुनिया, उसमें मनोज वागले का कैरेक्टर करता है.
1: अच्छा,
0: बिल्कुल हूबहू आपकी तरह दिखता है. धन्यवाद. अच्छा.
1: जी जी,
0: मैंने बोला सर काम अच्छा करता है क्या?
1: हाँ.
0: अरे बहुत अच्छा, बहुत उमदा.
1: अच्छा,
0: अच्छा. चलो नाम तो नहीं खराब कर रहा है. आई लाइक दैट थिंग. फिर किसी ने बताया, शायद कोई और भी थे लिफ्ट में, उनको बताया कि ये वही है. उन्होंने बिलीव नहीं किया. कि आप क्या करोगे आप?
1: ये बिल्कुल रोवेन एटकिंसन जैसा हो गया. वो कई बार अपने इंटरव्यूज में बता चुके हैं
0: जी
1: कि कई लोग उनसे मिले हैं और वो उनसे पहली बार यही कहते हैं कि क्या आपको पता है आप मिस्टर बीन जैसे दिखते हैं.
0: ट्रू ट्रू.
1: जी जी जी, तो ऐसा ही वाकया आपके साथ?
0: बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हुआ. और मुझे बड़ा अच्छा भी लगा कि उसने बोला कि यार काम अच्छा करता है.
1: हाँ,
0: एक कलाकार के लिए सबसे जरूरी वही बात.
1: और क्या चाहिए?
0: और क्या चाहिए?
1: क्या बात है.
0: तो ये घर घर में नाम उसी वजह से पहुंचा. मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं उनको भी अच्छा लगा.
1: हाँ,
0: दोस्त हैं उनको अच्छा लगा. और मैं जहां भी जाता था वो बड़े ही प्राउडली मुझे इंट्रोड्यूस भी कराते थे, बुलाते भी थे. तो ये एक प्यार है, अपनों का प्यार.
1: क्या बात.
0: मैंने एक फिल्म देखी थी, टॉपिक निकला नागपुर का इसलिए, कि आर माधवन साहब की एक फिल्म थी रामजी लंदन वाले.
1: अच्छा. हाँ,
0: बहुत खूबसूरत फिल्म है. उसमें ये कुक होते हैं इंडिया में, उन्हें यूएस में लिख के जाया जाता है किसी फैमिली के थ्रू काम में.
1: अच्छा.
0: अब वहां पे उनके साथ जो स्टोरी होती है वो तो अलग, लेकिन वहां के शेफ कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं.
1: अच्छा.
0: और वर्ल्ड शेफ टाइटल जीत लेते हैं.
1: ओहो.
0: उन्हें वहां पर रेस्टोरेंट दिया जाता है खरीद के, उनको वहां पे सब दिया जाता है.
1: हाँ.
0: पर वो बोलते हैं कि यार ये सब मुझे अब मत दो, मैं तो वापस जाऊंगा ना. तो बोलते हैं अरे सर आपको इतना बड़ा रेस्टोरेंट न्यूयॉर्क में, ये वो सब दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है.
1: हाँ.
0: गाड़ी देंगे आपके पास में. बोले क्या मतलब वो गाड़ी का, अगर मैं अपने दोस्तों को ना घुमा पाऊं.
1: हाँ.
0: मैं अगर मेरे फैमिली के साथ चक्कर ना मार पाऊं, मैं उस सब सब चीजों को शेयर ना कर पाऊं अपने लोगों के साथ.
1: हाँ, हाँ.
0: तो मजा तो वही है.
1: बिल्कुल.
0: तो मुझे वही अच्छा लगता है कि जाओ तो एक अपने लोग मिले, उन्हें अच्छा लगे.
1: क्या बात है.
0: दैट इज मोर इम्पोर्टेंट.
1: तो अब उन अपने लोगों के लिए जो नागपुर में बसते हैं, आपके दोस्त, आपके घर वाले, परिवार वाले, उनके लिए आप कौन सा गाना सुनवाना चाहेंगे?
0: वैसे अलग से तो बहुत सोचा नहीं, लेकिन देवानंद साहब का ये जो गाना था, है अपना दिल तो आवारा.
1: हो, आइए सुनते हैं.

अभिनेता विपुल देशपांडे से, जयंत पात्रीकर की बातचीत का पहला भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहायक काजल भदरगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते सेलुलॉइड के सितारे कार्यक्रम में।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।

इस दिल की मंजिल तो तय है, जहां दिलदार का हसीन साया है। तेरे जलवों में गुम हैं आंखें, तुझे देखें या जमाने को, दिल इसी में भरमाया है।

दिन रात इसी सोच में डूबा है दिल कि कैसे मिलें और कब मिलें उनसे, और मिलने पर बस यही सोचने लग जाता है दिल कि अब क्या कहें उनसे।

बड़े खूबसूरत हो, हसीन हो, हमने तो कह दिया जहां से, ए यार करते रहेंगे तेरी तारीफें, हैं जब तक ये सांसें।

हवाओं में गूंज रहे हैं तेरे मेरे उल्फत के अफसाने। खुश हैं ये जमीन और ये आसमान, लगे हैं मुस्कुराने।

0: तराने नए पुराने।
1: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत तराने नए पुराने कार्यक्रम में आप सभी को सबसे पहले जो गाना सुनवा रहे हैं, इसे गाया है सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर ने। फिल्म का नाम बंटी और बबली।

0: सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज़ों में आप सुन रहे थे गुलजार का लिखा हुआ गीत। संगीतकार शंकर एहसान लॉय, फिल्म का नाम था बंटी और बबली।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहाँ कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: अरे अरे अरे ना ना ना ना ना ना ना ना।
0: तराने नए पुराने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।

0: नमक हलाल फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, आवाजें किशोर कुमार आशा भोसले की थी, अनजान के बोलते बप्पी लहरी का संगीत था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
4: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
3: बेचारा
5: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
4: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक
5: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
4: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
6: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी।

0: और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
1: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ,
2: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
1: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।
3: तराने नए पुराने कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए ओम शांति ओम फिल्म का ये गाना। आवाज श्रेया घोषाल अभिजीत की है, विशाल शेखर का संगीत है और जावेद अख्तर ने इस गीत को लिखा।

विशाल शेखर के संगीत निर्देशन में आपने सुना श्रेया घोषाल और अभिजीत का गाया गीत। फिल्म का नाम था ओम शांति ओम और इस गीत को जावेद अख्तर ने लिखा था। तराने नए पुराने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अब सुनते हैं शक्ति फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं किशोर कुमार, लता मंगेशकर की, आनंद बख्शी के बोल हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, AI और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदुर तक फैली हुई है।
1: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदुर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांव और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि एरोड्रोम लाइसेंस मिलने के बाद भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उद्घाटन के लिए तैयार है। हवाई अड्डे का निरीक्षण करने के बाद श्री नायडू ने कहा कि यह परियोजना केंद्र सरकार, राज्य सरकार और GMR समूह के आपसी सहयोग से निर्धारित समय से पहले पूरी कर ली गई है। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं। वायनाड के मिपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया और उन्हें मिपड़ी के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। इस बीच वायनाड और कोझिकोड जिले के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड के शिक्षण संस्थान कल बंद रहेंगे। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार वर्षा के कारण आज सुबह डोडा जिले के थथरी क्षेत्र में एक बादल फट गया, जिससे कई घरों में दुकानों को नुकसान पहुंचा। हालांकि बादल फटने से कोई हताहत नहीं हुआ है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में आज दोपहर 2 विस्फोट हुए। इनमें 4 पुलिसकर्मियों सहित 18 लोग घायल हो गए। ये विस्फोट फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और सीरिया के राष्ट्रपति

0: अहमद अल शराकी राष्ट्रपति भवन में होने वाली बैठक से ठीक पहले हुए। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंघम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। तराने नए पुराने कार्यक्रम में आप सभी का फिर से हम स्वागत करते हैं। सुनाते हैं आपको विरासत फिल्म का ये गीत।

0: कुमार सानू और जसपिंदर नरूला की आवाज़ों में जावेद अख्तर का लिखा हुआ गीत आप सुन रहे थे विरासत फिल्म से। तराने नए पुराने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: तराने नए पुराने।

0: रेफ्यूजी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाज़ें थीं सोनू निगम और अलका याग्निक की, जावेद अख्तर के बोल थे, अनु मलिक का संगीत था।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
4: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
4: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
4: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत, सिर्फ विविध भारती पर।
5: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
6: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
5: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: दिल तो पागल है फिल्म का ये गाना आशा भोसले की आवाज में।

0: आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में आप ये गीत सुन रहे थे। इसे आनंद बख्शी ने लिखा था और उत्तम सिंह ने संगीत तैयार किया था। फिल्म का नाम दिल तो पागल है। इस गीत के साथ ही आज का तराने नए पुराने कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: तराने नए।

0: सुनना न भूलें प्रतिदिन सुबह और शाम 6:45 पर विविध भारती का कार्यक्रम संगीत सरिता।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं आज के शेष और कल दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

सात बजे फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस 8 बजे हवा महल में सुनेगा। झलकी मुंशी इतवारी लाल, लेखन नरेश मिश्रा का, निर्देशक हैं विनोद रस्तोगी। नौ बजकर 30 मिनट पर सुनिए आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित होगा संगीतकार अनिल विश्वास पर। 10 बजे छाया गीत, 10:30 पर ढलती जाहिरात, 11 बजे रंग तरंग, रात 9 बजे कार्यक्रम आपके लिए। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब सुनिए कल सुबह और दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। सुबह 6:05 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार सुनेगा। 6:35 पर श्री रामचरित मानस गान भाग 243। सुबह 6:45 और शाम 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में सुनिए श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका भाग 8। कलाकार हैं बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार और प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। 7 बजे से भूलेगी विसरेगी 7:30 हम है राही प्यार के, 8:15 त्रिवेणी, 8:30 पर चित्रलोक। नौ बजकर 30 मिनट पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता जगदीप पर, प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। 10 बजे पिटारा में सेल्यूलॉइड के सितारे अभिनेता विपुल देशपांडे से जयंत पात्रीकर की बातचीत सुनिएगा, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। 12:05 पर यादों की महफिल, 1 बजे सुरीला सफर, 2 बजे त्रिवेणी। दो बजकर 30 मिनट पर सदाबहार नगमे, 3 बजे सखी सहेली, 4 बजे पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान वरिष्ठ साहित्यकार समीक्षा लेखक हरिशंकर राठी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा भाग सुनेगा। 5:30 पर तराने नए पुराने, 5 बजे छाया गीत। 6:35 कल सुनेगा संध्या रंजन कार्यक्रम और 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम सुनिएगा, कल सुनिएगा इस श्रृंखला की 8वीं कड़ी। 7 बजे फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला, 7:45 पर

शाम 7:45 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम होगा। 8 बजे हवा महल के अंदर गत सुनेगा कल नाटिका नैहर छूटो जाए, नैहर छूटो जाए, ये नाटिका 8 बजे हवा महल कार्यक्रम में सुनिएगा। लेखन अरविंद नीमा का, निर्देशन जटाशंकर शर्मा का।

कल रात 9 बजे आपके लिए 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम कल रात 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री नीतू सिंह पर। 10 बजे छाएगी 10:30 पर ढलती चाय रात और 11 बजे रंग तरंग। आप सुन रहे थे कल दिन भर, आज के शेष और कल दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम संध्या रंजन।

सांझ और सवेरा फिल्म की रचना आपने सुनी, स्वर लता मंगेशकर की थी। आशा मंगेशकर और उषा मंगेशकर के सुरों में प्रस्तुत है ये रचना। ये रचना फिल्म जूली से

आशा भोसले और उषा मंगेशकर के सुरों में आनंद बख्शी की लिखी ये रचना अभी आपने सुनी, संगीत से संवारा था। इस रचना को राजेश रोशन ने और जूली फिल्म की ये रचना थी। इसी रचना के साथ ही आज का संध्या रंजन कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। लीजिए सुनिए इस श्रृंखला की सातवीं कड़ी।
1: दोस्तों नमस्कार, पंडित जी एक बार फिर स्वागत है आज की इस कड़ी में। आपका नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी।
1: पंडित जी बताइए कि आपने बहुत सारी फिल्मों में बांसुरी बजाई है, हमारे बहुत सारे श्रोताओं को जानकारी है, कुछ श्रोताओं को जानकारी नहीं है, तो हम ये बता दें कि फिल्म देश परदेश है, फिल्म बेताब है, जिसमें आपकी बांसुरी की सुरीली तान है, जब हम ध्यान से सुनेंगे तो पाएंगे। तो आप बातचीत के दौरान जिक्र कर रहे थे धर्मेंद्र साहब के बारे में, देव साहब के बारे में।
2: जी, सबसे पहले तो धर्म जी बहुत जिंदा दिल इंसान थे और मैं 9 भाषाएं बोलता हूँ, उसमें एक पंजाबी भी है।
1: जी जी।
2: तो मेरे साथ तो पंजाबी में ही बात करते थे।
1: अच्छा, कौन कौन सी 9 भाषाएं आपको? हिंदी,
2: भोजपुरी, बंगाली, गुजराती, मराठी, पंजाबी, राजस्थानी तो, और भी शायद कोई छूट गया, मैं बोलता हूँ। तो मेरे नाल उन्होंने तो पंजाबी गल करते सन मेरे नाल।
1: वाह।
2: तो अपने बेटे को लॉन्च कर रहे थे सनी को बेताब में, तो सनी भी स्टूडियो में आया हुआ था और धर्म जी भी आए थे। एक बड़ा मार्मिक एक दृश्य था फिल्म का। उस फिल्म में सनी देओल का बड़ा प्यारा सा एक डॉग था, कुत्ता, और जो उसमें विलेन थे वो सनी को मारने के लिए उस कुत्ते को गोली मार देते हैं, और सनी उस क्योंकि प्यार उसको बहुत ना
1: गले से लगा
2: के रो रहा है, और उसमें मेरी बांसुरी। और केसी लॉर्ड बहुत बड़े म्यूजिशियन हुए।
1: जी जी।
2: पंचमदा के राइट हैंड एकदम।
1: जी।
2: केसी लॉर्ड ने एकोलाइट लगाया था और मैंने भी दिल चीर के बजाया डी के बांसुरी में।
1: जी।
2: और वो ऐसे कि एक एक स्वर उस कुत्ते के खून बह रहा है और यहाँ बांसुरी में से आंसू निकल रहा है।
1: जी जी। तो वो क्या यहाँ पर हमारे श्रोताओं को आप सुना सकते हैं?
2: वो तो इम्प्रोवाइज था। जब हम लोग बैकग्राउंड म्यूजिक बजाते हैं ना
1: जी,
2: तो हम लोग जैसे कि राग में इम्प्रोवाइज करके एक एक नोट कर करके वो नहीं करते, हम लोग वो सीन के मूड को देखते हैं।
1: जी।
2: जैसे समझिए कि कुत्ता मर रहा है और पीछे बांसुरी बज रही है,

0: वाह,
1: ये
0: सचमुच दिल चीर देने वाली
1: दिल चीर
0: तान
1: देने
0: थी।
1: वाला वो सीन था। जब टेक ओके हो गया, बांसुरी के अलावा 40-50 वायलिन

0: एक नोट को होल्ड किए हुए थे और उसके ऊपर बांसुरी बज रही थी,
1: ओह
0: और साथ में वाइब्रोफोन बज रहा था। और केसी लॉर्ड तो पारसी थे
1: जी जी
0: और उनका छोटा भाई था भजी लॉर्ड, भजी ना बोलते हैं,
1: जी
0: केसी जी गुजर गए, भजी लॉर्ड अभी जीवित हैं,
1: जी
0: कमाल के लोग। और मैं तो खुद उनका दूसरे कारण से फैन हूँ, क्योंकि रूप तेरा मस्ताना में जो उन्होंने एकॉर्डियन बजाया, तो वो सेंशुअलिटी एकॉर्डियन से कैसे
1: निकाला
0: पैदा
1: जाता
0: हो सकती है ये उन्होंने बताया।
1: है।
0: और मनोहरी दास जैसे सैक्सोफोन प्लेयर
1: जी
0: उस
1: जी
0: पे हावी हो गए, वो ये केसी लॉडी कर सकते हैं।
1: जी जी
0: तो धर्म जी इतने शेर दिल थे, ओए पुत्तर कमाल कर दिता यार, ओ तेरा जवाब नहीं, ओ मैंने हंजू हंजू कहते ने पंजाबी विच,
1: जी
0: आंसू को हंजू कहते हैं, ते कहते मेरे हंजू आ गए, अखा तो हंजू आ गए, बड़ा बड़ी चंगी बंसरी कहते ने पंजाबी में, कहते बड़ा सुंदर बंसरी बजाया पंचम दा, ओए पंचम ओ कितों लाया ये मुंडे नू, ये
1: गजब।
0: लड़के को कहाँ से लाया। तो उस दिन से, उसके बाद उन्होंने स्टूडियो बनाया सनी, उस स्टूडियो का नाम ही रखा उन्होंने
1: जी
0: सनी,
1: जी
0: सनी सुपर साउंड। मैं जब भी जाता था, धर्म जी कभी शूटिंग से आके थोड़ा रिलैक्स होके पांव फैला के बैठते थे, तो मैं उनसे जाके हाथ मिलाता था, क्योंकि मुझे ये शौक था पहलवानी का थोड़ा,
1: अच्छा
0: तो मुझे
1: हाँ
0: मालूम था ये एक्चुअल रेसलर है,
1: जी
0: और
1: जी
0: एक बार दारा सिंह को उठा लिए थे ये।
1: जी जी और फिल्मों में तो उनकी दहाड़ मशहूर है।
0: हाँ, तो उनके हाथ को जब मैं हाथ मिलाता था, तो लगता था कि मैं कुछ 10 हाथ का ताकत, और की हाल है बोल के जब हाथ पकड़ते थे, तो लगता था हाथ टूट जाएगा मेरा, उस अनुभव के वजह से मैं हाथ मिलाता था।
1: जी जी
0: ये जो पुराने एक्टर लोग थे, यहां तक कि राजेश खन्ना भी,
1: जी
0: जब हमें और जीने की चाहत ना होती मैं बजाया मैंने, तो किशोर दा तो रुला दिए उस गाने को गा के, तो काका हम लोग बोलते हैं राजेश खन्ना को,
1: जी जी
0: तो
1: बिल्कुल।
0: काका उस वक्त भी जाके किशोर दा का पांव छू लिए। अब बताइए, किशोर दा तो उनसे बहुत बड़े थे
1: जी
0: उम्र में, मगर इंडस्ट्री में पांव छूने का इतना रीत नहीं है, वो शास्त्रीय संगीत में है,
1: जी
0: उधर तो बस हाय हेलो हाय दादा नमस्कार प्रणाम करने का चलन कम
1: जी
0: है, मगर काका को मैंने अपने आंख से देखा किशोर दा का पांव छूते हुए,
1: गजब।
0: कि दादा आज आपने जो गाया, मिलन से भी कठिन जुदाई तुम्हारी, हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते।
1: जी
0: तो दादा ने जिस गाने को भी छुआ उसको अमर कर दिया। और मेरा जो एक्सपीरियंस है, जिस प्रोग्राम मैंने पिछले एपिसोड में बताया कि मैंने कह दिया था कि मैं ऑर्केस्ट्रा पार्टी में बजाता नहीं, मगर बजाने में गया, तो चिंगारी जब गा रहे थे तो ऐसे सुर लगाए कि उसके अंत में एक पीस आता है, देखिए।

0: ये रन मैं भूल ही गया।
1: जी, क्या बात है, बहुत सुंदर।
0: और दादा भी दादा, किशोर कुमार, किशोर कुमार, उनके जैसा व्यक्तित्व। बहुत दिन से इंडस्ट्री सोच रहा है कि उनके ऊपर फिल्म बनाई जाए, मगर उनका रोल करेगा कौन?
1: ऐसा जिंदा दिल इंसान,
0: ऐसा जिंदा
1: जिंदा
0: दिल,
1: दिल।
0: ऐसा कॉमेडियन, ऐसा एक्सेंट्रिक
1: बिल्कुल।
0: और ऐसा अनप्रिडिक्टेबल, जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कभी क्या करेगा। जो डाकिया डाक लाया को साइकिल में बैठ के गाया उन्होंने,
1: हरफन
0: वो
1: मौला तभी तो उनको कहा
0: उनको
1: जाता था ना।
0: स्टूडियो में साइकिल लाना पड़ा, बोले साइकिल में जाऊंगा तभी, नहीं तो नहीं गाऊंगा।
1: जी, गजब
0: गजब के आदमी थे। देव
1: बिल्कुल। तो ये तो किशोरदा की बातें हो गई, और देव साहब से भी जुड़ी कुछ बातें।
0: साहब, देव साहब से मुझे मिलवाया था बप्पी दा ने,
1: जी
0: वैसे बप्पी लाड़ी ने, मगर एक फिल्म में मैं पहली बार जो मिला उनसे, वो आनंद आनंद, सुनील आनंद, जो बाद में चल नहीं पाए, तो लॉन्च किया था उसको। और बीती जाए जाए जाए जिंदगानी, ये गाना था किशोरदा का,
1: जी
0: और अभिजीत का डुएट था।

0: और अभिजीत को बहुत आशीर्वाद दे रहे थे किशोरदा,
1: जी जी
0: जैसे बड़ा गुरु होता है।
1: बिल्कुल
0: तो वहां भी देव साहब के, मैं बहुत खुश हूं इस बच्चे की बांसुरी सुनकर, जिंदगी। तो वो हर म्यूजिशियन के पास जाके देव साहब तारीफ करते थे। और उसके बाद देश परदेश, राजू, हम लोग राजू भाई कहते हैं राजेश
1: जी
0: रोशन
1: जी जी
0: को, उनका म्यूजिक था देश परदेश में।
1: जी
0: तो वहां भी मुझे पहचान गए, अरे तू कैसा है, क्या हाल है। तो उनके अंदर जो रोमांसिंग विथ लाइफ, उन्होंने जो किताब लिखी है वो सचमुच पढ़ने लायक किताब है,
1: जी जी
0: रोमांसिंग विथ लाइफ, देवानंद।
1: जी
0: तो देवताओं का आनंद उनके अंदर
1: भीतर
0: था।
1: तभी तो सदाबहार हीरो कहे जाते हैं ना
0: हाँ,
1: आज भी
0: देव साहब
1: लोग।
0: जैसा
1: हाँ
0: कोई नहीं होगा।
1: उस फिल्म में आपकी बांसुरी है ना
0: मेरी
1: फिल्म,
0: बांसुरी बैकग्राउंड में है,
1: हाँ तो उसका कुछ टुकड़ा हमारे श्रोताओं को सुनाएंगे,
0: नहीं
1: याद है
0: वो
1: तो?
0: इम्प्रोवाइज था, पूरा
1: अच्छा
0: पूरा इम्प्रोवाइज। टीना मुनिम को उसमें लॉन्च किया था।
1: जी जी
0: और हाँ, मुझे याद है उसमें एक सीन में देव साहब रोमांस कर रहे हैं, क्योंकि वो उनका उन्होंने उम्र को तो कभी माना ही नहीं, और इसीलिए उन्होंने ये भी कहा था कि मेरा मरने के बाद कोई फोटो ना खींचे। उनके मरने के बाद का कोई फोटो कहीं नहीं है, लंदन में गुजरे।
1: जी जी
0: हाँ, और चुपचाप बोले
1: चले
0: थे
1: गए।
0: कि मेरा अंत्येष्टि कर देना, चुपचाप, कोई भीड़ भाड़ नहीं चाहिए, भगवान के आदमी थे। तो उसमें बजाना था तो चंचल प्रकृति का बजाना था, जैसे
1: जी
0: हम लोग फिल्म में बजाते हैं तो कैसे होता है कि इतना सा पीस भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
1: बिल्कुल

0: इसको ट्रिल बोलते हैं।
1: जी जी
0: और
1: अच्छा
0: फ्लटरिंग ये है। ये फ्लटरिंग है। और डारा डारा डारा डारा डारा डारा डारा डारा डारा डारा डारा, तो हम लोग का तुकु तुकु तुकु तुकु तुकु तुकु तुकु तुकु तुकु। कल्पेश एक बार जरा तुक तुक सुना दीजिए। तुक तुक में गॉड गिफ्टेड है मेरा शिष्य, एक सेकंड उसको सुनिए।
1: जी
0: क्या क्लैरिटी है, देखिए
1: गजब, अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है।
0: जीते रहो कल्पेश। जैसे वो बोलता है कि मैं भाग्यवान हूं ऐसे गुरु मिले, मैं कहता हूं मैं भाग्यवान हूं कि मुझे ऐसा शिष्य मिला।
1: क्या बात है,
0: जो इतना सुरीला।
1: तो ये चंचल प्रकृति की तान थी बांसुरी की।
0: जी, जो देश प्रदेश में मैंने बजाया।
1: जी,
0: तो जब ट्रिल बजाया तो बोले कि उनका वही अंदाज, क्या बात है, क्या बात है
1: जी,
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ट्रिल तो बड़ा अच्छा। एक एक शब्द उनको मालूम था कि इसको ट्रिल कहते हैं। कितना म्यूजिक में वो डीप थे।
1: जी जी,
0: आपको तो मालूम ही है रफी साहब ने कितना रिटेक किया था गाइड के गाने के लिए।
1: जी जी,
0: उसमें
1: जी।
0: दुख नहीं आ रहा था।
1: हाँ, फिर वो रोए थे,
0: रोए थे, फिर
1: बैठकर रोने पर फिर वो इमोशन आया था। जी,
0: मैं चाहूंगा कि हमारी ऑडियंस को आज बेताब का ये शब्बीर कुमार का गाना पर्वतों से आज मैं टकरा गया, ये हमारे ऑडियंस को सुना दीजिए।
1: जी।

शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की सातवीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। बांसुरी संगत कल्पेश सांचला की और तबला संगति अजीत पाठक की। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी किरण बंग, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला प्रस्तुत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सभी सुनने वालों को सविता सिंह का नमस्कार। सबसे पहले ये देशभक्ति रचना लीजिए, सुनिए।

0: ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। नया दौर फिल्म का ये देशभक्ति गीत आपने सुना। मोहम्मद रफी, बलवीर और साथियों की आवाजें थी। साहिर लुधियानवी के बोल थे, ओपी नैयर की तर्ज थी।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए देश पर मिटे।

0: स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला। हम आपको अब सुनवा रहे हैं गुमराह फिल्म का ये गाना, जिसे महेंद्र कपूर और आशा भोसले ने गाया है। शब्दकार साहिल उद्यान भी हैं, संगीतकार रवि।

0: जयमाला कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गुमराह फिल्म का गीत। आवाजें महेंद्र कपूर और आशा भोसले की थी। शब्दकार थे साहिल लुधियानवी और संगीतकार थे रवि।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहाँ कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

बंदिश फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। किशोर कुमार आशा भोसले की आवाजों में आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था। लीजिए अब सुने चंबल की कसम फिल्म का ये गाना, आवाजें लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की।

चंबल की कसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी की थी। साहिल लुधियानवी ने इस गीत को लिखा था खयाम की तर्ज थी। ये विविध भारती है राष्ट्रीय।

सेवा देश की सुरीली धड़कन, जयमाला कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। इस कार्यक्रम में अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किया सम्मानित। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रगति परियोजना का किया शुभारंभ। 20 लाख किसानों को मिलेगा फायदा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल से की मुलाकात। और कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव धार जिले के पीथमपुर में चीनी कंपनी के नए विनिर्माण संयंत्र का करेंगे भूमि पूजन। अब समाचार विस्तार से। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे बड़े सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। श्री मोदी ने कहा कि यह सम्मान करोड़ों भारतवासियों का है और भारत इंडोनेशिया के ऐतिहासिक व आत्मीय संबंधों का प्रतीक है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशियाई संसद को संबोधित करते हुए दोनों देशों के बीच सदियों पुराने संबंधों, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य की साझा दृष्टि का उल्लेख किया।
1: आज के युग में टेक्नोलॉजी की सप्लाई चेन रेजिलियंस बहुत मायने रखती है। क्रिटिकल मिनरल्स और स्टील के क्षेत्र में सप्लाई चेन को अधिक मजबूती देने के लिए भी अहम समझौता हुआ है। हमारी कंपनीज के बीच स्टेनलेस स्टील और रेयर अर्थ मैग्नेट को लेकर साझेदारी की नई शुरुआत हो रही है।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली सरकार के 70 लाख पौधरोपण अभियान का शुभारंभ किया। श्री शाह ने बताया कि 1994 में अधिसूचित 7,784 हेक्टेयर रिज क्षेत्र में अब तक 5,000 हेक्टेयर को वन क्षेत्र घोषित किया जा चुका है और जल्द ही पूरे क्षेत्र को कानूनी सुरक्षा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगले 3 वर्षों में पीपल, बरगद, नीम, गुलर, अर्जुन और जामुन जैसे दीर्घजीवी पेड़ लगाकर रिज को दिल्ली के ग्रीन लंग्स के रूप में विकसित किया जाएगा।
2: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को कपास उत्पादकता मिशन की जानकारी दी। उपराष्ट्रपति ने भारत के कपास क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए मिशन की समग्र कार्ययोजना की सराहना की। उन्होंने प्रति एकड़ कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए स्पष्ट एवं मापने योग्य लक्ष्य तय करने की भी बात कही। वहीं दूसरी तरफ श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि प्रगति कार्यक्रम के तहत 26,000 लघु कृषि उद्यमियों को प्रशिक्षित किया जाएगा, जो एक गांव में 100 से 200 किसानों के साथ मिलकर कृषि कार्य में बदलाव लाने का काम करेंगे।
3: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान, उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके, छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं, जो एक गांव में काम करते हैं और गांव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सौजन्य भेंट की। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच प्रदेश से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल से भी नई दिल्ली में मुलाकात की। इस भेंट में जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित प्रदेश की परियोजनाओं और योजनाओं पर बातचीत हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल धार जिले के पीथमपुर में लियुगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए विनिर्माण संयंत्र का भूमि पूजन करेंगे। ये चीन की अग्रणी निर्माण उपकरण कंपनी का 20 एकड़ में विकसित होने वाला नया संयंत्र है। इस प्रोजेक्ट में करीब 27 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। संयंत्र में प्रारंभिक चरण में प्रतिवर्ष 6,500 एक्सकवेटर के निर्माण की क्षमता विकसित की जाएगी। कंपनी 2008 से पीथमपुर में अपनी विनिर्माण इकाई संचालित कर रही है, जहाँ 3,000 व्हील लोडर और मोटर ग्रेडर का उत्पादन होता है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
4: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रदेश में लंबित प्रमोशन में आरक्षण मामले में आज प्रदेश के उच्च न्यायालय में एक बार फिर सुनवाई टल गई। सुनवाई के दौरान सपाक्स संस्था के अधिवक्ताओं ने मांग की कि जब तक अंतिम फैसला नहीं आता तब तक राज्य में सभी पदोन्नति प्रक्रियाओं पर रोक लगाई जाए। संस्था ने विधानसभा सचिवालय द्वारा हाल ही में जारी 15 पदोन्नति आदेशों पर भी आपत्ति जताते हुए इन्हें न्याय संगत नहीं बताया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया की खंडपीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पष्ट किया कि इसे अधिक लंबा नहीं खींचा जा सकता। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मंत्रालय में प्रदेश की मेडिकल सप्लाई चेन व्यवस्था की कार्ययोजना की समीक्षा की। उन्होंने सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में गुणवत्ता युक्त दवाओं की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आयुक्त स्वास्थ्य धनराजू एस ने बताया कि प्रदेश के सभी संभागीय मुख्यालयों पर 10 वेयर हाउस स्थापित किए जाएंगे जहाँ हाई एंड तकनीक से दवाओं की रियल टाइम ट्रैकिंग की जाएगी और NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में गुणवत्ता परीक्षण के बाद ही दवाओं का वितरण किया जाएगा। प्रदेश में सामान्य प्रशासन विभाग ने 190 तहसीलदार एवं प्रभारी डिप्टी कलेक्टरों को डिप्टी कलेक्टर पद पर नियमित पदोन्नति दे दी है। ये पदोन्नति मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियमों तथा विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर की गई है। प्रदेश के राज्य शिक्षा केंद्र ने कक्षा 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इनमें कक्षा 5वीं में 80.42% और कक्षा 8वीं में 74.16% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। मुख्य वार्षिक परीक्षा और पुनः परीक्षा को मिलाकर कक्षा 5वीं का कुल परिणाम 98.89 और कक्षा 8वीं का 98.19% रहा है। प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावासों में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए अंतिम चरण में 20 जुलाई तक आवेदन किए जा सकते हैं। इस वर्ष से प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी गई है। प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने टीटी नगर स्टेडियम में आगामी एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई करने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों से आज मुलाकात की। मंत्री ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में खिलाड़ियों का चयन पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। एशियन गेम्स के लिए प्रदेश के 22 खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स, शूटिंग और घुड़सवारी सहित विभिन्न खेल विधाओं में क्वालिफाई किया है। 23 जुलाई से 2 अगस्त तक स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ी और टीम सदस्य जूट से तैयार विशेष परिधान पहनेंगे। इसे वस्त्र मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जूट बोर्ड ने जूट विस्कोस मिश्रित कपड़े से विकसित किया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण के तहत इस पहल का उद्देश्य जूट उद्योग को नई पहचान देना और पर्यावरण अनुकूल वस्त्रों को बढ़ावा देना है। मेटा के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने भारत में अपने प्रस्तावित यूजर नेम फीचर को फिलहाल लॉन्च नहीं करने का फैसला किया है। कंपनी ने सरकार को भरोसा दिया है कि अधिकारियों के साथ चल रही बातचीत पूरी होने तक ये फीचर देश में शुरू नहीं किया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। महापौर मालती राय ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत राजधानी भोपाल के 3EME सेंटर में पौधरोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। खंडवा के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर में छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम और विधिक सहायता की जानकारी दी गई। नीमच में कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद्र गहलोत ने सपरिवार संकट मोचन हरकियाखाल मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। सीहोर में RTE के तहत निजी स्कूलों की खाली 1651 सीटों पर तीसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। अशोकनगर कलेक्टर ने साप्ताहिक जनसुनवाई में 408 आवेदकों की समस्याओं को सुनकर समय सीमा में निराकरण के निर्देश दिए। आगरमालवा कलेक्टर ने बाढ़ के खतरे को देखते हुए बाढ़ प्रभावित पुल और रपटों पर ड्रॉप गेट लगाने के निर्देश दिए हैं। बैतूल कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक कर लंबित पेंशन प्रकरणों को प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए। झाबुआ में डायरिया से बचें हर बार अभियान के तहत ग्राम कालापीपल में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जबलपुर के नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के वेटनरी कॉलेज में श्वानों के लिए कृत्रिम आंख लगाने की तकनीक का सफल प्रयोग किया गया है। और भोपाल और राजगढ़ को जोड़ने वाले बैरसिया नरसिंहगढ़ मार्ग पर पार्वती नदी के अस्थायी वैकल्पिक मार्ग से आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। SDM आशुतोष शर्मा ने नदी में बढ़ते जलस्तर और तेज बहाव को देखते हुए ये आपातकालीन आदेश जारी किया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम पॉप एक्सप्रेस।

पॉप एक्सप्रेस इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पिया एल्बम का गाना। आवाज़ स्नेहा शंकर की थी। शायरा अपूर्वा ने इस गाने को लिखा था और अभिजीत श्रीवास्तव ने इस गाने की धुन बनाई थी।

0: शान की आवाज़ में तन्हा दिल एल्बम का गीत आप सुन रहे थे। इस गीत को शान ने ही लिखा था और राम संपत का म्यूजिक था।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: पॉप एक्सप्रेस ये कार्यक्रम इस समय सुन रहे हैं। लीजिए अब सुनिए पार्वती खान की आवाज में नूर देवासी का लिखा गीत, एल्बम का नाम है मिसिंग क्यू।

0: राजन की अम्मा पांचों उंगली घी में और
1: ए राजन के बाबू
0: भगवान तनी बगल में बैठ जाओ, अरे प्रेम से बतियाओ।
1: बात करने का टाइम नहीं है, बात बात में तुम जरूरी बात भूल जाओगे।
0: कौन सी बात?
1: बस रह गए ना वही मिट्टी के माधो। पूछो कैसे?
0: कैसे
1: देखो आहारे बेहारे लज्जा ना कारे।
0: काहे की लज्जा? अरे बेटवा हमारा है, दहेज हम छाती ठोक कर लेंगे।
1: और का, बैल बेचो या बेटा ब्याहो, सौदा पहले पक्का कर लो।
0: मगन रहू चोला, पक्का वादा कम न ज्यादा।
1: आम नींबू और बेटी के बाप का गला दबाओ तभी उसमें रस निकलता है।
0: अरे इसमें भी कोई शक है?
1: तुमने हंस के बात की तो बात नहीं बनेगी।
0: तब का गुस्सा से बात करूं?
1: अरे नहीं जी, तनिक कड़े पढ़कर बात करना।
0: ठीक है, कड़ा रहूंगा अकड़ा रहूंगा।
1: रामपाल को हमारा राजन पसंद आ गया है।
0: अपना राजन किससे कम है भाई, पढ़ा लिखा है, सरकारी नौकरी करता है।
1: ओ देदार है, इकलौता है, लाड़ प्यार में पला है।
0: मगन रहो चोला,
1: ऐसा घर बार मिले तो हम घर द्वार बेचकर बेटी के हाथ पीले कर दें।
0: अरे हमें कौन बेटी के हाथ पीले करने हैं राजन की अम्मा, हमें तो बस अपनी गोट पीली करनी है। हाँ, वैसे मुर्गी मोटी है, सोने का अंडा देती है।
1: और का, रामपाल का सारे जबार में नाम है, वो ईंट भट्टे का मालिक है।
0: मगन रहू चोला, कहो तो भट्टा ही मांग ले।
1: अरे भट्टा मांगोगे तो भट्टा बैठ जाएगा, हमें तो नगद नारायण चाहिए, जेवर चाहिए।
0: अच्छा
1: और
0: सामान चाहिए।
1: वो रामपाल आ रहे हैं, संभल कर बात करना। मैं चली अंदर।
0: आइए आइए रामपाल जी। हाँ भैया, 20,000 का फलदान हो।
2: लेकिन वो
0: 10 थान सोने का जेवर, 4 थान चांदी के जेवर, 5 बनारसी साड़ियाँ और
2: माफ कीजिए, मैं सौदा नहीं संबंध करने आया हूँ।
0: कैसा सौदा? आपका सिर्फ गाल बजा के बेटी ब्याहना चाहते?
2: मैंने ये तो नहीं कहा, पान फूल जो भी पन पड़ेगा वो।
0: भैया पान फूल तो देवता प्रसन्न होते हैं,
2: दहेज ही सब कुछ नहीं होता। भैया मेरी बेटी गुनों की खान है, अपने मुँह से क्या कहना, आप राजन बाबू से ही पूछ लीजिए।
0: राजन से? वो आपकी लड़की को कैसे जानता है?
2: दोनों कॉलेज में साथ साथ पढ़ते हैं।
0: मगन रहू चोला, भैया राजन को लड़की पसंद है तो हमको लेन देन पसंद है
2: जी।
0: आप हमारा दहेज दे दीजिए, लड़का आपका हो गया।
2: दहेज तो मेरे बस का नहीं है।
0: वाह वाह, दहेज आपके बस का नहीं है? फसल मैंने बोई, उसे जतन से पाला पोसा, जब फसल तैयार हो गई तो आप मुफ्त में हथियाने आ गए।
2: भाई साहब आप मेरी बात।
0: जाइए जाइए, कोई दूसरा दरवाजा खटखटाइए, दहेज का भाव पता चलेगा तब लौट कर आइएगा। हाँ मगन रहू चोला, भगवान तनी अपने बेटवा के बात सुन ले।
1: का है राजन?
0: लाडले अब ब्याह नहीं करेंगे। हाँ
1: काहे हो?
0: हमने रामपाल से सीधे मुँह बात नहीं की।
1: अच्छा, का हम लड़की वाले हैं जो सीधे मुँह बात करें?
0: अरे जिसकी 1000 गरज हो हमसे आकर बात करे। हाँ
1: कहने को भट्टे वाले और दिल गोरसी के बराबर भी नहीं।
3: अम्मा मैं भट्टे के साथ ब्याह नहीं करूँगा, मेरी पसंद भी तो कोई चीज है।
0: मगन रहू चोला, सुनती हो राजन की अम्मा, अब अपने घर में भी कलयुग आ गया है।
4: हाँ भाई कलयुग को छोड़ो, तुम्हारे भाई कलयुग को छोड़ो, ये बताओ कि भाई तुम्हारी दुकान पर खाद कब आएगी भगवान के फसल?
0: अरे आइए आइए मुंशी जी। हाँ। खाद सब गोबर हो गई।
4: अरे अम्मा भाई क्या कहते हो, गोबर की खाद होती है, खाद का गोबर कैसे हो गया भगवान के फसल से? है बोलो।
1: हमारे तो कर्म फूट गए,
4: भाग फूट
1: गए। बात काटना
4: सीखे राजन, ये मैं क्या सुन रहा हूँ भगवान के फसल से?
3: मुंशी जी हाँ, मैं अपनी शादी के बारे में आग बंद नहीं कर सकता हूँ।
0: हमने क्या आंख बंद करके शादी ब्याह?
4: भाई देखो दुलारे भाई देखो, हमारे तुम्हारे ब्याह का जमाना गया, अब शादी ब्याह में लड़के लड़के की जो पसंद है ना वही पहली होती है भगवान के फजल से।
1: राजन के बाबू।
0: हाँ भगवान।
1: सुना तुमने, राजन अंग्रेजी ब्याह करेगा।
0: मुंड हूँ आँख का तो हूँ को नहीं, भैया हम तो अब गांव से चले।
4: अब भाई कहाँ चले भगवान के फजल से, कहाँ चले?
0: अब हम काशी बास करेंगे मुंशी जी।
1: राजन के बाबू हमको भी साथ लेते।
4: अरे भाई नहीं नहीं नहीं नहीं, देखो भाई दुलारे भाई, दुलारे भाई हाँ देखो भाई, मैं कहता हूँ कि तिल को तार बनाने से क्या फायदा है, पहले भाई मुझे राजन से बात कर लेने दो। है हो सकता है भाई कि उसके भी कुछ अरमान हो भगवान के फजल से।
1: हाँ। आप बात कीजिए।
4: हाँ
1: हमें अब राजन से क्या लेना देना।
4: अच्छा भाई राजन आओ बेटे आओ भाई, देखे तुम्हारी शिकायत भी सुन ले भगवान के फजल से।

0: कहिए रामपाल जी, दहेज का बाजार देखिया है?
1: जी हाँ देखाया, अब तो इसी घर नैया पार लगेगी।
0: अच्छा हुआ ऊंट ने पहाड़ देख लिया।
1: भाई साहब आपकी शरण आया हूँ, वहाँ गए की लाज रखिए।
0: अरे आप मेरी लाज रखिए, मैं आपकी रखूंगा।
1: मुझे नकदी और जेवर देना मंजूर है।
0: मगन रहो चोला, सामान भी देना होगा आपको, बिरादरी ऊपर बेटा दे रहा हूँ।
1: सामान भी बता दीजिए।
0: मोटरसाइकिल तो आप जरूर देंगे।
1: मोटरसाइकिल?
0: और क्या, खुद मोटरसाइकिल पर चढ़ेंगे और आपका दामाद पैदल चलेगा?
1: जी नहीं, मैं पैदल चलूंगा, मुझे डॉक्टरों ने पैदल चलने को कहा है।
0: मेरा राजन शहर जाने में तकलीफ होती थी, स्टेशन जाओ टिकट खरीदो तब गाड़ी पर बैठो।
1: जी हाँ मैं समझता हूँ, और कोई सेवा हो तो?
0: और का, अरे वही मेज कुर्सी बर्तन सर्तन,
1: फर्नीचर स्टेनलेस सेट बर्तन क्राकरी सब दूंगा। और बोलिए।
0: और मगन रहो छोला, अरे वो रेडियो जिसमें फोटो आती है उसको क्या कहते हैं?
1: टेलीविजन।
0: हाँ हाँ वही वही वही दीजिएगा।
1: वो भी दूंगा, अब तो ओखली में सिर दे ही दिया है भैया।
0: दिल चौड़ा रखिए भाई साहब, हमें तो ऐसा ही समझी चाहिए, जो मुंह से निकाला सो हाजिर है।
1: तो मैं अगले इतवार को बरिच्छा देने आ जाऊं?
0: आ जाइएगा, शुभ काम में देर का है कि? हाँ
2: अम्मा पेट में बड़ा दर्द है।
3: कैसा दर्द है बेटवा?
2: लगता है पेट में घसियारिन घास छील रही
0: है। क्या होगा, सब गुड़ गोबर हो गया।
2: मुंशी जी अभी तक नहीं आए?
3: बुलवाया है, आते ही होंगे।
0: कल ही परीक्षा है और
4: नहीं होगा। क्या हो गया, क्या हो गया राजन? कहां दर्द है भगवान के फजल से?
2: मुंशी जी अब मैं नहीं बचूंगा।
4: अरे भाई नहीं नहीं नहीं नहीं
3: भगवान, ऐसी बात ना बोलो बेटा।
2: अम्मा पानी।
3: बेटा ये लो पानी, हे शंकर भोले हे गंगा माई, हमारे राजन को ठीक कर दो, हम नरियर चुनरी चढ़ावेंगे।
0: गई भैंस पानी में।
4: अरे बुला रे भाई, भैंस को जाने दो, बेटे की फिक्र करो भगवान के फजल से।
2: मुंशी जी गांव के डॉक्टर की दवा नहीं लगती, मर्ज उनकी पकड़ में नहीं आया।
4: अरे भाई देखो ना, मर्ज भी तो नए नए चल गए हैं भगवान के फजल से।
2: सब बेकार है, अब कुछ नहीं हो सकता मुंशी जी।
3: जी छोटा मत करो बेटा, हम तुम्हें शहर के बड़े डॉक्टर को दिखा देंगे, तो हम तुम्हारे बराबर रुपया।
0: भगवान हम चले गए तो परीक्षा का सरजाम कैसे होगा?
2: मुंशी जी इन्हें परीक्षा की तैयारी करने दीजिए, आप मुझे डॉक्टर को दिखा लाइए।
4: भाई ठीक है।
0: मुंशी जी आप हमारी मदद कर दीजिए।
4: भाई देखो मदद से इनकार नहीं, लेकिन भाई मेरे खेत पर भी बहुत काम पड़ा हुआ है भगवान के फजल से।
3: सब काम छोड़ दीजिए, अपने राजन की फिक्र कीजिए।
4: अजी भाई देखो बहू, तुम कहती हो भाई तो जाना ही पड़ेगा। हाँ
0: मुंशी जी कल तक लौट आइएगा।
4: ठीक है ठीक है,
0: कल परीक्षा देने आवेंगे।
4: हाँ देखो भाई दुलारे भाई, मर्ज पर मेरा कोई काबू नहीं है। हाँ डॉक्टर कहेगा तो राजन कल ही आ जाएगा भगवान के फजल से।
1: समधी जी राजन बाबू कहाँ है, दिखाई नहीं पड़ते?
0: शहर गए हैं भाई साहब सामान खरीदने, आते ही होंगे।
1: हमें जल्दी परीक्षा देकर लौटना है।
0: शुभ काम में देर काहे की, बस राजन को आ जाने दीजिए।
4: भाई सोचा था क्या आए, हो गया।
0: अच्छा मुंशी जी आ गए हैं।
4: हां भाई यहां तो होने वाले समधी जी भी तशरीफ रख रहे हैं भगवान के फजल से।
1: मुंशी जी मैं परीक्षा के लिए हाजिर हूं।
4: जी भाई बड़े मौके से आए हैं आप।
0: राजन कहां है?
4: जी भाई राजन भी आ जाएगा, जरा तुम अंदर तो आना मेरे साथ। हां भाई अंदर तो आना।
0: मुंशी जी आप ही क्या कह रहे हैं?
3: हमारा राजन बिटिया हो जाएगा।
4: यकीनन हो जाएगा, डॉक्टर ने यही बताया है भगवान के फजल से।
0: इसीलिए उसके पेट में दर्द था?
4: हाँ भाई इसीलिए उसका मर्ज पकड़ में नहीं आ रहा था।
3: हे भगवान, मुंशी चाचा अब क्या होगा?
4: अजी भाई देखो अब एक छोटा सा ऑपरेशन होगा भगवान के फजल से।
0: ऑपरेशन?
4: और ऑपरेशन के बाद जो दर्द है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और जो राजन है ना बस रजनी हो जाएगा भगवान के फजल से।
3: हे शंकर भोले तुम ही बताओ मैं क्या करूं?
4: अजी भाई मैं बताता हूँ, तुम राजन के लिए एक साड़ी और ब्लाउज निकाल दो फौरन, उसे अस्पताल में जरूरत पड़ेगी भगवान के फजल से।
0: एक साड़ी ब्लाउज से क्या होगा मुंशी जी, गठरी भर दहेज कहाँ से आएगा?
4: भाई दुलारे भाई डॉक्टर दहेज का नहीं, वो सिर्फ मरीज का इलाज कर सकता है।
3: हम ऑपरेशन न कराएं तब क्या होगा?
4: तब अजी भाई तब राजन की जान को खतरा है भगवान के फजल से।
0: इस पार कुआं उस पार खाई, बोलो भगवान किस में कूदोगी?
3: राजन के बाबू तुम खामोश रहो।
0: अरे तो हमने क्या कर दिया भाई, ये कलयुग है कलयुग, भगवान की टकसाल में जाली सिक्के ढलने लगे।
4: अजी भाई देखो देखो, तुम लोग आपस में चोंच मत लड़ाओ। हाँ, रामपाल जी जो है ना, वो बैठक में बैठे हुए हैं। पहले परीक्षा का मसला तय करो भगवान के फजल से।
3: हाय, अब का तय करें, सोना तो लोहा हो गया।
4: अरे नहीं नहीं, ऐसी बातें मत कहो बहू। रामपाल का लड़का भी तो शादी के काबिल है।
0: है तो है।
4: हाँ, वो शादी करना चाहते हैं तो करे।
3: कैसे?
4: अरे भाई, तुम लड़के के बजाय लड़की ब्याह देना। जवान लड़की भाई कब तक घर में बैठाए रहोगे भगवान के फजल से? बोलो,
0: हम नगद नारायण कहाँ से लाएंगे?
4: अरे भाई देखो ना, बात करने में क्या हर्ज है? रामपाल आखिर रिश्ते के लिए ही तो आए हैं भगवान के फजल से।
1: मुंशी जी, आप उल्टी गंगा बहा रहे हैं।
4: अमा भाई, इसमें हर्ज क्या है? बोलो बोलो बोलो।
1: कुछ नहीं है, लेकिन दहेज भरपूर मिलना चाहिए।
4: गरीब भाई, गरीब आदमी है ये। देखो भाई, दुलारे भाई पर दया कीजिए और अपनी फरमाइश बताइए।
1: ज्यादा कुछ नहीं मुंशी जी, बस यही कोई 20,000 का फलदान होगा।
0: 20,000?
1: जी हाँ, और 10 थान सोने का जेवर, 4 थान चांदी के जेवर और 5 बनारसी साड़ियाँ।
0: रामपाल जी, हम दीन हैं, आप दीन बंधु हैं, हमसे जो पान फूल बन पड़ेगा।
1: कैसी बात करते हैं भाई साहब, पान फूल से सिर्फ देवता प्रसन्न होते
4: हैं। भाई देखिए, बात ये है कि दुलारे भाई गरीब हैं, हाँ, लेकिन इनका खानदान बहुत
1: ठीक है। हाँ। गरीब है तो मैं इनसे टेलीविजन नहीं लूंगा, लेकिन मोटरसाइकिल तो देनी ही पड़ेगी।
0: मोटरसाइकिल? वो तो आपको भगवान ने दिया है। मैं सिर्फ साइकिल दे सकता हूँ।
1: साइकिल अपनी अपने पास रखिए, मैं आपके घर शादी नहीं करूंगा।
4: अजी भाई, रामपाल जी, दुलारे भाई का अरमान रखिए। हाँ, बेचारे वैसे भी कुदरत के कारखाने से ठगे हुए हैं भगवान के फजल से। हाँ।
1: मुंशी जी, दहेज की मांग पहले दुलारे भाई ने की थी।
4: हाँ।
1: इसमें मेरी क्या गलती?
4: बात तो भाई ठीक है भाई, दुलारे भाई तुम दहेज ले रहे थे तो देने में क्या हर्ज भगवान के फजल से?
0: मुंशी जी बोलो। हाँ, मेरी तो मत मारी गई थी, मुझसे भूल हुई। भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ मुंशी जी, ब्याह का कोई सौदा नहीं है, दहेज लेना पाप है।
4: बोलिए भाई रामपाल जी, अब आप क्या कहते हैं भगवान के फजल से?
1: ठीक है मुंशी जी।
4: हाँ।
1: मैं भी दहेज नहीं लूंगा।
0: तो आप मेरी बेटी से अपना बेटा ब्याहेंगे?
1: जी नहीं, मैं आपके बेटे से अपनी बेटी ब्याहूंगा।
0: बेटा?
4: हाँ भाई जी। हाँ दुलारे भाई, आपके बेटे ने फिलहाल बेटी बनने का इरादा छोड़ दिया है।
0: मुंशी जी, आप सच कहते हैं?
4: अरे और क्या, मैं झूठ कहता हूँ भाई? यकीन ना हो तो देख आइए, राजन मेरे घर में बैठा है मुंशियान के पास।
0: अरे भगवान, सुनती हो, अपना राजन रजनी नहीं बनेगा।
4: अरे भाई सुनो तो, चल कहाँ दिए दुलारे भाई?
0: राजन की अम्मा को मना कर दो मुंशी जी।
4: हाँ।
0: वो बक्से से साड़ी ब्लाउज निकाल रहे
4: हैं। अरे भाई साड़ी की फिक्र छोड़ो, पहले परीक्षा तो लेते जाओ भगवान के फजल से।
0: परीक्षा में बाद में लूंगा, पहले एक भिक्षा दीजिए।
4: अरे भाई मांग लो, क्या मांगते हो भगवान के फजल से बोलो?
0: ये बताइए, राजन को दर्द नहीं था तो इतना बड़ा झूठ ये सब?
1: राजन बाबू को दर्द था।
0: कैसा दर्द था?
4: अजय भाई, दर्द ये था कि वो रामपाल की बेटी के बगैर जी नहीं सकता था।
1: दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं।
0: दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हम रोकने वाले कौन है भैया? मियाँ बीबी राजी तो कहा करें?
4: ये बात तुम अब कह रहे हो दुलारे भाई, पहले तो दहेज न मिलने पर काशीवास करने पर आमादा थे भगवान के फजल से।
1: मुंशी जी ने आपको सही राह पर लाने के लिए मुझसे मिलकर नाटक किया। मैं आपसे माफी चाहता हूँ।
0: कोई बात नहीं है समधी जी। अरे घास गिरी तो गिरी, पर गिरी बहुत मिट्टी।
4: दुलारे भाई, तुमने दहेज का दूसरा पहलू देख लिया भाई, ये ठीक ही राह। अब कभी मत भूलना कि दहेज के दलदल में फंसने वालों का जमाना अब नहीं रहा भगवान के फजल से। यहाँ नहीं।
5: मुंशी इतवारी लाल। अभी आपने नरेश मिश्रा की लिखी ये झलकी सुनी। निर्देशक थे विनोद रस्तोगी। आकाशवाणी इलाहाबाद केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

अरिजीत सिंह और साथियों की आवाज़ों में यारियां टू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे यो यो हनी सिंह। अब आइए सुनते हैं फिर हेरा फेरी फिल्म का ये गीत।

0: चित्रलोक कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे फिर हेरा फेरी फिल्म का गीत। हिमेश रेशमिया की आवाज थी, समीर के बोल थे, हिमेश रेशमिया का संगीत था।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहाँ कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

मलयाल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे ऋत्विक तलाशिक शिलकर और साथियों की आवाज़ों में। प्रशांत इंगोले ने इस गीत को लिखा था और संजय लीला भंसाली ने इस गीत को संगीत से संवारा था। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, चित्रलोक कार्यक्रम में। अब वक्त है कि एक छोटा सा ब्रेक लिया जाए। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे।

0: रूला और सोनू निगम की आवाज़ों में सोल्जर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। समीर ने इस गीत को लिखा था, अन्नू मलिक ने इस गीत की धुन बनाई थी।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
3: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
2: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
4: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
2: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
4: तेरा जवाब नहीं,
2: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
4: प्यार का राग सुनो रे।
2: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
4: सदा रही है सदा रहेगी।
2: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

दिल्ली सिक्स फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। रेखा भारद्वाज और साथियों की आवाजें थी। प्रसून जोशी ने इस गीत को लिखा था, A.R. रहमान की तर्ज थी। इसी गाने के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए सविता सिंह को। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के संसद को संबोधित किया, कहा भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया, कहा इससे आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया, कहा 6000 हेक्टेयर से अधिक हरित रिज क्षेत्र

0: को वन क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता। वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग का अगले 4 दिन में उत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। और नॉटिंघम में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के 3रे मैच में आज भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।
1: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, एआई और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदुर तक फैली हुई है।
1: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदुर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक विकास को गति देने में भारतीय अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत 1 अरब से अधिक लोगों के सपनों को साकार करने वाला राष्ट्र है और ऊर्जा तथा कनेक्टिविटी से लेकर सेमीकंडक्टर विनिर्माण तक कई क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ओर भारत की यात्रा न केवल इंडोनेशिया बल्कि पूरे आसियान क्षेत्र के लिए प्रेरक शक्ति बन रही है। उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया विकास के लिए एक समान दृष्टिकोण साझा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मात्र 20 रुपए प्रति माह से शुरू होने वाली किफायती बीमा योजनाओं जैसी पहलों ने वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी है। वहीं यूपीआई और एक्सप्रेसवे के तेज विस्तार ने भारत की अर्थव्यवस्था को रूपांतरित किया है और लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडोनेशिया द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा दोनों देशों के बीच घनिष्ठ मित्रता का प्रतीक है।
1: आज सुबह ही मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला। ये 140 करोड़ भारतीयों का यश है। ये भारतीय समुदाय के आप सभी साथियों का सम्मान है। और सबसे बड़ी बात, ये पुरस्कार इंडोनेशिया और भारत की घनिष्ठ मित्रता का एक और प्रतीक है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री

0: मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी।
1: बेंगलुरु IIM वैश्विक स्तर पे ग्लोबल स्टैंडर्ड में QS रैंकिंग में 29th पोजीशन पे अभी है। एशिया की सूची में ये 5th नंबर पे है। इस प्रकार के एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को, भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विकरण करने में, इंटरनेशनलाइज करने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है, जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।
2: श्री गडकरी ने कहा कि वैकल्पिक ईंधनों के अधिक उपयोग से प्रदूषण कम होगा, ईंधन आयात में कमी आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रमुख परियोजनाएं देश में संपर्क व्यवस्था को मजबूत कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने जम्मू श्रीनगर मार्ग पर बन रही 36 सुरंगें, केदारनाथ रोडवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे देश के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिल रही है। श्री गडकरी ने यह भी कहा कि राजनीति सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का माध्यम होना चाहिए। शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने अगले 4 वर्षों में 6300 हेक्टेयर हरित रिज क्षेत्र को पूर्णतः वन भूमि में विकसित करने और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है।
3: रिज के अंदर 70 से ज्यादा तालाब भी होंगे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी होंगे और यहाँ पर जितनी भी हमारी आर्कियोलॉजी की संरचनाएं हैं उसको भी हम सुरक्षित करेंगे।
0: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में 129 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू हो गए हैं। गृह मंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांव और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया।
4: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान, उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके, छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं जो एक गाँव में काम करते हैं और गाँव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
0: आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं।
5: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह योजना पश्चिम एशिया की भू राजनीतिक स्थिति से प्रभावित व्यवसायों को तेजी से और बड़े पैमाने पर सहायता प्रदान कर रही है। मंत्रालय ने बताया कि योजना ऋण देने वाली संस्थाओं को उधारकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण देने के लिए जोखिम कम करने हेतु बनाई गई है। इससे व्यवसायों को नकदी प्रवाह में व्यवधान से उबरने और संचालन जारी रखने में मदद मिलती है। इसने वित्तीय संस्थानों को अधिक आत्मविश्वास के साथ ऋण देने में भी सक्षम बनाया है। इससे MSME के लिए अतिरिक्त ऋणों पर 100% और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों

0: के लिए 90% गारंटी कवरेज प्रदान करके जरूरतमंद क्षेत्रों तक तरलता पहुंच सुनिश्चित होगी। वित्तीय सेवा विभाग ने योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में एक अभियान भी चलाया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में प्रारंभिक और माध्यमिक स्तरों पर स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले बच्चों की दर में पिछले 3 वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने आज देश में स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना प्रणाली एजुकेशन प्लस 2025-26 की रिपोर्ट जारी की। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने सिंगारेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड को ताड़ीचेरला 2 कोयला ब्लॉक के सीधे आवंटन की घोषणा की। सहकारी संघवाद के महत्व पर उन्होंने कहा कि सिंगारेनी की वित्तीय स्थिति को सुधारने, बढ़ते कर्ज का सामना करने और घटते कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने इस निर्णय को मंजूरी दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। वायनाड के मेपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। एक रिपोर्ट।
2: केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा है कि वायनाड जिले में भूस्खलन स्थल पर बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 20 जून को ही सुरंग बनाने के काम के दौरान जमा हुई मिट्टी को हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन ठेकेदारों ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया। घटनास्थल के लिए रवाना हुए राज्य के मंत्रियों ने कहा कि अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता भूस्खलन में फंसे लोगों को बचाना है। इस बीच मौसम विभाग ने आज वायनाड और पड़ोसी जिले कोझिकोड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कन्नूर और कासरगोड जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 4 अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पालरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: महाराष्ट्र में आज भी मॉनसून की तेज वर्षा के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़, भूस्खलन और यातायात बाधित रहा।
3: नासिक के घाट इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। रायगढ़ जिले में भी भारी बारिश जारी है, जिससे मुंबई गोवा हाईवे के कई हिस्सों में पानी भर गया है। हालात से निपटने के लिए NHAI ने हाईवे पर क्विक एक्शन टीम तैनात की है। घाट क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से नदियों और बांधों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने अगले आदेश तक मानसून टूरिज्म, ट्रैकिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स पर रोक लगा दी है। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम मानसून आज गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंघम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया। कहा, भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता। वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम प्रस्तुत है आपके लिए। सभी सुनने वालों को सविता सिंह का नमस्कार।

काला बाजार फिल्म का गीत गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे। शब्दकार थे शैलेंद्र और संगीतकार थे एसडी बर्मन। आपके लिए कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ ये गीत, जिसे संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम है पत्थर के सनम।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत अभी आप सुन रहे थे। संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम था पत्थर के सनम। लीजिए अब सुनिए ये गाना। सन ऑफ इंडिया फिल्म का ये गीत आप

लता मंगेशकर और सखियों के सुरों में शकील बदायनी का लिखा हुआ ये गीत अभी आपने सुना। इस गीत को संगीत से संवारा था नौशाद ने और फिल्म का नाम था सन ऑफ इंडिया। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर महेंद्र कपूर की आवाजों में बड़ा आदमी फिल्म का ये गाना। रचना प्रेम धवन की है, संगीतकार हैं चित्रगुप्त।

0: कोई प्यार की देखे जादूगरी मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में कोहिनूर फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। शकील बदायनी ने इसे लिखा था और नौशाद ने इस गीत की धुन बनाई थी।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ

सुजाता फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा था, ST वर्मन ने धुन बनाई थी। इस गीत के पहले आपने किशोर कुमार की आवाज़ में एक गीत सुना था जिसे हमने लिया था फिल्म एक राज से। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार थे चित्रगुप्त। और अब सुजाता फिल्म के इसी गाने के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम से दीजिए इजाज़त सविता सिंह को। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हो, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आज मोरी अंगना।
1: आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक बहुत ही वरिष्ठ और अलबेले संगीतकार की। आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम नमन कर रहे हैं संगीतकार अनिल बिस्वास को।
2: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
1: अनिल बिस्वास का जन्म 7 जुलाई 1914 को बारीसाल ईस्ट बंगाल में हुआ था। आज ये जगह बांग्लादेश का हिस्सा है। अनिल बिस्वास के पिता थे जेसी बिस्वास। बहुत कम उम्र में बालक अनिल को संगीत का चस्का लग गया था। दिन रात वो संगीत के सुरों में खोए रहते थे। इसके अलावा एक और क्रांति हुई थी और वो ये कि बालक अनिल स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। वे जुगांतर पार्टी का हिस्सा बन गए थे और भारत के स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए 14 बरस की उम्र में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। जब वो जेल से रिहा हुए तो घर से केवल 5 रुपए लेकर कोलकाता भाग निकले। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था। कोलकाता आने के बाद उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। छोटे मोटे काम उन्होंने किए और आगे चलकर उनकी मुलाकात सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित पन्नालाल घोष से हुई। आगे चलकर अनिल बिस्वास की बहन पारुल घोष का विवाह पन्नालाल घोष के साथ हुआ था। यही वो दिन थे जब अनिल बिस्वास रंगमहल थिएटर से जुड़ गए। यहाँ वो एक्टिंग करते, गाने गाते और सहायक संगीत निर्देशक के तौर पर काम भी किया करते थे। इसके कुछ बरस बाद काजी नजरुल इस्लाम के लिए उन्होंने हिंदुस्तान रिकॉर्ड कंपनी की ओर से एक रिकॉर्ड भी तैयार किया था और इस तरह अनिल बिस्वास का खूब नाम हो गया था। फिर आया साल 1935। अनिल बिस्वास कोलकाता से मुंबई की ओर रवाना हो गए। मुंबई में अनिल बिस्वास ने फिल्म धर्म की देवी में संगीत दिया। सन 1936 में वो

सागर मूवी टोन से जुड़ गए। ये सागर मूवी टोन रामानंद सागर के सागर आर्ट से बिल्कुल अलग है और इसके मालिक हुआ करते थे चिमन लाल देसाई। यहां अनिल बिस्वास ने कई फिल्मों में संगीत दिया, जैसे डेक्कन क्वीन, हम तुम और वो, एक ही रास्ता और वतन वगैरह। उस जमाने में अनिल बिस्वास का काम अच्छी तरह चल निकला था और इसकी बानगी कुछ इस तरह से कि साल 1940 तक आते आते अनिल दा ने 26 फिल्मों में संगीत दे दिया था। इनमें से कुछ हैं मनमोहन, एक ही रास्ता, बहन, औरत, जागीरदार और अली बाबा। इन्हीं दिनों में उन्होंने सुरेंद्र और वहीदन बाई से गवाया फिल्म अली बाबा में।

सन 1940 में आई फिल्म अली बाबा का ये गाना आपने सुना सुरेंद्र और वहीदन बाई की आवाजों में। इस गाने को लिखा था आह सीतापुरी ने। इसके बाद आया साल 1943। ये वो दौर था जब अनिल बिस्वास हिमांशु रॉय और देविका रानी की बॉम्बे टॉकीज से जुड़ गए थे। सन 1943 में उन्होंने फिल्म किस्मत में संगीत दिया। अशोक कुमार और मुमताज शांति के अभिनय वाली ये फिल्म कोलकाता के रॉक्सी सिनेमा में 3 साल और 8 महीने चली थी और आगे चलकर फिल्म शोले ने इसका रिकॉर्ड तोड़ा था। फिल्म किस्मत के गाने बेहद लोकप्रिय हुए थे।

0: हिंदुस्तान हमारा है, पूरा जो है दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है।
1: सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। पूरा देश अंग्रेजों को देश से खदेड़ने के लिए तत्पर था। फिल्म किस्मत का ये गाना युवाओं का एंथम बन गया था। ये गाना युवाओं की प्रेरणा था। जहां कहीं भी प्रभात फेरियां या जुलूस निकलते, नौजवान गाते, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। अंग्रेज सरकार इतनी खौफजदा और नाराज हो गई थी कि उन्होंने कवि प्रदीप और अनिल बिस्वास के नाम के वारंट तक निकाल दिए थे और इन दोनों कलाकारों को भूमिगत होना पड़ा था। फिल्म किस्मत में सिर्फ यही एक हिट गाना नहीं था। इस फिल्म का ये गाना सुनिए।

0: सो रहा है शोरगुल न मचा धीरे धीरे।
1: इस फिल्म में अनिल बिस्वास की बहन और सुप्रसिद्ध गायिका पारुल घोष ने ये मीठा गाना गाया था।

अनिल बिस्वास की खासियत ये है कि उन्होंने शास्त्रीयता का दामन कभी नहीं छोड़ा। उनके संगीत में आपको अतिरिक्त वाद्य बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ेंगे। जिन वाद्यों की जरूरत है बस वही वाद्य उनके संगीत में होते हैं। कभी पन्नालाल घोष की बांसुरी सुनाई देती है तो कभी पंडित राम नारायण का सारंगी। बड़े बड़े गुणी और माहिर शास्त्रीय संगीतज्ञों ने उनके लिए साज बजाए थे। महबूब खान के लिए अनिल बिस्वास ने 3 फिल्मों में संगीत दिया था। सन 1940 में आई थी औरत। आगे चलकर इसी फिल्म को दोबारा महबूब खान ने मदर इंडिया के नाम से बनाया था, लेकिन तब संगीत नौशाद का था। अनिल बिस्वास ने महबूब खान की अगली फिल्म में संगीत दिया, सन 1941 में आई बहन, और सन 1942 में फिल्म रोटी आई जो अनिल बिस्वास के संगीत से सजी थी। फिल्म रोटी में अनिल बिस्वास ने अख्तरी बाई फैजाबादी यानी बेगम अख्तर से गाने गवाए थे। सुनते हैं ये गाना।

अनिल विश्वास एक ऐसे संगीतकार हैं जिन्होंने कई गायकों के करियर को सहारा दिया, उन्हें पहला मौका दिया या उन्हें कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ाया। सुप्रसिद्ध गायक तलत महमूद को पहला ब्रेक सन 1949 में फिल्म आरजू में उन्होंने दिया था।

दरअसल तलत महमूद और अनिल बिस्वास से जुड़ी हुई एक घटना है। फिल्म आरजू के गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी और तलत महमूद बहुत ज्यादा दबाव और तनाव में थे, इसलिए अपनी आवाज की मशहूर लर्जिश के बिना गा रहे थे। उनकी आवाज का वो कंपन गायब था। अनिल बिस्वास ने तलत महमूद को डांटते हुए कहा था कि तुम्हारी आवाज का ये कंपन ही तुम्हारी खासियत है और इसे तुम्हें कभी छोड़ना नहीं है। फिल्म आरजू के जरिए तलत महमूद की गायकी की कामयाबी की यात्रा शुरू होती है। इसके बाद तलत महमूद ने अनिल बिस्वास के लिए कई गाने गाए।

वैसे इसके अलावा अनिल बिस्वास ने कई फिल्मों में गाने गाए हैं। विविध भारती के गानों के खजाने से फिल्म सौतेला भाई के इस गाने का अंश सुनिए, जिसमें अनिल बिस्वास मन्ना डे के साथ गाना गा रहे हैं। ऐसे कभरोसा

1945 में फिल्म पहली नजर में मुकेश से उन्होंने ये गाना गवाया। इसे लिखा था आह सीतापुरी ने। मुकेश को कुंदनलाल सहगल की छाया से बाहर लाने में और अपनी आवाज का एक मुहावरा खोजने में बहुत मदद की थी अनिल बिस्वास ने। सुनते हैं पहली नजर फिल्म का ये गाना।

सन 1948 में फिल्म अनोखा प्यार के गानों की रिकॉर्डिंग के दौरान अनिल बिस्वास की मुलाकात मीना कपूर से हुई। सन 1959 में उन्होंने मीना कपूर से शादी कर ली।

लता मंगेशकर ने अपने कई इंटरव्यूज में ये कहा है कि अनिल बिस्वास ने उन्हें ये सिखाया कि गाना गाते हुए सांस का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से छिपकर सांस ली जाती है कि सुनने वाले को पता भी नहीं चलता गायक ने कब सांस ली और कब सांस छोड़ी। सन 1949 में जब लता मंगेशकर कामयाबी के पथ पर आगे बढ़ रही थी, अनिल बिस्वास ने फिल्म लाडली का ये गाना गवाया।

दिलचस्प बात यह है कि फिल्म फरेब के एक गाने की रिकॉर्डिंग से पहले अनिल विश्वास के घर पर दिलीप कुमार और अशोक कुमार किसी कारण से बैठे थे। महफिल चल रही थी। अनिल विश्वास ने अपने हारमोनियम पर ये गाना इन दोनों कलाकारों को गाकर सुनाया और पूछा कि इस गाने में महिला स्वर कौन होना चाहिए। दोनों ने तपाक से जवाब दिया कि ये गाना तो लता ही गा सकती हैं। जब पुरुष स्वर की बात आई तो दिलीप कुमार का कहना था कि ये गाना तलत महमूद से गवाया जाना चाहिए, लेकिन अनिल विश्वास ने कहा मैं ये गाना किशोर कुमार से गवा रहा हूं। दिलीप कुमार इस बात से सहमत नहीं थे, लेकिन अनिल विश्वास का कन्विक्शन और उनकी पहचान देखिए कि किशोर कुमार की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गाना कितना खिला।

मुकेश को न केवल अनिल बिस्वास ने पहला मौका दिया बल्कि उनके करियर के कुछ यादगार गाने हैं अनिल बिस्वास के नाम। फिल्म आराम का ये गाना।

अब सुरैया की बात कर ली जाए। सुरैया ने अनिल बिस्वास के लिए दो मशहूर गाने गाए हैं। एक है फिल्म जीत का ये गाना, जिसे लिखा प्रेम धवन ने।

हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि गोपाल सिंह नेपाली का लिखा गीत फिल्म गजरे, आवाज सुरैया की, साल 1948।

सन 1965 में फिल्म छोटी छोटी बातें का संगीत देने के बाद मुंबई से अनिल बिस्वास का मन उचाट हो गया था। वो दिल्ली चले आए और दिल्ली में आकाशवाणी के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के निदेशक बन गए। यहाँ उन्होंने कई समूह गान कंपोज किए।

भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास में अनिल बिस्वास की हैसियत फिल्म संगीत के एक पितामह सरीखी है। उन्हें हमारा विनम्र नमन।

0: आज की फनकार कार्यक्रम जो केंद्रित था संगीतकार अनिल विश्वास पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह और प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट।
1: वज्रदंती वज्रदंती वीको वज्रदंती, वीको पाउडर वीको पेस्ट, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना संपूर्ण स्वदेशी।
2: याद रखिए, मसूड़ों में जान तो दांतों की शान।
1: वीको वज्रदंती।

गीत छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। रूठना एक शब्द नहीं है, रूठना एक सजा है। जब जिंदगी रूठ जाती है तो सजा बन जाती है जिंदगी। रूठी हुई

चेहरे पर घिर आए उदासी परेशान करती है। जिंदगी को मुट्ठी में बंद कर उससे बतियाना चाहते हैं, लेकिन जिंदगी रेत की मानिंद सरकती जाती है। ऐसे में हम जिंदगी को बुलाते हैं, मनहार करते हैं।

की भीड़ में कभी कभी सारे चेहरे अजनबी हो जाते हैं। ऐसे में सीधी सादी सड़क टेढ़ी हो जाती है, रास्ते नजर नहीं आते।

बीती हुई जिंदगी जब मान जाती है तो लम्हे मोती से चमक उठते हैं, दिल खिल जाता है, आंखों में प्यार बेशुमार होता है, खुशियों का खजाना बन जाती है जिंदगी जब जिंदगी खुश होती है।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। मोहब्बत की इनायत सबको नहीं मिलती, जिन्हें मिलती है मोहब्बत उनकी जिंदगी फूलों की झालर जैसी हो जाती है। जिंदगी का सफर आसान

हो जाता है जब मिल जाता है किसी का भला सा साथ। नदी में तैरती कश्ती पर दो चाहने वाले एक साथ अपनी जिंदगी का सफर तय करते हैं। वे कांटों की परवाह नहीं करते, खुशनसीब होते हैं वे जिनकी जिंदगी मोहब्बत से भरी होती है।

0: मत कभी कभी।
1: कुछ लम्हे कभी बूढ़े नहीं होते, उन लम्हों पर अतीत की गर्द नहीं होती, न ही वो धूमिल होते हैं। वो लम्हे ताजी धुली आंखों की तरह चकमक रहते हैं। वो लम्हे बारिश में धुली पत्तियों की तरह हरे रहते हैं। कौन से लम्हे हैं वो जिन्हें हम अपनी पलकों की कोरों में सहेज लेते हैं।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट।
1: वज्रदंती वज्रदंती वीको वज्रदंती, वीको पाउडर वीको पेस्ट, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना संपूर्ण स्वदेशी।
2: याद रखिए, मसूड़ों में जान तो दांतों की शान।
1: वीको वज्रदंती।
3: ढलती जाए

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहाँ कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुनिए
3: कहिए
0: सुनिए एक खुशखबरी
3: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
4: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

0: خیرات.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
2: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोबो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान वेंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज बहरीन

की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देगा। श्री सोनोवाल ने कहा कि मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के विजन से प्रेरित होकर देश विश्व स्तरीय बंदरगाह बना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। गृह मंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है, जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। फीफा विश्व कप में अटलांटा में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और मिश्र के बीच राउंड ऑफ 16 का मैच चल रहा है। फिलहाल मिश्र 2-0 से आगे है। इसके बाद राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में वैंकूवर में स्विट्जरलैंड का सामना कोलंबिया से होगा। राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में बेल्जियम ने सिएटल में अमेरिका को 4-1 से हराकर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में भारत ने इंग्लैंड के साथ तीसरे T20 क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 12 ओवर में 3 विकेट पर 111 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।